FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी

0: 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी भारत माता की मस्तक पर हिमालय की गंगा से निकलती हुई धाराओं ने अभिषेक किया है। शशि श्यामला धरती का मुकुट हिमालय सा और तीन सागर उसके चरण पखारते हैं। हमारी कामना यही है कि नव दिवस में सुमन सा खिलकर चमके देश हमारा, हमारा प्यारा भारत। माँ भारती को नमन करते हुए आइए सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वर में।

समूह स्वर में देश वंदना अभी आपने सुनी और आइए अब करें प्रार्थना, क्योंकि सच्ची प्रार्थना ईश्वर को हमारे निकट लाती है, हमें उनके पास ले जाती है और शरीर को आलस से दूर रखती है, मन को अहंकार से दूर रखती है। सच्चा साधक वही है जो अपने तन को मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये प्रार्थना।

अणु वही है, विराट वही है, लोकाधार जगत वही है, सगुण निर्गुण ब्रह्म परमेश्वर वही है। शरण आए प्रभु तिहारी, सर पर हाथ धरो, भव के भीषण जंजालों से पार हमें कर दो। आइए करते हैं ये प्रार्थना अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाय इस भक्ति रचना के साथ।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना, और भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में आइए लेते हैं कान्हा का नाम। अनूप चलोटा और रेणुका गौर के गाए इस भजन के साथ।

0: ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं, हृदय में प्रेम, करुणा और श्रद्धा होनी चाहिए। और इसी के साथ आज की आराधना हम यही संपन्न करते हैं। देश वंदना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है खेती की बात सुनने का। मिर्चा मा रोग नियंत्रण, इस विषय पर सामयिक सुझाव आज आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है रुपेश कंवर ने।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन में हमारे किसान भाई मन धान पान के संगे संग बाड़ी बखरी के खेती किसानी घलो करत हवे। और बरसाती के बेरा संगवारी, बरसात के बेरा में कहीं ना कहीं हमारे जो बाड़ी बखरी के खेती किसानी करें, फल फूल साग सब्जी लगाएं, वो सबले ज़्यादा नुकसान हो के संभावना बने रहते हैं। अधिक बेरा हमारे किसान भाई मन खेती किसानी में बाड़ी बखरी में बात करी, भाटा मिर्चा पताल डोंडका तरोई और अदरक है हल्दी है एकर खेती किसानी करे हैं। बरसात के बेरा में सबसे ज्यादा हमें चेत करके आवश्यकता पड़ता है कि पानी ठहराव बिल्कुल झन हो। पानी ठहराव जहाँ हो संगवारी हो तो कहीं न कहीं जो अभी बेरा में बारी बकरी में जो साग भाजी लगाए हैं वो नुकसान होकर संभावना घल होती है। संगवारी हो, आज हमन खेती के बात में अपन कर गोड़ बात करबू, मिर्चा के खेती में रोग नियंत्रण हमन कैसे करी। संगवारी हो, अपन जानते हवा मिर्चा में सबसे ज्यादा नुकसान रोग और कीट के माध्यम से होते। और ये नुकसान केवल किसान के नुकसान नहीं रहे संगवारी हो, ये नुकसान पूरा हमार राष्ट्र के नुकसान होते। काबर के हमन वही किसान जमन 12 महीना बुता काम करके अपन जो धान पान साग सब्जी ला बाजार हाट के माध्यम से देश के विभिन्न जगह में पहुँचा था। आज कहीं न कहीं अगर हमन नुकसान होते संगवारी हो तो वह हमारे देश के ही नुकसान माने जाते हैं। मिर्चा के खेती अगर हमन करते हैं किसान भाई तो बरसात के बेरा में सबसे ज़्यादा हमन ला चेत करे की आवश्यकता पड़ते कि वहाँ कोनो प्रकार के बीमारी या कीट थोड़े लगे हैं। अभी बेरा देखी तो लगातार पानी गिरत जाता।

0: तो पानी के ठहराव हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ पानी ठहराव हो तो संगवारी हो वहाँ रोग लगे के संगे संग कीड़े लगे के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बने रहते हैं। रोग आकर उपचार के गोर बात करें संगवारी हो, पीला मोज़ेक वायरस पत्ती ले पीला होके ओला सिकुड़ देते। कारण बताइए संगवारी हो, सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स ले फैलते। और लक्षण की बात करें किसान भाई हो, पत्ता पीला और छोटे पौधा हो जाते हैं, यानी कहीं तक बौना हो जाते। उपचार के गोड़ बात करें संगवारी हो, तो रोगी पौधा ला तुरंत उखाड़ के हमला जला देना चाहिए। साथ ही साथ अन्य फसल में फैला थे उखर पहली देखभाल करना चाहिए। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ हवा कृषि विस्तार अधिकारी उगर कर हमारा सलाह लेना चाहिए कि अभी बेरा हम जो मिर्चा खेती करें आनी बनी के रोग व्याधि आते हमन का दवाई पानी करेगी। जो पीला मोजेक वायरस आवा है ओकर से भी हमन निदान पा सकत। संगे संग संगवारी हो, अपन पीला चिपचिपे ट्रैप है ओला हम लगा सकत हन, ओकरो से भी हमन निदान पा सकत हन। फल गलन तना गलन बरसात के बेरम सबसे बड़का दुश्मन हमार मिर्चा के खेती पर होते। कारण होते संगवारी फफूंद ज्यादा नमी होते। लक्षण की बात करें संगवारी, फल में काला धब्बा पड़ जाते, तना सड़ जाते। उपचार की गोड़ बात करें किसान भाई हो, खेत में पानी ज्यादा हमला भरना नहीं चाहिए। अगर पानी भरे हवा तो ओला निकासी के उपयोग तो हमला साधन बनाना चाहिए। संगे संग नाली घलो बना सकत हैं। कापर अक्सर क्लोराइड 3 ग्राम लीटर या मैकोजेब 2 ग्राम लीटर हर 15 दिन के अंतर्गत हमला एक स्प्रे करना चाहिए। एकर से भी हम निदान पा सकत हैं। संगवारी कई बार भी ऐसे होते कि हम जोन भी फसल अपनावत हन और जोन बीजा लाथन बाजार हाट ले ओला उपचारित नहीं करन, और बिना उपचारित के अगर हम खेती किसानी करत हन तो हम कहीं न कहीं उमा हमार रोग व्याधि या कीड़े लगे के संभावना बने रहते हैं। आए दिन अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले यही कथन कि कोनो भी फसल अपनावतन सबसे पहले हमारे बीजा उपचार करना बहुत ही आवश्यकता होते। तो मिर्चा के खेती रतन संगवारी हो, तो जो बीजा लावतन बाजार हाट ले या कृषि विज्ञान केंद्र ले या उद्यान विभाग ले, तो सबसे पहले हमारा टाइकोडर्मा 10 ग्राम किलो ला हम अच्छे से उपचारित करके हमला किसानी करना चाहिए। अगर उपचारित करत हन संगवारी हो तो जो बीजा है स्वस्थ बीज पा सकत हन और अच्छे खेती किसानी घलो कर सकत हन। पत्ती धब्बा सुलझा रोग एक लक्षण के गोड़ बात करी किसान भाई हो, पत्ता हा गोल गोल और भूरा हो जाते। उपचार की बात करें किसान भाई, कार्बेडाजिन 1 ग्राम लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए ताकि एकर से मन निदान पा सके। जड़ गलन कारण हमारे संगवारी ज्यादा पानी ठहरा होते, जड़ गलन के समस्या आवेज कर। उपचार की बात करें किसान भाइयों, बेड बना के अगर रोपाई करत हन जड़ गलन है ओकर से निदान पा सकत हन। टाइकोडर्मा मिट्टी में हमला मिलाना चाहिए। अगर हमन मिर्चा खेती करत हन तो टाइकोडर्मा जो हवा है ओला माटी में हमला मिला देना चाहिए। प्रमुख कीट और उपचार की बात करी संगवारी हो, थ्रिप्स माइट पत्ती है ऊपर की तरफ मुड़ते, एकर से भी हम जो फसल हवा है जो मिर्चा के खेती करे हैं वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान होते हैं। एकर बार आप संगवारी हो, स्पिनोसेट 0.3 ml पानी में मिला के छिड़काव करबो तो कहीं न कहीं जो थ्रिप्स माइट हवा है ओकर से हम निदान पा सकत हन। फल छेदक संगवारी हो, ये फसल सब ज्यादा नुकसान पहुँचाते। जो फल रहते ओला अंदर अंदर कुतुर कुतुर के कीड़ा मन नुकसान पहुँचा देते हैं। एला काकरी हमन फल आए के पहले हमला जो स्प्रे हवा है फल आए के पहले हमला स्प्रे करना चाहिए, ओकर से मन निदान पा सकत हन। संगवारी लगातार अगर एक ठक फसल अगर अपनावत हन कहीं न कहीं उमा कई प्रकार के रोग व्याधि कीड़ा लगे के घलो संभावना थे। प्रयास रहे कि हमन अभी बेरा में फसल परिवर्तन के माध्यम से अगर खेती से निकलत हन तो जौन भी रोग व्याधि आते कीड़ा आते ओकर से हमन निदान पा सकत हन। राम राम जय जोहार।
1: मिर्चा के रोग नियंत्रण इस विषय पर सामयिक सुझाव अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम खेती की बात में वाचन स्वर रुपेश कंवर का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौडवाल का है। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़

देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में अनुराधा पौडवाल के मुख्य गायन स्वर में श्री रामचरित मानस गान का आज का अंक अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चिंतन, गुप्त दान और यश। इस विषय पर आज का चिंतन आप सुनेंगे। आलेख और वाचन स्वर डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा का है।
1: एक साहब ने जब अपने दोस्तों के बीच यह कहा कि गुप्तदान केवल वे लोग करते हैं जिन्हें 2 नंबर की कमाई छिपानी होती है या फिर बहुत ही कम राशि दान में देनी होती है, जैसे 2-3 रुपए, तो उनके एक पंडित दोस्त ने प्रतिवाद करते हुए उनसे पूछा, लेकिन पुराने जमाने में जब आयकर नहीं लगता था तब भी गुप्तदान को महादान क्यों कहा जाता था? साहब ने जवाब दिया, उसका कारण यह है कि जो लोग उस समय दान नहीं दिया करते थे वे ईर्ष्यावश यह नहीं चाहते थे कि दान देने वालों का समाज में नाम हो और यश फैले। दानदाता बेचारा अपने सीधेपन में खुद को महादानी मानने के चक्कर में गुप्त दान दे दिया करता था, जबकि असलियत यह है कि उसके महादानी क्या

0: दानी मात्र होने के बारे में भी कोई नहीं जान पाता था। उधर दान लेने वाला चालाक आदमी भी विविध कारणों से यह छिपाना चाहता था कि उस पर किस किसने कृपा की है। वो दान की राशि आती तो डकार लेता था, लेकिन दानी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करना चाहता था। यह दान पाने वाले का ओछापन था। लेखक का मानना है कि दान देने वाले आदमी को अपना नाम जरूर आउट करना चाहिए और जितना क्रेडिट उसका ड्यू हो उतना उसे ईमानदारी से मिलना चाहिए, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। यह उसके अच्छे काम के पुरस्कार का तकाजा है। यह भी हो सकता है कि उसका नाम फैलने के कारण कुछ अन्य लोग उसके साथ कार्य विशेष के लिए दान देने को प्रेरित हो जाएं। ढोंग करने की जरूरत नहीं है। सही अर्थों में हर प्रबुद्ध व्यक्ति नाम और यश के लिए जीता है, उसे उसके लिए जीना भी चाहिए, क्योंकि किसी को नाम और यश तभी मिलता है जब वो समाज के लिए कुछ करता है। सिर्फ अपने लिए करने वाले लोग घोर असामाजिक और सबसे निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं। वे ही यश के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि वह उनके कद से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। उनके जीवन का लक्ष्य खा पी कर मर जाने के अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आदमी अपने साथ संसार से यश को छोड़कर कुछ भी नहीं ले जाता, न धन संपत्ति, न शरीर का कोई अंश। इसके विपरीत यश उसका साथ उसके मरने के सैकड़ों साल बाद तक देता है। हमारे लिए सबसे अधिक पूज्य विभूतियां भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी आदि अपने नाम और यश के कारण ही सदा के लिए अमर हैं। उन्होंने यह नाम और यश अपने जीवन काल में समाज को सभी प्रकार के दान दे देकर अर्जित किया था। उनके द्वारा मानव को दिए गए संपूर्ण देय को दुनिया जानती है, कुछ भी गुप्त नहीं है। यदि वे अपना दान गुप्त रूप से करते तो न तो उनका नाम पता कोई जानता और न उनके असीम अवदान से कोई प्रेरणा ले पाता। तब वे हमारे आदर्श न बन पाते, क्योंकि तब वे गुप्त और लुप्त होते। स्वयं गांधी जी ने बिना नाम यश वालों से नहीं, नाम यश वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक के चरित्र से सत्य की तथा आर्नल्ड के बुद्ध चरित्र से गौतम बुद्ध के त्याग की प्रेरणा ली। उन पर ईसा के गिरि प्रवचन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ स्वीकार किया। अंत में यदि संसार में हजारों बड़े बड़े लोगों की करनी को गुप्त रखना और उन्हें यश से वंचित किया जाना सही होता तो आत्मकथाएं न लिखी जाती और न पढ़ी जाती, न अभिनंदन समारोह आयोजित किए जाते, पुण्य तिथियां और जन्म शताब्दियां न मनाई जाती। यश के बारे में तिरुवल्लुवर की सूक्ति है कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई स्थायी संपत्ति संसार में नहीं है।
1: गुप्त दान और यश, इस विषय पर आज का चिंतन आपने सुना। वाचन स्वर डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरुत्रा का था। FM बैंड 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। समय है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

हमारी इसी सभा में सुबह 7:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे और नए तराने हम लेकर आएंगे सुबह 10:30 से। आज सुबह कार्यक्रम पेश किया जाएगा रोज की तरह सुबह 7:05 से और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय है दिन में 11 से 11:30 तक। आकाशवाणी रायपुर से हम आज सुबह 8:30 अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। इसके अलावा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर भी आप आकाशवाणी रायपुर से सुनेंगे सुबह 10:00। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाता है आकाशवाणी रायपुर से सुबह 9:55 और 11:55 से।

दिन में 12 बजे से संध्या 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इसके बाद शाम 5:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की, जिसमें डॉक्टर मकरध्वज श्रीवास्तव का काव्य पाठ सुनिएगा, साथ ही हास्य वार्ता सुनवाएंगे विनोद कुमार गुप्त से। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। 5:35 पर बहनों के कार्यक्रम महिला सभा में आज सामयिक चर्चा होगी सतर्क रहें हेपेटाइटिस को हराएं विषय पर। इसके अलावा फोन करें गीत सुने क्रम होगा, प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी।

संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8 बजे और प्रश्नकाल संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से हम रात्रि 10 बजे करेंगे। हमारे केंद्र से शाम 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें गोठ बात होगी प्रथम सुख निरोगी काया के बारे में। इसके बाद किसान बंधु के कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें श्री अन्न की खेती से खेत लाभ इस विषय पर आज की बात होगी। साथ ही स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में ग्राम कछार विकासखंड मस्तूरी के कृषकों के बीच किया गया रिकॉर्ड कार्यक्रम, जिसे हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता के तहत। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, संपादन और रिकॉर्डिंग राजू भैया का होगा।

0: ईमेल करें, गीत सुने। ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 6:20 और शेष भाग 7 बजे से। रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत और फिर 7 बजे हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनाङ्कात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्

0: पीस् इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरतडाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचकविषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, सकारात्मकदृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्षपरितन्त्रस्य सजीवभावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमन्त्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्या स्थितस्य राममन्दिर न्यासाय प्राप्तदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले पञ्चमसदस्यरूपेण न्यायिक लेखापरीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथमस्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथितदुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दानचौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकञ्च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध

0: सेशन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

कभी थरा की हरियाली है और कभी है नब की क्रीड़ा, कभी कूक कोयल पपीहे की और कभी विरहासी पीड़ा। नए रूप में सजकर प्रतिदिन आती हैं ये सूरज रश्मियाँ, कभी प्रफुल हृदय को हरती कभी शांत मरघट सी पीड़ा। देखी आज किरण सूरज की किस द्वारे

करती है क्रीड़ा। लेकिन श्रोताओं, जहां तक हमने समाचारों में सुना है और जिस तरह से मौसम विभाग के मैसेजेस हम सबको आ रहे हैं, इससे लगता है कि आज सूर्यनारायण के दर्शन शायद ही हो पाएंगे, बल्कि घटाएं दिन भर बरसती रहेंगी और गर्जन तर्जन के साथ बिजली चमकने की भी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इस बारे में भी हम सबको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे आज का दिन बिताने वाले हैं। लेकिन हमारी शुभकामना तो यही है कि आप हंसते मुस्कुराते आज का दिन बिताएं, आपकी मेहनत सफल हो और आपके मन में संतोष उपजे। वैसे अगर आज की बात करें तो आज है 28 जुलाई और हर साल आज के दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज हेपेटाइटिस डे भी है। तो चलिए आज इन्हीं विषयों पर बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पर्यावरण संतुलन और विलुप्त होती प्रजातियों को धरती से बचाना है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, स्वस्थ समाज के, स्वस्थ पर्यावरण की जरूरत के लिए और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने के लिए ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं और हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें, उनका जीवन बचा रहे। श्रोताओं, पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्वत दिवस, महासागर दिवस, न जाने कितने सारे दिवस मनाने की जरूरत आन पड़ी है आज हमें, क्योंकि इन सबके रहते ही तो हम रह पाएंगे। तभी तो मानव जीवन सुरक्षित रह पाएगा जब हमारी नदियां, पहाड़ और जंगल बचे होंगे। पहले भी हमारे पुरखे आंवला नौबी, गंगा दशहरा, पाम डे, गोवर्धन पूजा, वट सावित्री जैसे पर्व मनाकर वृक्षों, नदियों, पहाड़ों के संरक्षण को ही बढ़ावा देते थे। लेकिन श्रोताओं, समस्या बढ़ती जा रही है, जो कि हमारी बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ और विकराल होती जा रही है। जंगल पेड़ कटते जा रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, पहाड़ों को काट काट कर सुरंगें बनाई जा रही हैं, सीमेंट और बोल्डर बनाकर बहुत ऊंचे ऊंचे जंगल यानी कि कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, और तो और पानियों का, नदियों का पीने लायक पानी प्रदूषित होते जा रहा है, यानी कि पानी की समस्या भी हर देश में, हर शहर में आजकल देखने को मिलने लगी है। इन सब चीजों से बचने का उपाय भी हमारे हाथों में है, क्योंकि धरती रहेगी तभी हम जीवित रह पाएंगे, सारे पशु पंछी जीवित रह पाएंगे। हर व्यक्ति के हाथ में छोटे छोटे उपाय करने का दम तो है ही। जी हाँ, हर घर में हर व्यक्ति अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो हम अपना सहयोग, अपना योगदान दे सकते हैं हमारी धरती माँ के लिए। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिनमें सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपें। आजकल तो बरसात के दिन है, तो इन दिनों सबसे अच्छा काम यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपें, उनकी देखभाल करें, पानी की बचत करें, पानी को बर्बाद ना होने दें। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, इसका उपयोग कम किया जाए या फिर बंद ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, जैसे कि बिजली, पेट्रोल, कोयला, डीजल, इन सब को हम बचाएं और सारे जतन हम वो अपनाएं जिनके बारे में अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, और इन्हीं से हमारा जीवन चल पाएगा और इसी से हमारी धरती सुरक्षित रह पाएगी।

जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी छोटा सा अच्छा विचार, छोटी सी प्रेरणादायक कहानी, या फिर कोई सकारात्मक सोच, या फिर यूँ कहें कभी कभी छोटी सी दवा और टीका हमारे मन को तन को स्वस्थ करने के लिए बहुत काम आता है। वैसे भी हमारे पुरखे हमेशा से कहते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया है। चाहे धरती हो या हमारा शरीर, सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है कि उचित खान पान हो, संतुलित भोजन हो, साथ ही साथ श्रम भी करें उतना विश्राम भी करें, और हम अपने आप को व्यायाम के जरिए, कसरत के जरिए हमेशा फिट बनाए रखें। जैसा हम आपको बता रहे थे कि 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाते हैं, तो शरीर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग जिगर के बारे में हमको बता दें आपको कि ये दूषित पानी, दूषित भोजन, अत्यधिक अल्कोहल के सेवन, संक्रमित खून की वजह से या कभी कभी वायरस संक्रमण की वजह से सूज जाता है, इसमें सूजन आ जाती है और पूरे शरीर में तकलीफें होने लगती हैं। वैसे तो हेपेटाइटिस बी का रोग ए बी सी डी ई यानी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सामान्य रूप से, कॉमन रूप से पाया जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को समर्पित किया गया है और उन्होंने ही इसका टीका भी खोज निकाला था। श्रोताओं, लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले वायरस वैसे बहुत सारे हैं, परंतु हेपेटाइटिस बी का खतरा आजकल ज्यादा पाया जाने लगा है, जिसके बारे में आमजनों को जागरूक करने

0: रोकथाम की जानकारी, जांच और उपचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी दुनिया में। इस बीमारी के बढ़ते हुए आंकड़ों के जरिए संदेश दिया जाता है कि हर साल लगभग 2.2 करोड़ नए संक्रमण पाए जा रहे हैं, जिनमें से 13 लाख के आसपास मरीजों की जान चली जाती है अगर ठीक से उपचार और इलाज न हुआ तो। हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया जा चुका है, अगर इसकी वैक्सीन लगाई जाती है तो मरीज ठीक हो जाते हैं, वरना गंभीर स्थिति में लिवर कैंसर होने की प्रबल संभावना रहती है। बस जरूरत है कि हम स्वस्थ रहने के लिए वे उपाय अपनाएं जो हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, अक्सर अपने बड़ों से डॉक्टर की सलाह के अंतर्गत सुनते रहते हैं, जैसे कि सुरक्षित पेयजल का उपयोग किया जाए, स्वच्छ भोजन लिया जाए, ताज़ा भोजन हो, संतुलित भोजन हो, साथ ही साथ मादक द्रव्यों से दूरी रखें, संक्रमित सुई या फिर संक्रमित रक्त से बचाव भी आवश्यक है, यानी कि खून चढ़ाने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले उनकी जांच होना जरूरी है, स्टराइल होना जरूरी है। इसी के कारण हमारा पेट, लीवर और आंत सब सुचारू रह पाएंगे। और ये बातें अक्सर सावधानियां हम आपको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि छोटी सी चूक भी हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। बहरहाल कार्यक्रम में कुछ संदेश और ट्रैफिक अपडेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: संदेशों के बाद आइए सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय मानसून बिलासपुर जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में सक्रिय है। मौसम विभाग के द्वारा कल से 3 दिनों तक तेज वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। कल शाम को अच्छी वर्षा भी हुई है। ऐसे मौसम में वर्षा एवं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका होती है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जहां तक संभव हो ऐसी स्थिति में बाहर ना निकलें। यदि सफर के दौरान ऐसी स्थिति बनती है तो खुले स्थान में ना रहें, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ही खड़े ना हो, पूरी तरह

0: सुरक्षित स्थान में ही रुके। इस प्रकार के मौसम में जब वर्षा हो रही हो, बादल गरज रहे हो, बिजली भी चमक रही हो, तब दो पहिया वाहन तो बिल्कुल न चलाएं। लगातार हो रही वर्षा से जगह जगह जल भराव के साथ ही सड़कों में भी गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है। गड्ढा बड़ा भी हो सकता है, तब वाहन चलाते समय सड़क में जहां पानी भरा हो वहां से वाहन बचाकर चलें। यदि किसी भी पुल पुलिया या सड़क के ऊपर बहुत अधिक पानी बह रहा हो, तब ऐसी स्थिति में आगे हरगिज न जाएं। यह खतरे से खाली नहीं है, सतर्क रहें। मित्रों, वर्षा के दिनों में जब सड़कों में जगह जगह पानी भरा हो, तब जरा संभल कर वाहन चलाएं, क्योंकि सड़कों में स्कूल जा रहे विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोग भी पैदल चल रहे होते हैं। कुछ वाहन चालक बड़ी लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क के गड्ढों में भरा पानी का छींटा स्कूली बच्चों पर या पैदल चल रहे लोगों पर पड़ता है। ऐसे में विवाद की स्थिति तो बनती ही है। इन छींटों से बचने के प्रयास में वाहनों के आते देख एकाएक ये पैदल यात्री सड़क में इधर उधर होते हैं, कई बार ऐसा करते दूसरे वाहन से टकरा भी जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वाहन चलाते गंभीरता बरते, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए, और हमारे श्रोता इनसे ज़रूर लाभ लेते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। और अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी एक सूचना भी हम आप दे दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 30 जुलाई को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। इसके बाद 11 से 11:30 बजे तक आप पूछ सकते हैं सवाल शरीर में होने वाले तिल व मस्सों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान और निदान के उपाय के बारे में। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाइएगा। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई और 31 जुलाई को शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज 28 जुलाई को ऐसे कई गणमान्य हस्तियां हैं जिनकी पुण्यतिथि भी है और जन्मदिवस भी है। हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। आज महाश्वेता देवी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थी, उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, हमारे देश की प्रसिद्ध लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट थी, उनका निधन 28 जुलाई 2026 को ही हुआ था।

और जो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर गई हैं। साथ ही साथ जगदीश राज एक वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर थे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पुलिस ऑफिसर के 144 फिल्मों में रोल करने के बाद। आपका निधन भी 28 जुलाई 2013 को हुआ था। इसके साथ साथ लीला नायडू जो कि फेमिना मिस इंडिया बनी थी और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 अभिनेत्रियों में गिना जाता था, उनका निधन हुआ था 28 जुलाई 2009 को। कुमकुम जिन्हें हम सब जानते हैं मदर इंडिया और नया दौर जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए दिग्गज अभिनेत्री थीं और उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में अपनी एक विशेष जगह बनाई थी, इनका निधन भी 2020 को हुआ था। इंद्र कुमार भी बॉलीवुड के जाने माने एक सहायक अभिनेता थे, वांटेड फिल्म के कलाकार थे, आपका निधन 2017 में हुआ था। और चारू मजुमदार को भी आज हम याद करेंगे जिनकी आज ही के दिन पुण्यतिथि आती है। बहरहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा समय है तो चलिए एक प्यारा सा गीत और गुनगुना लेते हैं।

ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:30 हो चुके हैं। पेश है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक के युगल सुरों में यस बॉस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, जतिन ललित का संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म यस बॉस से। आइए अब सुनते हैं अगला गीत जिसे गाया है हरिहरन के साथ अनुराधा पौडवाल ने। समीर ने इस गीत को लिखा है, दिलीप सेन समीर सेन ने धुन बनाई है, फिल्म का नाम है इतिहास।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई,

0: मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: पीएम जय। अब गरीबों के जय।
2: पुलिस।
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सदाबहार नगमे का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नाराज से कुमार सानू की आवाज में। कातिल शफई का लिखा हुआ यह गाना है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

फूल और कांटे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों ने। रानी मलिक का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में ऐतराज़ फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: ये मीठा सा गीत लिखा था समीर ने, हेमेश रेशमिया ने संगीत निर्देशन दिया था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1

0: भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है।

0: रिपोर्ट। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।

0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की, विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम

छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोतिले।

0: जी, बहुत बढ़िया गीत आप सुनाया, और हमर जो श्रोता साथी हैं उमन भी आपके आवाज़ ल पहचानत हो ही। हमर संस्कृति हमर कलाकार, एक क्रम में आज हमन आमंत्रित करे हन डॉक्टर अनसुईया मानिकपुरी जिला, और आप जो गीत गुनगुनात रहा डॉक्टर नवल दास मानिकपुरी जी, कुछ फरमाइश ल पूरा करीन हो ही, कुछ फरमाइश अधूरा रह गए हो ही, लेकिन आए वाला समय में ओला भी पूरा करी हमन ऐसा उम्मीद करत हन। बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के ये कार्यक्रम में अनसुईया जी। हमारे श्रोता साथी में जब बातचीत ल सुनते ना, तो वो माला लगते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं कहाँ के रहोइया हैं, कहाँ पैदाइश हुई, तो हमारे साथी माला बतावा बचपन के बारे में।
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के बहुत बड़े ऋणी हो कहो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद देवता कि मैं अतका गदगद हो गया, अतका खुशी हो गया कि
1: हाँ
0: कुछ बोल नहीं सका।
1: जी
0: कारण के आकाशवाणी से ही हमारा आम पब्लिक मन जानते हैं, और आज फिर दोबारा मौका मिली। सो वक्त तो गावे जाए के मौका मिलत रही से, और अभी आप मन से बातचीत के मौका मिले हैं, तो मैं बहुत गदगद हो गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो
1: जी
0: रायपुर आकाशवाणी ला।
1: जी हमारे श्रोता साथी मन भी आप मन के गीत ला बहुत पसंद करते हैं। अब अपन बारे में थोड़ा सा बतावा।
0: मैं वही 11-12 साल की उम्र से गाय बजावर धरे हूँ, लोकगीत गात रहे हूँ, और हर पार्टी में मोला मौका मिलिस। जैसे हेमनाथ वर्मा जी मन है, विकल जी मन है, और हमारे बैतलाम साहू जी मन है।
1: एवन से जो आपके संगीत यात्रा हुई ना,
0: हाँ
1: एकर बारे में हम चर्चा करो। बचपन में जैसे आप बताया कि 11-12 साल की उम्र से आप गीत गाना शुरू कर दे रहा
0: हाँ
1: छत्तीसगढ़ी में, तो
0: गा
1: गीत आप मन गात रहा, कैसे मन में इच्छा जागी इसकी माहौल छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाना है?
0: स्कूल में पढ़ाते रहते, स्कूल से ही थोड़ा सा संगीत में रुचि होकर इसे नाटक वाटक में सब भाग लेवत रहे हैं। भिलाई स्थित स्कूल में पढ़े हैं
1: जी
0: तो सबसे पहले तो पढ़ते पढ़ाते में हमन 6-7 साल के रहे हैं, तो तीजन बाई जी मन है भिलाई तीन में आवा है बैठा है। मोर मझली वाले बहनी संग मितानिन भी बदरी ही से, तो वो हमारे यहाँ पिताजी बोलीस कि अनसुईया मोला दे दे बाबूजी, मैं पंडवानी सिखाऊँ की के। तो वक़्त पुराना सियान पुराना ख्यालत के रहे, तो नहीं वो कहाँ संगीत वंगीत में जाही, वो नहीं चाहे इसे कि मना कर दिस। अगर मोरी पिताजी वो वक़्त दे दे रहते इसलिए ठीक है ले जाओ तोर बहनी। आज तीजन बाई दीदी के मैं प्रथम शिष्य होते हूँ, वो खुद अपन जुबान से बोलते। फिर बाद में वो संकला मन में पनपते गिस पनपते गिस, तो हेमनाथ वर्मा जी मन हा के समझाई नहीं कर हमारे पिताजी ने, कि देख रे भाई लड़की जाते आजकल तो इससे तिल जान था तू मन है लेक जाते घर के आदमी ऐसा आए हंसता जैसे खा ले के फिर छोड़ी। फिर अपन से भी सपोर्ट करी न मन,
1: जी
0: पहले तो मना करत रही।
1: तो पहली जब आपके माँ बाबूजी मन ला पता चले कि आप गीत संगीत में रुचि रखता हो, तो घर में सुनते रहे ना आपके गीत ला,
0: हाँ सुनत
1: का
0: रही
1: कहें सुने तो।
0: तोर अंदर में कला भरे हुई कि नहीं जानत रहन बेटा, लेकिन आप जान डर अब नहीं मना करन कहे। फिर
1: जी
0: रिहर्सल भी हुए है हेमनाथ वर्मा जी के यहाँ, तो मन जाए भी रात के समय।
1: देखें
0: हाँ
1: रिहर्सल
0: देखा
1: सुने,
0: रिहर्सल ल
1: घर
0: सुने
1: आके कुछ गोठियाए आपसे कि
0: घर
1: रिहर्सल
0: आके
1: करत रहे तो
0: हमारे
1: ऐसे।
0: माँ मन कर गोठियाए माओ बाबू जी दोनों हन कि सीखन दे सीखा थे ता अच्छा लगा थे वो गात बजाते थे।
1: एकर बाद जब आप रिहर्सल करके मंच पे जात रहा गीत सुनाए पर, जगह जगह आप जात रहा, पहली पहली के जो अनुभव रही सो कैसे रही सा? आपके भीड़ देख के कभी मन में डर लगे कि अतका भीड़ में मैं कैसे
0: सबसे
1: गीत
0: पहली
1: गाऊं नहीं?
0: मंच गए हूँ तब मोला डर लगी सी भिलाई तीन में।
1: अच्छा
0: हाँ आजाद चौक में हुई
1: हाँ
0: कार्यक्रम, तब
1: हाँ
0: मोला की चट आन मोला बुलाए हुआ बरवा जी मन है हेमलाल मन, तो मैं डर लगते भैया मैं नहीं आ सकूँ मंच में ऐसे कहूँ। चल तो थे पहली तो का चीज के डरे
1: हाँ
0: ऐसे की पहली गाना गाए तब तो मोला डर लगी बहुत।
1: जी
0: फिर उसका बात धीरे सादत ऊपर गए, और
1: जी
0: दरअसल डर लगे कि सबसे बड़ी बात ये कि मई के घर है लड़का सियान सभी कोई पहचाना थे नहीं, तो ओकर सामने में कैसे कहूँ रूम अंदर तो गाली बात रहे हूँ,
1: जी
0: अब बिगड़ जाए तो हंसी मन है ऐसे थोड़ा सा मन में
1: जी
0: डर पना रहा थे।
1: तो वो गीत है सुरता थे का, कौन सा गीत रही से जो पहली बार आप मंच पे सुनाए रहा?
0: वह ना शर्मा जी के गीत लगाते रहे
1: सुरता थे,
0: वही वो करे लिखे गीत रही से तैरझे कहाँ पर बुधिया
1: दो लाइन सुना देवा हमारे साथी मल्ला।
0: बिल्कुल तेरसे कहाँ पर बुद्धि अरे मोरी सुरता भुला की रती है रे, तेरसे कहाँ तेरसे कहाँ पर बुद्धि अरे मोरी सुरता भुला की रती है रे, तेरसे कहाँ ये गीत पलगात
1: जी गीत मल्ला आप गात रहा, ताली भी खूब बजत रही, सोई
0: हाँ
1: लोग फरमाइश भी अब करना शुरू कर दिन हो ही, है
0: फरमाइश
1: ना
0: कहाँ। फिर उसके बाद एक दो मंच हो एक बाद में ना थोड़ा डर
1: जी?
0: हट गया।
1: घर परिवार आस पड़ोस समाज सब में आपके नाम धीरे धीरे बगरा दिए, है
0: हाँ
1: ना, कि
0: हाँ
1: अब अनसुईया मानिकपुरी अब एक साधारण लड़की नहीं है, एक लोकगीत कलाकार है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो कला है संस्कृति है लोकगीत के माध्यम से बगराए के कोशिश कर रहे हैं,
0: हाँ
1: है ना। जब ये बातचीत हो गीत संगीत के माध्यम से, और जो नामी गिरामी जो कलाकार हैं जीवन आधार स्तंभ हमन कह सकत हन, ऐसे कलाकार मन के संग में आप गीत गाए हैं, ये
0: हाँ
1: कलाकार मन से कैसे जुड़ाव होत गी साहब?

0: बस ये हेमनाथ वर्मा जी की पार्टी में गात रहे हूँ, तो
1: हाँ
0: गाते गाते में बैतल राम जी से मुलाकात होगी। बैतल राम जी से मुलाकात हुई तो आकाशवाणी में ओकर सन गीत भी गाए
1: अच्छा
0: बहुत।
1: अच्छा, आप बताया कि आकाशवाणी में भी आप गीत गाए हैं, तो कैसे जुड़ा हो पैसा आपके आकाशवाणी से?
0: उकरे माध्यम से आए वो आकाशवाणी में बैतल राम साहू जी के
1: अच्छा, तो यहाँ स्वर परीक्षण हुए आपके?
0: स्वर परीक्षण नहीं हो रही, सो वक्त स्वर परीक्षण नहीं होते, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करत रहे।
1: अच्छा, लेकिन यह है कि हमारे जो अधिकारी मन जो रहे ना, ओमन प्रस्तुति ल देख के समझ जाते हैं। जैसे आपके कार्यक्रम कहीं बाहर होते, वहां जाके सुन के भी एक लगते कि हाँ, ये हमारे आकाशवाणी के
0: लायक
1: लायक
0: है
1: कलाकार हैं, ऐसे
0: तो
1: करके।
0: बैतल जिले तो वैसे भी किशोर कुमार मानत रहिन हैं, तो ओकर स्वर परीक्षण नहीं हो रही से हमन पहले शुरू 5-6 गीत गाए रहे ओकर साथ। ओ
1: जी
0: माँ ये बरसात के भी गीत रही से ठो
1: हाँ
0: खट खुटी लो सके लोरी लइका उसिया भैया मोरी भावत के बिरहा के गाजा गौरे किसान, ये गीत लगा रहे हैं
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया जी।
0: बहुत अकन गीत गा रहे हैं ओकर
1: हाँ,
0: सन आकाश
1: बहुत
0: में।
1: अकन गीत है और एक साथ अचानक सुरता करना मुश्किल हो
0: मुश्किल
1: जाता
0: होते, बहुत
1: है
0: पुराने
1: ना?
0: हो गए
1: जी जी
0: सर।
1: जी अच्छा, ये बताओ कि जब आपके गीत मन रेडियो से प्रसारित होना शुरू हुई है ना, वो समय तो आज भी रेडियो सुनते हैं, वो समय तो रेडियो ही एक माध्यम रही
0: हाँ
1: से,
0: हाँ
1: तो जब आप मन की आवाज ल सुना श्रोता मन, और जब आप खुला मंच में जब वो गाना के प्रस्तुति देवत रहा, तो कहें कि ये वही अनसुईया है जो रेडियो में गाना गाते।
0: हाँ तो कत का खुशी लगे वो समय में।
1: जी, बहुत बढ़िया बातचीत होते आपसे। अच्छा, आप शेख हुसैन जी के साथ भी गीत गाए हैं, गजानन तिवारी जी के साथ भी गाए हैं, आप बताया था,
0: हाँ
1: तो ये अलग अलग तरह के जो कलाकार हैं, मन के साथ में गीत के प्रस्तुति होए, तो
0: वो
1: कैसा अनुभव रहा है आपके?
0: गजानन तिवारी जी के साथ गाते हैं तो वो कवाली स्टाइल में गावे, गजानन तिवारी जी है तो उकरो साथ गाए रहे हम, याद तो नहीं आते तो संग गाए तीन गीत है।
1: हाँ
0: शेख हुसैन जी संग गाए हों
1: हाँ
0: तो 2 ठो गीत गाओ, मन मोर घर तक के खुद चल के आ रही हैं के एक ठो गाना है हमार के तिलकोरो नहीं गा सकते भाई, तो अनसुईया के लगवाबो की सोचे हैं कि
1: हाँ
0: तो का गीत भैया मैं गा सकूँ का ऐसे कि क्यों संत मसीदास दिन
1: जी
0: गा सकूँ तो गा दू हूँ तुहर पसंद के लायक, ते कहते नहीं ते गा डरवे की हिस्स तो का गीत बताओ कि तो बताइस फिर वह।

0: रात तो गुनगुनाए होगी तो तमाशेदार भैया कहते गार्डर बनो नहीं चलते हैं वो रिकॉर्डिंग में ऐसे
1: जी
0: कहते।
1: जी अच्छा, आप में इतना प्रतिभा है अलग अलग तरह के गीत गाना, जैसे अब कलाकार मन ही आपला चुनत रहे इन्हें कि ये गीत है और कोई नहीं गा पाए, लेकिन
0: आप
1: अनसुईया
0: आलू हाँ
1: अनसुईया मानिकपुरी ये गीत लगा ली।
0: हाँ
1: तो इतना जो अलग अलग तरह के गीत मन के प्रस्तुति आपके माध्यम से, तो ये कैसे निखार आदगी साहब के प्रस्तुति में?
0: सिखावत गिर नहीं को मन के आशीर्वाद मिला के तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा हौसला बढ़ा गिस मेरा चल बड़े बन के आशीर्वाद मिला थे भाई तो हेला नहीं छोड़ना चाहिए कि के
1: जी।
0: शेख हुसैन भैया तुनु हमने एक गाना गा रहे आज वोला हर पार्टी में हर कलाकार बन अलग अलग बदल बदल के गाते
1: अच्छा
0: हम नौकर दोनों गा रहे थोरो बर मोरो मन लगे रही थे वो थोरो बर मोरो मन औला वो रेक वो भी गई धुरवा रामबर काम जी मन दूसरा बदल के
1: अच्छा,
0: और कलाकार में दूसरा बदल बदल के गई
1: तो आपके जो ओरिजिनल गीत है ये गीत ले जैसे बदल बदल के गात अलग अलग कलाकार मन, तो ऐसा नहीं लगे कि नहीं ये मन बिगाड़त है या अच्छा करत है, ऐसा कुछ मन में
0: अब अपन
1: आते?
0: अपन ढंग से गात रहे हैं बोला ये गीत लत हम अलग ढंग से रिकॉर्डिंग करे हैं तक हम अलग ढंग से गात हैं दीदी वो माँ का है गाओ
1: अच्छा
0: भाई
1: ये आपके महानता है कि भाई एक क्रम से या लय से जो गीत आप प्रस्तुत कर रहे हैं वाला दूसरा तरीके से और मन प्रस्तुत करते हैं, और आप भी वाला स्वीकार कर रहा था कि चल ठीक है, ये आपकी महानता।

0: है, हमन चाहत रहन श्रोता मन के तरफ से जो हमार पास रिकॉर्ड में है कोई ऐसा गीत आप सुनना चाहत।
1: नाचा गीत गात रहे में है
0: हाँ
1: नचौड़ी गीत,
0: हाँ
1: तो वो ही आकाशवाणी से भी गाए हैं, तो
0: जी
1: मैं दो लाइन सुना देता हूँ आपको।
0: जी

बांधो, है घर मन ये काही कुछु, धनी के हे बुता करे बर का साग रांधो। ये गीत जब मैं गात रहे हो तब बरसाती दादा मन खुमरी बोही के आ जा मुड़ में और कहा के अनसुईया ते लोटा बोही के नहीं।

0: धनी के हे भूता करे बर का सागर आंधो। ये गीत जब मैं गात रहे हूँ तब बरसाती दादा मन खुमरी बोही के आ जा मुड़ में और कहा के अनसुईया ते लोटा बोही के निकलो मैं खुमरी लगा के निकलूं और मैं इच्छा करूँ ये गीत में कहे दूरदर्शन में भी और कहीं मैं कार्यक्रम हो तो खुमरी ओढ़ के पहले शुरू आ जाओ आदमी में ते तोर संग मैं इच्छा करूँ दूसरा संग नहीं करूँ कावर के मैं हाँ ये गीत लगा के मंच में अभिनय भी करता हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ दो ठन लोटा बोही के मूड में
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके ये गीत ला श्रोता मला सुनवा था ओकर बाद फिर और बातचीत करबो आपसे।

0: मन सुनेन अनसुइया जी और हमारे श्रोता साथी मन भी खूब पसंद करत हैं ये गीत ला, ऐसा उम्मीद करत हैं नमन। अब बातचीत ला आगे बढ़ात हैं और डॉक्टर नवल दास मानिकपुरी जी, जब उनकर से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत कुछ बता रही ना आपके बारे में। आपसे हम जानना चाहते हैं कि नवल दास मानिकपुरी जी से आपके मुलाकात कैसे हुई, फिर गीत संगीत में आप मन के एक समान रुचि रही, फिर नवल दास जी के साथ जुड़ना, फिर आगे बढ़ना, एकर बारे में
1: आप
0: बतावा।
1: पहले के गुरु मंथ तो रहिन ते रहबे करें सिखाइन आशीर्वाद दिन अपन। ओकर बाद हमार गुरु बाबा रही से हमार जिन कंठी बांधे रही से करगी रोड कोटा में, तो उनकर साथ हम ग्रंथ के प्रोग्राम देवत रहें। तब मोर से हमार गुरु बाबा बहुत प्रभावित हुई। तब बोले भाई के दोनों के शादी करते सनन सुइया एक के संगात बजात हो एक संग रहू घलो। तो हमार गुरु बाबा का आशीर्वाद से हमार मन के शादी हुई बढ़िया
0: जी
1: और साथ में चलत रहे। तहन संगीत के आगे का रास्ता फिर मानिकपुरी जी की तरफ से गीस।
0: जी आप दोनों के बहुत सारा गीत है हमारे पास में। आप मन के जब प्रस्तुति होते या होत रही से, ओकर पहले के तैयारी कैसे रहा है आप मन के?
1: ठीक रही सर से पहले के भी
0: जैसे
1: तैयारी
0: गीत आप मल्ला कहीं मंच में प्रस्तुत करना है तो कौन कौन सा गीत हम मल्ला सुनाना है, और फिर ओकर तैयारी भी आप मन करत रहा
1: हाँ
0: तो।
1: तैयारी भी करन कलाकारवन 20 जन 25 जन रहे घर में तिकर बन मन पर भात भी रांध के खवावन ला रहे अपन जवाबदारी
0: जी
1: ता। फिर ओकर बाद रिहर्सल भी करन फिर कार्यक्रम में जान। और पहली कार्यक्रम तो ऐसे रहे कि 10 दिन दुर्गा पूजा होते तो 10 दिन में हमारे एको दिन खाली नहीं रहा।
0: अच्छा।
1: ऐसे कार्यक्रम चले 11 दिन गणेश पूजा में 9 दिन नवरात्रि में और इति मतलब दीपावली के माना तक महे मंडाई मेला सब
0: जी।
1: अद का कार्यक्रम चले। वो अब तो ये यूट्यूब के जमाना आ गए
0: हाँ
1: तब भाई कलाकार मन 2-4 प्रोग्राम मिली तन बहुत है ऐसे हो
0: हाँ
1: जाते।
0: तो जैसे आप मन गीत संगीत प्रस्तुत करे बर जगह जगह आप मन बाहर जात रहो, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह आप मन जात रहा, छत्तीसगढ़ वाला जितना भी श्रोता है दर्शक है आप मल्ला जानते हैं, बखूबी जानते हैं ना।
1: हाँ
0: तो हमार राज्य बाहर अलग अलग जो प्रदेश है वहां भी कहीं आप मल्ला जाए के मौका मिली से?
1: मैं गए रहे उत्तर प्रदेश गए हूँ
0: हाँ
1: गुजरात में गए हूँ दिल्ली गए रहे हूँ
0: जी
1: और जमशेदपुर गए रहे हूँ।
0: हाँ। तो जैसे आप मन छत्तीसगढ़ के बाहर गए हैं और वहाँ आप मन छत्तीसगढ़ी गीत प्रस्तुत करत रहा, लोकगीत सुनात रहा आप मन, तो दूसर प्रदेश वाला मतलब समझ में आते रही से?
1: हाँ नहीं समझे थे लोग हिंदी में समझाने वाला रहे थे मैं समझाए भी।
0: अच्छा
1: और ज्यादातर कबूल के हमारे छत्तीसगढ़ के भी गए हैं वो तरफ सब
0: हाँ हाँ
1: कमाए खाए बर
0: जी
1: तो
0: जी
1: ज्यादातर वो मन लेके कार्यक्रम ला
0: जी जी जी
1: तो और कुछ मन नहीं समझे थे समझाए भी।
0: मतलब गीत जैसे आप मन प्रस्तुत करत रहा ओकर पहली ओकर भाव बता देते रहे ना,
1: हाँ
0: गुजरात
1: गीत
0: में है
1: के
0: तो
1: भाव
0: गुजराती में, उत्तर प्रदेश में है तो
1: तो
0: भोजपुरी में,
1: भाव
0: हिंदी में, ऐसे करके समझा
1: हाँ
0: दें पहले,
1: और
0: है ना,
1: उत्तर प्रदेश में होते ज्यादा दिक्कत नहीं होती काबर के हमारे छत्तीसगढ़ी भोजपुरी तो
0: मिलते जुलते।
1: मिलता
0: हाँ
1: जुलता है।
0: हाँ हाँ तो ऐसे करके आप मन के ये सफर चला थे। आप बताते रहा कि कुछ है नाटक में भी काम करे हैं।
1: मैं रामचंद्र देशमुख जी के कार्य लोक नाट्य में
0: हाँ
1: कारिक सास के रोल करते रहूं।
0: जी
1: कम से कम मैं 25 से 30 मंच करे हूँ। मैं नहीं रहूं घर में दाऊ जी मोर बिना बस नहीं रंगाते दरवाजा में खड़ा करते। तो कारिक सास के रोल करते रहूं तो मुला वो डायरेक्टर मैंने भी बोला कि एकदम ठेठ आवाज है दरी मिले ही जी
0: हाँ
1: हमारा
0: जी
1: नामद आई जन मिली से ना कि के।
0: हाँ। तो आप तो 20-25 बता था मंचन करे हाँ कारी के, तो और आप सास के भूमिका में रहा, तो
1: सास की भूमिका में
0: उमे को ऐसा कुछ डायलॉग याद आते है आपला?
1: कारी है वो मास्टर घर जात रहा है मास्टर के लड़का बार कारी है बहुत दिया रही से कुकर माँ नहीं है कि के। तो वो लोग गाँव के मन देख के गलत समझे कि मास्टर एक घर खबर जाते कारी है तो सास मना करे रात भी काल के झन जाए कर कारी पार बस्ती के मैं देखती हूँ बने नीला के और लूरू और घलो मोला कहत रही से कि दाई तय बोला मना कर पे।
0: नवल दास मानिकपुर जी के भी चर्चा हुई आपके ये कार्यक्रम

0: में, तो इनके साथ आप कुछ ऐसा कबीर भजन वगैरह भी
1: हाँ कबीर
0: आपन
1: भजन,
0: प्रस्तुत करत
1: हाँ
0: रहा।
1: कबीर भजन गाते हैं कृष्ण।
0: हाँ
1: तो अब दोनों जन एक साथ संग रहे, तब से तो छत्तीसगढ़ी गीत
0: हाँ
1: चाहे कबीर भजन हो चाहे कुछ हो तो
0: हाँ
1: साथे में गाथन।
0: जी जी जी
1: तो
0: जी तो ऐसा कोई एक भजन दो लाइन का सुनावा ना हमार श्रोता मल्ला।
1: छत्तीसगढ़ी ने सुना
0: हाँ जी
1: डोंगा मन दिया हा बुड़ जाही हरी, हाउ डोंगा मन दिया हा बुड़ जाही जी, सुनो सुनो साधु भाई ये दे डोंगा मन दिया हा बुड़ी जाही जी
0: जी, नहीं बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गीत ला हमारा डॉक्टर नवल दास मणिपुर जी भी सुनाए रही हैं जब हम उनकर से बातचीत कर रहे हैं। तो अब देखा आप 12-13 साल की उम्र से आप संगीत से जुड़े हैं और जगह जगह आप मन प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तरीके से आप अपन पूरा जीवन लोक संगीत ल समर्पित कर दे है
1: समर्पित
0: ना।
1: करते
0: समर्पित करते हैं तो कोई वो नहीं रहे कि मोला ये सम्मान मिले वो सम्मान मिले। श्रोता दर्शक जो आप मन के गीत ल सुनते पसंद करते हैं ताली बजाते हैं वो सबसे बड़ा सम्मान है आप मन के।
1: हैं।
0: फिर भी जगह जगह आप मन गए हैं तो कला पारखी मन भी सोचते हैं कि भाई इतना समर्पित हैं अपन पूरा जीवन समर्पित कर दे हैं कुछ सम्मान मन के करना चाहिए। तो ऐसा कोई मंच जहां जहां से आप मल्ला सम्मान मिले कुछ सुरता आते।
1: मोला बिलासपुर से मिले हैं 22वां बिलासा सम्मान।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बिलासा कला मंच की तरफ से।
1: बिलासा कला मंच की तरफ से मैं
0: जी
1: दिल्ली गए रहूँ, दोहर आते रहे तो फोन करीन कि
0: हाँ
1: हमन अनसुईया जी के सम्मान करना चाहते हैं 22वां सम्मान।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो ठीक है भाई ठीक है।
0: जी जी
1: फिर ओकर बाद भिलाई में मिली भूया सम्मान,
0: हाँ
1: वसुंधरा सम्मान,
0: जी
1: और कंडेल में मिले रिसमोरा लोक कलश्री सम्मान।
0: अच्छा जी।
1: और यहाँ अभी यदि बनारस गए रहे तो मिली छोटे सम्मान तो बहुत मिले हैं, नारी शक्ति सम्मान भी मिले हैं।
0: जी
1: तो और अभी यदि गए रहे तो यहाँ डॉक्टरेट के सम्मान मिले।
0: जी। ये बहुत बड़े सम्मान है आपके आपके कला के सम्मान है
1: हाँ
0: और ये सब आप लगातार जुड़े हवा। आपके यहाँ गीत संगीत के एक अच्छा माहौल है। आप दोनों पति पत्नी तो कला खातिर समर्पित है
1: समर्पित
0: आपके बेटा मन भी समर्पित हैं और आप मन से भेंट मुलाकात हुई तो आपके छोटे से पोती भी साथ में आए रही से
1: आए
0: और
1: हुआ
0: ओकर से भी पता चले कि वो भी गीत संगीत में रुचि
1: रुचि
0: रखते हैं।
1: रखते।
0: तो आप मन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो घर परिवार खातिर हो गए। एकर अलावा जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए जो नए नए कलाकार हैं है ना वो मन लग भी आप मन के आशीर्वाद चाहिए आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। तो कैसे आप मन वाला रास्ता दिखा था कि हमार ठीक है आधुनिकता भी अपनाना है लेकिन हमार जो मूल है हमार जड़ वाला भी बचा के रखना
1: बचा
0: है।
1: के रखना है।
0: तो कैसे आप
1: तो
0: मन कर था।
1: मैं तो आने वाला पीढ़ी कलाकार मंजिला यही संदेश दूँ कि जिन हमन है पहले से चलें बढ़िया
0: जी
1: तो वैसे मान मर्यादा ला रखते हुए तुम मन चलो। फुहरता के पनल छोड़ दो, फुहरता 4 दिन के ज़्यादा नहीं है। तो बढ़िया से लोक कला के सम्मान जे में 4 झंडाई महिमन बैठ के देख सकें, बढ़िया सुन सकें, ऐसे टाइप के प्रस्तुति करो। तो थोड़ा सा लोक कला के मर्यादा भी है रही जही, और
0: जी
1: मर्यादा देखते हुए काम करो इसे।
0: जी जी और कुछ कहना है एक कार्यक्रम से विदा ली एकर पहली।
1: आप मन
0: जैसे डॉक्टर नवल दास जी ला मैं पूछे रहे कि आप मन पहली जब आकाशवाणी आत रहा तो ये जो दरी बिछे है मैं बैठ के अपन साज के साथ में गाना गात रहा
1: गाना गाने
0: है
1: हम
0: ना
1: चल देन
0: चल देवा। आज कुर्सी में बैठ के आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहा था है ना। अब पूरा आपके जो संगीत के जो यात्रा के बारे में चर्चा कर रहा था तो कैसा महसूस होते आप लाज।
1: बहुत अच्छा महसूस होते। मैं अपन आप में एकदम गर्व महसूस कर रहा था कि मैं आप मन के बीच में बैठ के और अतका कन बात ला बोले हमने, तो मैं गाय भर भर जानता हूँ, बोले भर नहीं जाना
0: लेकिन यह है कि हमारे डॉक्टर नवल दास मानिकपुरी जी जो हैं उनकर संगत के असर तो
1: हाँ तब
0: पड़ते ना।
1: तक 45 46 साल हो गए
0: हाँ
1: संग में।

0: रहत
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक
1: जी
0: दूसर ले तो एक दूसर के असर पड़बे करी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: है ना।
1: तो
0: उमर जतका भी कला के निखार हुई से तो ओकर संगे में आई के बाद हुई से
1: जी
0: दोनों के एक साथ गायन बजाने करन
1: हाँ, डॉक्टर अनुसुईया मणिपुरी जी,
0: था।
1: आज आप हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया और आपसे हमन बातचीत करें आपके संगीत यात्रा के बारे में, और बहुत कुछ नया नया बात सुने पर मिली जेला हमारे श्रोता मन नहीं जानत हैं, लेकिन आज आपसे जो बातचीत हुई सेकर माध्यम से बहुत कुछ जानने के प्रयास करी, में बहुत कुछ जान गिन है आपके बारे में। आप ऐसे लगातार आगे बढ़त रहा लोक कला के क्षेत्र में, और आए वाला जो पीढ़ी है नई पीढ़ियों में भी आप मन के मार्गदर्शन मिलत रहे, ये उम्मीद हमन करत हन। आज आप स्टूडियो में आया एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमार संस्कृति हमार कलाकार, ये क्रम में अभी आप मन सुनत रहे हो डॉक्टर अनसुईया मानिकपुरी से हमार बातचीत, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक ले यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में साहित्यिक समन्वित पत्रिका मोर भुइयां, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 9 बजे हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गुलाम फिल्म का गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही क्लियर होता है दोस्तों, जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी नागरिक जागरूक बन सकें और अपना सहयोग इन कार्यों को दे सकें। हम सभी, जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, हर एक का अपना महत्व है, जो पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, इनका उचित उपयोग करना हमारा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है, और यही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाया जाने का उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें नेचर की रक्षा करनी ही होगी और उन्हें भी आगे यही सत्कर्म करने का वचन देना होगा। प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि सुकून की सबसे खूबसूरत भाषा प्रकृति ही बोलती है। हर सुबह धरती को, सूर्य को, आसमान को, हवाओं को, पानी को, सबको धन्यवाद दीजिए। हर शाम इनसे दोस्ती कीजिए। पेड़ों, नदियों और हवाओं से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, उसे संवारें, ताकि आने वाली हर सुबह और भी हरी भरी, खुशहाल और मुस्कुराती रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम मनाएंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से। दिलजीत दोसांझ की आवाज है। जानी का लिखा गीत, बी प्राक और तनिष्क बागची का संगीत।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए। और आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

1946 के शुरुआती दिन रहे होंगे। उर्दू के जाने माने साहित्यकार सादात हसन मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत अपने एक मित्र को बुलावा भेजा बतौर लेखक हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मंटो मित्र मुंबई पहुंचे, संवाद लेखन आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में अभिनय भी किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग या डायलॉग राइटिंग उनके बस की बात नहीं।

नहीं है, उन्हें तो बचपन से शायरी का शौक रहा है। उसी वर्ष फिल्मिस्तान स्टूडियो के निर्देशक एस मुखर्जी ने उन्हें गीत लेखन का अवसर दिया। फिल्म थी दो भाई, संगीतकार थे एस डी बर्मन। दो भाई के ये गीत अत्यधिक पसंद किए गए और ये गीत उस शायर को स्थापित कर गए जिसका नाम था राजा मेहदी अली।

1928 में अखंड भारत के कर्माबाद में जन्मे राजा मेहदी के सर से 4 वर्ष की कच्ची उम्र में पिता का साया उठ चुका था। उस परिवार के करीबी मित्र मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार राजा मेहदी की वालिदा हिबे साहिबा एक जहीन महिला थीं और उस जमाने की एक मानी हुई शायरा भी। मतलब शायरी की घुट्टी तो राजा मेहदी को बचपन से ही मिल रही थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ उनका शायरी का शौक बढ़ता ही गया। 1946 का वाकया तो हमने आपको बताया। 1947 में आजादी के बाद उभरी विभाजन की कठिन परिस्थितियों में राजा मेहदी अली खान ने अपनी पत्नी ताहिरा के साथ भारत में ही रहने का निर्णय लिया। और यही नहीं, 1948 में शहीद फिल्म के लिए गाने लिखकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। शहीद के अलावा उस वर्ष उन्होंने एक्ट्रेस, विद्या और जिद्दी फिल्म के लिए भी गीत लिखे। लेकिन एक सफल गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 1950 का, जब उन्हें मिली फिल्म आंखें। संगीतकार थे मदन मोहन। मदन मोहन साहब के साथ राजा मेहदी अली खान ने जोड़ी बनाई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कामयाब और मशहूर गीतों का। अदा, मदहोश, जागीर, अनपढ़, आपकी परछाइयां।

जब याद किसी की आती है और नवाब सिराजुद्दौला। ये तो केवल कुछ नाम हैं उन फिल्मों के जिनके गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए और इन गीतों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया और बनाया राजा मेहदी अली खां को सफलतम गीतकार।

राजा मेहदी अली खान संभवतः पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रियतम के लिए आप शब्द का उपयोग किया। आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़, आप क्यों रोए फिल्म वह कौन थी, आपने अपना बनाया फिल्म दुल्हन एक रात की, ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि राजा मेहदी अली खान केवल संजीदा किस्म के ही गाने लिखते थे, उनकी शायरी का व्यंग्य पक्ष भी अत्यधिक मजबूत था और उनके द्वारा रचे गए कुछ हास्य गीत भी सुनने वालों को भा गए। इन मजाहिया गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो गीत जो उन्होंने मेरा साया के लिए लिखा।

भी फहरिस्त है। खेमचंद प्रकाश, बुलोस ईरानी, एस एन त्रिपाठी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, रवि, रोशन, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओ पी

राजा मेहदी अली खान वास्तव में अपनी शायरी की दुनिया के राजा थे, क्योंकि बनी बनाई धुन पर उन्होंने कभी भी शब्द नहीं पिरोए। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मदन मोहन के अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कभी काम नहीं किया। अन्य संगीतकारों की एक लंबी

29 जुलाई को राजा मेहदी अली खां इस संसार से विदा हुए और जाकर बस गए अपने चाहने वालों के, फिल्म संगीत प्रेमियों के।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से अनुप्रसारित कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 होने को हैं। कुछ क्षणों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वर यादव ने रजत पदक जीता। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में राजनांदगांव की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता से प्रदेश के युवाओं और विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव और राज्य के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद शामिल हुए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने, योजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। मिशन की नियमित निगरानी और केंद्र राज्य समन्वय के योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव विकासशील ने ई ऑफिस के माध्यम से फाइलों के त्वरित निराकरण और समयबद्ध उपस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जून माह के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों और जिलों में हर माह ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने EHRMS स्पैरो और ई ऑफिस में 100% डिजिटल ऑन बोर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगले माह से सर्वश्रेष्ठ विभागाध्यक्ष कार्यालय और जिला कार्यालय को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव करेंगे। इस अवसर पर देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और खिलाड़ी, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, खेल सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कॉन्क्लेव के शाम के सत्र में शामिल होंगे और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। जगदलपुर जिले में पांचवीं और आठवीं की 2380 मार्कशीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर परीक्षा संचालन और परीक्षा परिणाम तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरते जाने की जानकारी मिल रही है। इस मामले में कलेक्टर आकाश छिकारा के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सातों ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दुर्ग स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह स्क्रैप की कथित चोरी के मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 7 जवानों को निलंबित कर दिया गया है। उन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच में करीब 250 टन लौह स्क्रैप की ऑस्ट्रेलियन कोक की कथित चोरी की बात सामने आई है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित बेंद्री डैम में सोमवार को मछली पकड़ने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के संग देश और दुनिया की हर चीज को जानने और नजदीक से देखने की इच्छा को हमेशा जीवित रखा है। प्रकृति ने इस धरा को जहां अनगिनत दर्शनीय स्थल दिए हैं, तो वहीं मनुष्य ने भी अपने अदम्य साहस और सृजन का परिचय देते हुए अनेक कृतियों का निर्माण किया है, जिसे पूर्ण होने में बरसों लग गए। प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हो या ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल हो या कोई अद्भुत कृति, इन सभी स्थलों के भ्रमण के आकांक्षी नागरिकों के लिए अब इनके समीप जाना और भी आसान हो गया है। शासन द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से
1: मैं डॉक्टर अनुराधा दुबे, जनसंपर्क अधिकारी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। ये केंद्र सरकार की योजना है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की, और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ काम हुए हैं, जिसमें ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के नाम से स्वदेश दर्शन 1 के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़

में अलग अलग जिलों में अलग अलग पर्यटन स्थलों में लगभग 13 टूरिस्ट रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है और इन रिजॉर्ट को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश विदेश के पर्यटकों के बीच अपनी जनजाति संस्कृति के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसे दृष्टिगत रखते हुए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत 13 रिजॉर्ट का निर्माण किया गया और उसे जनजाति संस्कृति, उनकी जीवन शैली, उनके खान पान और उनके परंपरा और उनके संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इन रिजॉर्ट्स का निर्माण किया गया है, जहाँ पर माड़िया हाउस में भी आपको रहने की सुविधा है, जहाँ पर आपको आदिवासी संस्कृति को भी आप देख पाएंगे, उनके खान पान का आप स्वाद ले सकेंगे और उनकी जो पेंटिंग्स है, उनकी जो चित्रकारी है, उनका जो शिल्प है, वो भी इन 13 रिजॉर्ट्स में आप जा करके देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अभी जो स्वदेश दर्शन 2.0, जो सेकंड इसका जो चरण है, वो अभी इसकी शुरुआत हुई है भोरमदेव कॉरिडोर के रूप में। और भोरमदेव कॉरिडोर जो है वो छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में भोरमदेव शंकर भगवान का मंदिर है, जिसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो काफी सालों से पर्यटकों के बीच में और वहाँ स्थानीय लोगों के मन में ये इच्छा थी कि इसको एक पूरा एक सर्किट का, एक कॉरिडोर का एक रूप दिया जाए। तो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और ये शुरू भी हो चुका है। इसके निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटकों को बहुत भव्यता के साथ भोरमदेव के दर्शन भी होंगे, आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी और परंपरागत रूप से ये उसके आध्यात्मिक स्वरूप का आनंद भी ले सकेंगे। इसी तरह से जशपुर जिले में मयाली बगीचा का चयन किया गया है। मयाली अभी वर्ल्ड फेमस हुआ है अपने मधेश्वर पहाड़ की वजह से और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। और बागीचा भी जो है वो प्रकृति से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो इस मयाली को और बागीचे को 2.0 के अंतर्गत विकसित करने की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल चुकी है, उसके लिए बजट भी प्राप्त हो चुका है। और हाल ही में अभी चंपारण, जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रकाटी स्थली है, रायपुर जिले में स्थित है, उसका प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया है 2.0 के तहत। वहां पे भी विकास कार्य किए जाने हैं ताकि जो गुजरात से और देश और दुनिया से जो पर्यटक चंपारण्य में आते हैं उन्हें आधुनिक सुविधाएं मिल सके। वहां पे म्यूजियम का भी निर्माण होगा जो वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य को से संबंधित होगा और दूसरे जो अधोसंरचना विकास है वो भी वहां पे हो सकेंगे। तो इन सारे डेवलपमेंट के साथ एक जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो मकसद है वो ये है कि पर्यटकों को अधोसंरचना, जो बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो तो मिले ही, साथ में वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी मिले। इनसे ये होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, टूरिस्ट गाइड के रूप में वहाँ पे जो आर्टिजन होते हैं उनको अपनी कला को मार्केट में सेल करने का अवसर भी मिलेगा और जो हमारी जनजाति संस्कृति है, जो हमारे आसपास के जो हमारे कल्चर है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन है, उसका भी स्वाद लोगों को चखने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी भी लोगों को मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरी योजना पे काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार की मदद से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के 2.0 के माध्यम से, जो कि स्वदेश दर्शन की ये दूसरी कड़ी है।

स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करना है। इसे अब गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया गया है, जिसका लक्ष्य स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटन

0: पर्यटन बुनियादी ढांचा तैयार करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय सर्किट और भोरम देव कॉरिडोर जैसी प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 13 प्रमुख आदिवासी पर्यटन स्थल और भोरम देव मंदिर विकास परियोजना शामिल है। इस योजना में चित्रकूट, तीरथगढ़, जगदलपुर, मैनपाट और जशपुर सहित 13 स्थल शामिल हैं।
1: मैं पद्मश्री डॉक्टर उषा बारली बोलत हूँ। बड़े सुंदर हमला छत्तीसगढ़ शासन हाँ सोमनाथ भगवान मंदिर के दर्शन करे की हमला अवसर प्राप्त करी, वो हमला बड़ा खुशी लगी और अच्छा लगी। और ये योजना में तो कम से कम हमन 1008 आदमी रहे हैं, लेडीज भी रही से, जेंट्स भी रही से, सियाना भी रही से, मंत्री मन भी रही से, विधायक भी रही से, पार्षद मन भी रही से, सरपंच मन भी रही से, पूरा छत्तीसगढ़ से, पूरा बस्तर से आए रही से, अंबिकापुर से आए रही से, और हमन कलाकार मन भी रहे हैं और पद्मश्री कलाकार मन भी रहे हैं और हमारे और भाई बहनी कलाकार है दोनों मर रही हमें, मतलब ऐसे सब ला मिला जुला के 1008 आदमी हमारे रहे हैं। हाँ पूरा ट्रेन हाँ पूरा एसी डब्बा रही से, पूरा ट्रेन भरा रही से, खाना पीना कोनो चीज की हमला परेशानी नहीं हुई से, समय में हमारा सब चीज मिल जाती से, सब ये खर्चा ला संस्कृति विभाग करी शासन करी, खर्चा तो बहुत हुई हमला लेकर, खर्चा के अनुभव हमला नहीं है। तो जितका भी हम गुजरात में जाके पहुंचे हैं तो गुजरात सरकार भी हमला बहुत सुंदर सम्मान करी से, कलाकार मन भी अपन तैयार होके हमला बाजा पेटी में पढ़ा के हमारे रूम तक लेगी से, अब बड़कन होटल ला सब बुक कराए रही से, और 20-25 ठन बस भी रही से जो हमला लाने ले जाने के जो काम करत रही सब, तो ऐसे हमला अच्छा जगह में भी ठहरा रही से, खाना पीना की कोई मतलब दिक्कत नहीं रही से, सब अच्छा रही से, और सबो मंदिर के दर्शन कर रही। तो लास्ट टाइम में हमला गुजरात में मतलब सोमनाथ भगवान मंदिर के दर्शन कर रही, तो हम जटका भी हमारे वहाँ गे रहा 1008 आदमी, तो आरती करें एक साथ अपना अपन हाथ में दिया धर के, सब एक साथ आरती करें पूजा करें, और हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो परिचय थे वहाँ के मंच में सब कलाकार खड़ा होके, और जितना भी हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन सब गे रहे ना मना छत्तीसगढ़िया मन, तेना सब कोई मंच में खड़ा होके और मंदिर के सामने अपन अपन हाथ में दिया रख के सोमनाथ बाबा के आरती पूजा करे हैं, और अपन अपन कला के भी थोड़ा थोड़ा प्रदर्शनी करे हैं, कैसा सृष्टि बनाया, बनाने वाला कैसा सृष्टि बनाया, यह संसार जला जल दिखे, धरती कहाँ ठहराया, बनाने वाला कैसा सृष्टि बनाया, और हमारे अरपा पैरी वाले भी गाना गई सवे, और हमारे कलाकार मन कुछ कुछ गाना सब गई हमें, इसे हमारे बहुत सुंदर ये योजना रही सवे, और घुमाते घुमाते कि हमारा वो भगवान कृष्ण के मंदिर मिलेगी, और अंत में हमन सोमनाथ भगवान के फिर दर्शन करे हैं दिया विया जला के गाना उन गा के, तो ऐसे हमारे सरकार हा ये योजना ला बना के, और कौन सा समय में और कैसे दिमाग लगा के और कौन सा लगन में ये योजना ला बना के छत्तीसगढ़ के पूरा कलाकार ला छत्तीसगढ़ के आदमी मल्ला यो साहब वगैरह सब मंत्री वगैरह सब ला योजना बना के वो तीर्थ यात्रा के नियम निकाली और ऐसे सुंदर अवसर दी जेमा हम लोग सब झंडा भगवान सोमनाथ जी के दर्शन करे के मौका मिली, तो ऐसे शुभ कार्य के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन ला संस्कृति विभाग ला और हमारे शासन प्रशासन हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे बड़े भैया छत्तीसगढ़ के राजा दुलरवा बेटा विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जिला हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों

0: का विकास करना और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। जशपुर के अप्रतिम प्राकृतिक स्थल मयाली बगिया के विकास के लिए इसे उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के धार्मिक और पर्यटन स्थल की भव्यता और उसके कायाकल्प के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन जगहों का चयन किया जाना प्रदेशवासियों के लिए खुशी का विषय है।
1: मैं प्यारेलाल देशमुख ग्राम निकुम के रवैया हूँ और गीतकार और कवि धरोहर में हूँ। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार और गुजरात सरकार एकर एक योजना दी से कि छत्तीसगढ़ के कलाकार और साहित्यकार मल्ला सोमनाथ के यात्रा करवाया जाए, तो में हमरो नंबर लग गए, हम यात्रा करें, है ना। तो बहुत हम तो आभारी हन इकर मन के जोन हमला वहाँ मौका दी सोमनाथ के दर्शन करे के, इकर बार बार आभारी हन मन है। तो रेल सौगे बोगी रेलगाड़ी हमारे मन पर रही से, रेलगाड़ी में दो दिन सलग चली, दो दिन जाए बाद में वहाँ पहुंचे, वहाँ रेलगाड़ी भी अच्छा व्यवस्था रही से, खाए पिए की व्यवस्था रही से, नाश्ता रही से और खाना समय समय में कोनो कमी नहीं रही से, ऐसी बोगी रही से। हम हाँ सोचे भी नहीं रहे, मैं सोचे भी नहीं रहे कि ऐसे ढंग के मोला मौका लग गई रेलगाड़ी में पूरा सोए हुए के कोनो प्रकार के कोई ये नहीं रही से। और दो दिन के सफर में वहाँ पहुंचे तो 5-स्टार होटल में हम लोग रुकाए गई वहाँ व्यवस्था रही से, वहाँ भी अच्छा व्यवस्था रही से। वहाँ पहुंचे के बाद घुमाए बस एक बस के इंतजाम गलोक रही से, सबो जनला एसी वाले बस में घुमाए गई। और सोमनाथ मंदिर वहाँ पहुंचे तो छत्तीसगढ़ के कलाकार मन के अति सम्मान करी सोमन हा, विशेष व्यवस्था रख रही थी वहाँ और लेजर लाइट के द्वारा वहाँ वीडियो दिखाई गई कि सोमनाथ ला कतेक बार बाहरी विदेशी मन लूटी से, ओकर पूरा वीडियो दिखाई गई से। ऐसे ढंग के हमर मन की यात्रा रही से, बहुत गंज मजा रही से मल्ला।

0: पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने इस वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में बस्तर के डुडमा राज गांव को एडवेंचर टूरिज्म और चित्रकूट गांव को कम्युनिटी वेस्ट गांव की सूची में पहला स्थान दिया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में सरोधा दादर को जगह मिली है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस वर्ष की थीम पर्यटन और शांति निर्धारित की गई है। वैश्विक स्तर पर संघर्ष और विभाजन के माहौल में इस थीम की बहुत प्रासंगिकता है। शांति के साथ सतत विकास की दिशा में सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
1: हाँ, मेरा नाम लखनलाल साहू है। मैं मोखला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ और संस्कृति विभाग और भारत सरकार के सौजन्य से हम लोगों को सोमनाथ यात्रा स्वाभिमान यात्रा में ले गए थे और लगभग 1000 से अधिक लोग गए थे हम लोग छत्तीसगढ़ से, जिसमें पूरे जितने भी विशिष्ट व्यक्तित्व हैं पद्मश्री पद्म विभूषण से लेकर के और अन्य जो अलंकृत सम्मान प्राप्त जो व्यक्तित्व हैं, चाहे वो साहित्य से संबंध हो या कला से संबंधित हो और अन्य अन्य विधाओं से संबंधित जितने भी थे वो सब गए हुए थे। और हमारे साथ अधिकारी वर्ग भी थे और कलाकार भी थे और साहित्यकार लोग भी गए हुए थे। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छी सुविधा थी वहाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर हम लोगों को विदा किया गया। उसके बाद फिर वहाँ जो ट्रेन थी बुक, उसमें भी अच्छी सुविधाएं रही। और वहाँ जाने के बाद गुजरात सरकार द्वारा भी वहाँ की जो पारंपरिक जो लोक कला है, लोक नृत्य है, उसके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के कलाकारों का, साहित्यकारों का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। वहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था से लेकर के व्यवस्थित रूप से किस तरह से सोमनाथ मंदिर में बाबा सोमनाथ धाम का दर्शन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पूरे 1000 से अधिक लोगों को दर्शन कराया गया, और बहुत बढ़िया यात्रा रही है। और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से समय समय पर जो हमारी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, अलग अलग स्थल है, उसे देखने के लिए, दर्शन के लिए बराबर इस तरह से हर वर्ग को ले जाना चाहिए। युवा वर्ग को हो, चाहे बुजुर्ग को हो, चाहे कला साहित्य संगीत से जुड़े हुए अन्य हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को, के लिए इस तरह से योजनाएं होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा सोमनाथ यात्रा।

0: पर्यटन स्थलों का विकास जहां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं स्थानीय निवासियों के जीवन में खुशियां भी लाता है। इन पर्यटन स्थलों में सैलानियों का आगमन रोजगार सृजन के लिए वरदान साबित हो रहा है। ठहरने के लिए होटल की जरूरत हो या भोजन के लिए भोजनालय की, टैक्सी, ऑटो या रिक्शा चलाने वाले लोग हों या छोटी छोटी दुकानों में विभिन्न तरह के सामान विक्रय करने वाले दुकानदार, पर्यटन के विकास ने सबके लिए प्रगति के नए द्वार खोल दिए हैं।
1: मैं डॉक्टर दानी प्रसाद शर्मा दीक्षित कॉलोनी भिलाई में रहता हूँ। मुझे हमारे जो समन्वयक हैं राजभाषा के किशोर तिवारी जी के माध्यम से पता चला कि स्वाभिमान यात्रा सोमनाथ के लिए जा रहे हैं साहित्यकार कलाकार लोग, आप जा सकते हैं क्या? तो मैंने हाँ भरी कि इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ मिलेगा। और उसके बाद मेरा चयन हुआ उसमें, और स्वाभिमान यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 1000 से भी अधिक लोग थे, कलाकार 1000 थे और बाकी अधिकारी लोग थे। हम लोग जो ट्रेन थी, निःशुल्क ट्रेन जो हमारे भारत सरकार द्वारा दी गई थी, उसमें हम गए और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और राजेश अग्रवाल जी संस्कृति मंत्री हैं, उन लोगों ने झंडा दिखा करके हमारी ट्रेन को रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किए। हम लोग बड़े खुश हुए और बहुत ही मनोरंजक ढंग से, सभी लोग साहित्यकार थे, गीतकार थे, गायक थे और विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े, सभ्यता से जुड़े लोग थे। तो पूरे ट्रेन में भी वैसे माहौल रहा, सब गाना बजाना सब साथ लेके गए थे, तबला है कि ढोलक है, हारमोनियम है, सब लेके गए थे, खंजेरी डफली सब लेके गए थे। बड़े बड़े कलाकार थे, लोक कलाकार भी थे, जैसे कि हमारी जो गायिका हैं कविता वासनिक और रजनी रजक, ये लोग भी गए और पद्म श्री से सम्मानित लोग भी थे, उषा बार्ले जी भी गई थी। और सभी ने अपना अपना कार्यक्रम देते हुए ट्रेन से गए। बड़ा आनंद आ रहा था हम लोग को और ऐसा लगा जैसे सरकार ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिए हों, वरदान हमारे लिए था ये। और जब वहां पहुंचे हम लोग स्टेशन में, तो गुजरात की कलाकारों ने नाचते गाते हुए हमारा स्वागत किया। हम लोग अभिभूत हो गए, फूलों की वर्षा की उन्होंने, जबकि रात्रि में हम लोग पहुंचे थे, तब भी इस प्रकार से उत्साह।

था इस प्रकार से हमारा स्वागत किया गया और उसके बाद हमें बस से, सरकारी बस से गुजरात की सरकार द्वारा होटल में, विभिन्न होटलों में ठहराया गया, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था थी भोजन आदि की। ट्रेन में जाते समय भी भोजन, नाश्ता आदि की व्यवस्था बहुत उच्च किस्म की थी और हम लोग होटल में रुके। उसके बाद दूसरे दिन बस से ही घूमने गए, वहां जो विभिन्न मंदिर हैं उन मंदिरों को देखा हमने सोमनाथ के आसपास। और शाम के समय दूसरे पहर में सोमनाथ मंदिर ले गए और वहां भी हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया और बहुत ही सम्मान दिया गया हमें। वहां के जो मंदिर, जो ट्रस्ट था, उन लोगों ने हमें बहुत ही सम्मान के साथ हमारी अगवानी की। लौटते समय वही मंदिर से जब लौट रहे थे तो हवन सामग्री विशेष सोमनाथ के मंदिर से दिया गया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद बन के आया। और उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए पीछे, जो मंदिर के पीछे जो जगह बनी हुई है मैदान, और उस मैदान में हम लोग सब लोग बैठ गए और दीप जलाए, सभी लोग दीप लेकर के आरती किए। बहुत अच्छा वातावरण लग रहा था वो वातावरण। और उसके बाद जो हमारे कलाकार लोग थे वो सभी लोग एक से बढ़कर एक वहां पर अपनी प्रस्तुतियां दी और इन प्रस्तुतियों से ऐसा लगा जैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति गुजरात में आज उदित हो गई हो। अभी बहुत हर्ष हो रहा था ऐसे वातावरण में, समुद्र के किनारे इस मंदिर के सामने इस कार्यक्रम दिया गया। कार्यक्रम होने के बाद एक जो साउंड और लाइट्स के माध्यम से एक वृत्त चित्र दिखाया गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक, जो कई बार वहां पर आक्रमण हुए और किस प्रकार से पुनरुद्धार किया गया, उनका विस्तृत वर्णन था जिसमें। और उसके बाद हम लोग बड़े उत्साह के साथ सोमनाथ यात्रा समाप्त करके वापस आए।

बस्तर में चारों ओर फैले सघन वन हो या मैनपाट की पहाड़ी, चित्रकोट का जलप्रपात हो या कांगेर वैली की गुफाएं, छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने अप्रतिम सौंदर्य का वरदान दिया है, जिसकी गोद में रहने वाले स्थानीय निवासी अनेक कलाकृतियों और उपयोगी सामानों के निर्माण में सिद्धहस्त हैं। इसके अलावा हमारे वनों से हमें प्रचुर मात्रा में वन औषधि भी मिलती है। इन कलाकृतियों और वन औषधियों के विक्रय को भी आसान बनाता है पर्यटन का विकास, जिसमें छिपे हैं भविष्य की अनेक राहें, जो पर्यटन के विकास के साथ प्रदेशवासियों को ले जाएंगी एक नए उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए तराने।

ये मीठी सी आवाज़ है मोनाली ठाकुर की। फिल्म का नाम दम लगा के हईशा। इस गीत को लिखा है वरुण ग्रोवर ने, अनु मलिक ने संगीत निर्देशन दिया है। आइए सुनते हैं ये पहला कार्यक्रम का गीत।

दम लगा के हईशा। इस फिल्म का ये मीठा सा गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। नए तराने कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत विशाल मिश्रा की आवाज़ और उन्हीं की संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है सावी और इस गीत के बोल लिखे हैं राज शेखर ने।

अगला गीत सुनते हैं तुलसी कुमार के साथ आतिफ असलम की आवाज में। रोचक कोहली का संगीत निर्देशन है, कुमार के लिखे हुए बोल, फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। 11 बजे से 11:30 बजे तक आप पूछ सकते हैं शरीर में होने वाले तिल और मस्सों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय।

0: संबंधी रोग एवं उनका निदान। 11:30 बजे तक, 11 बजे से 11:30 बजे तक आप पूछ सकते हैं शरीर में होने वाले तिल और मस्सों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026 266592 और 310026। फोन नंबर लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाइएगा। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय मानसून बिलासपुर जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में सक्रिय है। मौसम विभाग के द्वारा कल से 3 दिनों तक तेज वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। कल शाम को अच्छी वर्षा भी हुई है। ऐसे मौसम में वर्षा एवं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका होती है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जहां तक संभव हो ऐसी स्थिति में बाहर ना निकलें। यदि सफर के दौरान ऐसी स्थिति बनती है तो खुले स्थान में ना रहें, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ही खड़े ना हो, पूरी तरह सुरक्षित स्थान में ही रुके। इस प्रकार के मौसम में जब वर्षा हो रही हो, बादल गरज रहे हो, बिजली भी चमक रही हो, तब दो पहिया वाहन तो बिल्कुल न चलाएं। लगातार हो रही वर्षा से जगह जगह जल भराव के साथ ही सड़कों में भी गड्ढे बन जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है। गड्ढा बड़ा भी हो सकता है, तब वाहन चलाते समय सड़क में जहां पानी भरा हो वहां से वाहन बचाकर चलें। यदि किसी भी पुल पुलिया या सड़क के ऊपर बहुत अधिक पानी बह रहा हो तब ऐसी स्थिति में आगे हरगिज न जाएं, यह खतरे से खाली नहीं है, सतर्क रहें। मित्रों, वर्षा के दिनों में जब सड़कों में जगह जगह पानी भरा हो तब जरा संभल कर वहां चलाएं, क्योंकि सड़कों में स्कूल जा रहे विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोग भी पैदल चल रहे होते हैं। कुछ वाहन चालक बड़ी लापरवाही से वाहन चलाते हैं जिससे सड़क के गड्ढों में भरा पानी का छींटा स्कूली बच्चों पर या पैदल चल रहे लोगों पर पड़ता है। ऐसे में विवाद की स्थिति तो बनती ही है। इन छींटों से बचने के प्रयास में वाहनों के आते देख एकाएक ये पैदल यात्री सड़क में इधर उधर होते हैं, कई बार ऐसा करते दूसरे वाहन से टकरा भी जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वाहन चलाते गंभीरता बरते, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
2: एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है रितेश सिद्धवानी की फिल्म और शंकर एहसान लॉय का संगीत निर्देशन है।

श्रेया घोषाल, क्षितिज वाघ और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गेम से। चलिए कार्यक्रम में आखिरी गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म जवान से। उसके पहले आपको याद दिला दें, आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की, जिसमें डॉक्टर मकरध्वज श्रीवास्तव का काव्य पाठ आप सुन सकते हैं। विनोद कुमार गुप्ता की हास्य वार्ता भी आज हम प्रसारित करेंगे, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की होगी। इसके बाद शाम 5:35 से महिला सभा में सामयिक चर्चा होगी, सतर्क रहें, हेपेटाइटिस को हराएं। क्रम होगा फोन करें गीत सुने का, प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी।

जवान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के साथ साथियों की आवाज़ों में, जिसे लिखा था कुमार ने और संगीत निर्देशन अनिरुद्ध रविचंद्र का था।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण, जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के ठीक 11 बजे हैं, समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
2: जी।
3: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
3: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मित व्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
3: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
3: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।

0: श्रोताओ, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना। शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: जी श्रोताओ, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
0: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
1: जी तो श्रोताओ, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो...
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
7: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
7: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
7: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
7: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
8: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
8: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी धींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
8: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
8: अच्छी? और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो यहाँ। यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, जी, जी।
8: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
5: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद

0: से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
1: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
2: दीदी लता, दीदी लता।
1: लता?
3: जी दीदी।
1: क्या ये लता?
3: जी दीदी।
1: अरे नहीं।
3: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
1: अच्छा,
3: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया। सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
1: अच्छा
3: जी दीदी।
1: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हां
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूं।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जुबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हां। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा-जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेलकूद दिखाए।
3: हां दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इस पे हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हां बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी, मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी,
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 103.2 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग, और इस संदेश से पहले आप सुन रहे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल गम बड़े आते हैं। इस एल्बम से संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और अब सुनते हैं रंग तरंग की अगली पेशकश।

अनूप जलोटा की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मूड्स ऑफ अनूप जलोटा एल्बम का नाम था। संगीत अनूप जलोटा ने दिया। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: जॉगर्स पार्क से ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला।

0: सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की।

0: अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तनहा दिल, ये था एल्बम का नाम। शान की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, राम संपत ने संगीत दिया था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से, उसके बाद 12

0: बजे से संध्या 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। अभी के लिए आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम्स की महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में राजनांदगांव की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता से प्रदेश के युवाओं और विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव करेंगे। इस अवसर पर देश भर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और खिलाड़ी प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, खेल सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कॉन्क्लेव के शाम के सत्र में शामिल होंगे और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि भारत के खिलौना उद्योग का विकास विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश की प्रगति को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से पृथ्वी को बचाने, प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे खत्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। 28 जुलाई की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है। उन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। दंतेवाड़ा जिले में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा भांसी थाना क्षेत्र में हुआ है। जगदलपुर जिले में 5वीं और 8वीं की 2380 मार्कशीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर परीक्षा संचालन और परिणाम तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरतते जाने की जानकारी मिल रही है। इस मामले में कलेक्टर आकाश छिकारा के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन आज रायपुर में किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक शामिल हैं।

0: इस सवर्ण स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

खिलाड़ी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। अनवर सागर ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन

0: डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आरडी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके संग। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत हम सुरीला सफर में आज शामिल करते हैं। तो जल्दी से वो शब्द चुनकर आप अपने पसंदीदा गीत या जो आपको लगता है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले गीत हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती है। और अगर आपकी लिस्ट हमसे मेल नहीं खाती, तब भी आप अपने पसंदीदा गीत उन शब्दों से चुनकर लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जल्दी से, लेकिन हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, या फिर जिन्होंने बहुत लेट ट्यून इन किया है, उनके लिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, पूछो ना उस दिल से जिसने बस एक ही वादा निभाया है, मेरी हंसिनी की मुस्कान को हर दुआ में सजाया है, ये मन आज भी उसी पहले प्यार की मुलाकात में ठहरा है, और कोरा कागज अब तक उसी अधूरी दास्तां का चेहरा है, कहीं ना जा यूं मेरी यादों की गलियों से गुजर कर, कुछ पल तो ठहर इन धड़कनों की सदा सुनकर, बस एक बात कहनी है वादा करो, चाहे बदल जाए मौसम, बदल जाए रास्ते हजार, जहां भी रहो मुझे तुम याद करना। तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और कौन से गीत हम आज शामिल करेंगे। बिना देरी किए आज इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफर की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है, और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है, और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है इस संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज

सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूं कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं, और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं, और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बदल गई है। तो उन वादों की बातें करते हैं, लिखिए मुझे संदेशों पर, और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहाँ उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत जोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफेद कागज पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां। मैं लिखी हुई दास्तां हूं, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटड़ा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद भी लीजिए, और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी जरूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किया अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और रख रहे हैं बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है,

की अड़िग और अड़िग रहता हूँ इस वादे पर। हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक जरूर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। योगेश ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। और मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ। और एक वादा विविध भारती के साथ किया है, सदा साथ रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा

है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें, और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ बिल्कुल, ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है, और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफर में 25 मिनट लेट हो गए, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार, 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पट ब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूंगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का, और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है, रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा, क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो ज़रूर रहना चाहिए लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि

किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है, हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है कभी धूप भी आ रही है और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत सफर में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है अपनों के लिए, यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का

जो गीत हैं उनके उनका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफर का मजा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफर में जो है इंटरनेट महाराज आंख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने वीबीएस के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत।

कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज, और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफर की वादा से और अब खत्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब

कुछ तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप

में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है, वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं।

बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी।

0: और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में

0: बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
2: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
3: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
4: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
5: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य

0: अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरिया के सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए। हाँ, और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
2: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों की नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें, और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं।
2: तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।

0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन जिसको कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जाँच और टीकाकरण कराना और बहुत ज़रूरी है, ये सब
0: बिल्कुल।
1: बातें बता रहे हैं।
0: तो आरती, कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा
1: बिल्कुल
0: लें। और चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा
1: बिल्कुल, एक
0: मौसम
1: गीत सुन लेते
0: गीत
1: हैं।
0: की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के दो सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जाने बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा, और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मालिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं, उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित, उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं,
1: जी हाँ।
0: तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में, तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28 पेटेंट

0: मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से, जो नवाचार वही जो उन्होंने इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में, और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं।
0: बिल्कुल, और कितनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती। और इसका कहने का मतलब यही कि हम महिलाएं जो हैं वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के
1: बिल्कुल
0: पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं, इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो
1: जी
0: कहना
1: हाँ
0: चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर एक थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।
1: गीत

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो कल्पना करो क्या होगा, है ना,
5: इंसान तो नहीं रह सकता,
4: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है, कहते हैं ना पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
5: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
5: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
4: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग

0: करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम है और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है। चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है ना। तो
0: बिल्कुल
1: उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का है।
0: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है, इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते, जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा, जो
1: बहुत खुशी मिलती है
0: बहुत खुशी
1: देखिए।
0: मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर
1: बिल्कुल
0: चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं। तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं, तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम बताओ?
1: वो सूख जाएगा, वो जो हमने लगाया बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
0: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
1: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
0: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
1: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
0: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की। तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेजे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
1: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: उनको देख देख
1: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल, वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
0: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
1: बिल्कुल।
0: हम और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं। ये जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
0: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की कुटाई पिटाई की।
1: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
0: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में
1: हाँ। और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे साधे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
0: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे,

0: वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था, तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
1: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: हूँ तो देखो आरती कितना प्यारा सा ये गीत था, और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही है। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर और झगड़े भी। लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी। कितनी
1: एक और हमारे
0: सुंदर।
1: साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था, माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही

0: वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही बता तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो
0: है ना।
1: है।
0: तो एक लिखती है कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे, जरा जरा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल खत्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो, ये थी खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की।
0: बिल्कुल
1: और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा

0: याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल यही चीज़ तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भी है भाई बहन की।
0: बिल्कुल
1: और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है। लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी। एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे, तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ उससे कमजोर हूँ। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कि बहुत ज्यादा भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती हैं ना।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना। अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए, इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता है। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज का इंतजार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए, कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात
0: अच्छा
1: जी
0: जी। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं, और आप ही मेरी पत्नी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाएं।
1: भाई,
0: तो
1: हमें
0: बिल्कुल प्लीज कल उनको खाना दीजिए
1: तो
0: कृपया।
1: बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ, तो बता दी चूहे। और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
0: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं, और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
1: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए, तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारे

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज्यादा थी, मैं अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: दूसरी बार उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी।
1: जब उनकी
0: सुमन
1: पहली संतान यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन,
0: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको यह था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूं, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब हुआ?
0: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं।
1: वाह वाह,
0: मतलब
1: वा।
0: एक जो लड़की आती है ना घर में, लक्ष्मी,
1: पिताजी के लिए नसीब
0: वो
1: लाती,
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर। तो
1: ये
0: ये
1: इशारा
0: उनको
1: था।
0: याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी बेटी।
0: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरी अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल 14 साल।
1: जी जी
0: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो रेल...
0: अलग अलग गेस्ट हाउस में अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी जी
0: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मांगा नहीं है,
1: वाह।
0: आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
0: बड़ा नटखट है तू
1: कृष्ण के नहीं, नहीं क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
0: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
1: हाँ,
0: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
1: वाह,
0: क्या लाइन है यार, आप सोचो।
1: वाह वाह,
0: क्या कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका मेरा होता।
1: क्या
0: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
1: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
0: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा है यार।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
1: पड़ा। अरे खूब बाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी

0: Bakshi Saab ko, my senior, he was my senior in my job. I was an assistant director, he was the chief assistant director, Shakir Khan. Shakir Khan ne Bakshi Saab ka interview liya Subhash Ji ke liye. Question Subhash Ji ne pucha tha Bakshi Saab ko, ke Bakshi Ji, aapko kab lagta hai ki aap fail ho gaye ho as a writer? He said, mujhe, jabhi bhi mujhe koi bolta hai na ke ye gana maine suna, mujhe laga ye Bakshi Saab ne likha hai, mujhe laga main fail ho gaya hu.
1: Gazab.
0: Kyunki as a lyricist, my voice has to be hidden. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं, तो ये वो मेरा फेलियर है,
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. Given told the producer, director को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से. फिल्म रिलीज हो गई है, क्यों निकालूं? ये गाना मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया? कितना अच्छा गाना है सर. That character is uneducated. She cannot speak such high literature words. Producer को बोला है, सर लिसन टू हिम, he is talking sense. वो सब

0: इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
1: साउथ की फिल्म थी।
0: ही वांट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वांट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो।
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं,
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

0: क्या
1: एक बार
0: प्यारा
1: हमारे घर
0: भाई।
1: में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता। तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो। ही सेड टैगोर ने कहा है, द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा, यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं।
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
1: अरे
0: था
1: कमाल है वो तो।
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए, सेकंड टाइम पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहां से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहां पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है।

0: तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोले भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है। कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के? मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो? वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका
1: जी
0: हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार है ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी आपकी। मैंने तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इधर इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे।
1: बोरीवली में
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
1: तो
0: और
1: चित्रमल
0: जिंदगी भर
1: स्वरूप
0: मरते
1: जी,
0: तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से कभी।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए। अब एक आसरा हो गया, यहां से स्ट्रगल किया जा सकता था।
0: हाँ
1: मैंने
0: करेक्ट।
1: सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को। बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे। यू द वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, रोशन
1: बिल्कुल
0: साहब,
1: बिल्कुल
0: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। रोशन साहब कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूंगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था
1: पागल हो
0: इतनी
1: गया।
0: बरसात में, क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या।
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
1: क्या
0: वो
1: बात
0: सारा
1: है।
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारे ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ। तो
1: हाँ
0: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए,
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से
0: और
1: शुरू होता
0: बेदाग
1: है
0: के गाने क्यों जरूरी हैं,
1: जी।
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
0: तो
1: उसमें बख्शी साहब को बीच
0: जब
1: में मौका
0: राजेश
1: मिला था।
0: रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह,
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाने लिखना भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन,
1: कितनी
0: इतना
1: इज्जत।
0: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो
0: तेवर,
1: जालिम, गुजरा जमाना
0: हाँ
1: बचपन का।
0: तेवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी।

0: तो ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गए गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया ना निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इसे मैं फौजी हूं और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई, बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए, हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोला वाह तो बाकी कितने गाने लिखो, इसी से लिख के लाया, तीनों का चारों गाने लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने, हाँ सुनाओ, सुनो रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आया ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने के, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।

0: यही हुआ
1: पता
0: कि
1: चलेगा।
0: उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म
1: वो
0: मिली
1: उनकी पहली हिट थी,
0: जी।
1: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांद सी महबूबा, उसमें
0: हाँ,
1: सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे लेकिन,
0: एक दो गाने थे हिमालय
1: हाँ
0: की गोद में
1: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था,
0: जी।
1: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल मी, ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: था।
1: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
2: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
1: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
2: जी,
1: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस आए और गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के,
0: जमीन पे बैठ के, कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज
0: कभी
1: दो,
0: नहीं, कभी नहीं।
1: रिजॉर्ट में
0: बोलते
1: भेज
0: मुझे,
1: दो।
0: अरे मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तो इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख
0: गाने लेकर आऊँ।
1: रहा
0: कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लेकर आऊँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशियंट फॉर माई प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे,
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत
0: तुम्हें
1: करते
0: तीन
1: थे।
0: मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3 4 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30 30 अंतरे लिख के
0: या
1: देते थे
0: जब
1: कि आप
0: हम
1: इसमें
0: जवां
1: से चुन
0: होंगे
1: लो।
0: जाने कहां होंगे, 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59!
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहरी है, इसको बहने दो, रोको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे, तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाएगा है।
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था, ही
1: जी
0: वाज अ जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था, मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे, पारसवणी से 10th रोड बैंटर आते थे, पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे, और ये लोग जाते थे बर्ली सी फेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे।
0: हाँ, बर्ली सी फेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर अनबख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे।
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की,
0: यस यस
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे।
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, एकदम इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का?
1: मैं खुश हूं, मेरे आंसुओं पे ना जाना,
0: हाँ
1: मुबारक हो तुमको समा
0: हाँ
1: ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन दिस सॉन्ग सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस।

काम, तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि ये हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी जरूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपए का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम? किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें
0: हाँ,
1: बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो ये अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड,
1: हाँ
0: हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका तो
0: बड़े
1: डंका
0: कामयाब
1: बजा।
0: हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो इज टू रबिश इट, यू नो कि नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया, खत्म हो जाऊंगा। उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, RDP पे डाल दो, LP पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था, और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था।
1: जी
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है।
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब हो गया।

पक्षी साहब, जो सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहां का टॉप जॉकी है, तो आप ट्राई यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र बोला, देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े

0: इज योर गुरु, यू आर ट्राइंग कॉपी अमीन सियानी। तो चरण ने बोला देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको तो उर्दू बहुत सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तुम उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे यार करूं।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

चाहे यार करो, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करो।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हंसबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प।
3: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये टुकुडाण, कनकनगर, सिलफली, चाचीडाण, करसी, बूढ़ा डाण, बरबसपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गांव, दातीढाप, कंडराजा, बैडांड, घट गांव, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कुंजारा, लोटापानी, मयूर चुंदी, जामटोली, बिलासपुर, साजापानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर, बर्नी झरिया, खड़ा माचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो,

0: बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, आमापाली, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा, करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बैगामार, चचिया, कलमी टिकरा, बरपाली, धौराभाठा, घोटमा, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमारे हाथी हमारे

हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 5:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्यिकी में डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त की हास्य वार्ता और डॉक्टर मकरध्वज श्रीवास्तव का काव्य पाठ। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: श्रोताओं, आज की साहित्यिकी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए सुप्रिया का नमस्कार। श्रोताओं, अभिव्यक्ति की श्रेष्ठ विधा है साहित्य, और साहित्य में ऐसी कितनी ही विधाएं हैं जिनमें हम अपने आप की, अपने समाज और देश की स्थितियों का चित्रण करते हैं। हास्य और व्यंग्य हमेशा से ही सच बयां करने के प्रभावी तरीके रहे हैं। जीवन के विरोधाभास, समाज के दोगलेपन और विसंगतियों की बड़ी ही प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हास्य और व्यंग्य के माध्यम से हो सकती है। हमारे अपने अहंकार और दंभ को सीधे चोट पहुंचाना कहीं आक्रामकता की ओर बढ़ावा देता है, पर साहित्य की ये विधाएं बड़ी कोमलता से इन बिंदुओं पर आघात करती हैं, पठन पाठन का सुख भी देती हैं और समाज के व्यापक बदलाव का माध्यम भी बनती हैं। आज के कार्यक्रम में लीजिए, पहले सुनिए जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर विनोद गुप्त की हास्य व्यंग्य वार्ता कबाड़ से जुगाड़।
1: सुबह की चाय अभी अपने पहले घूंट तक पहुंची भी न थी कि गली में एक अमर आवाज गूंजी, कबाड़ी वाला, पुराना अखबार, लोहा, प्लास्टिक, खराब मोबाइल। ये आवाज हर घर घर पहुंचती है और हर बार ये भरोसा दिलाती है कि अभी सब कुछ पूरी तरह बेकार नहीं हुआ है। तभी पत्नी

ने बिना किसी बहस के अध्यादेश जारी किया, अजी सुनते हो, आज स्टोर का कबाड़ निकलवा दो, वहां सामान कम इतिहास ज्यादा जमा हो गया है। मैं स्टोर में पहुंचा तो लगा किसी पुरातत्व विभाग की खुदाई में उतर आया हूं। दादाजी का रेडियो, मेरा पहला मोबाइल जिसे खरीद कर लगा था कि दुनिया सचमुच मुट्ठी में आ गई है, बच्चों का टूटा रोबोट, पुराना टाइपराइटर, बंद घड़ी और धूल धूसरित नोटबुकें सब अपनी अपनी चुप्पी में हमारी जीवन गाथा बयान कर रही थी। तब एहसास हुआ कि घर का स्टोर सामान रखने की जगह नहीं होता, वह मनुष्य की अधूरी महत्वाकांक्षाओं, टूटे सपनों और बदलती प्राथमिकताओं का जीवन संग्रहालय होता है। उसी समय कबाड़ी भीतर आया और उसने अनुभवी नजरों से पूरे स्टोर का एक्सरे किया। जिस रेडियो को मैं स्मृतियों में अनमोल खजाना समझ रहा था, उसने उसे केवल लोहे और तांबे के वजन में आका। मैंने यूं ही पूछ लिया, भाई तुम्हारे हिसाब से कबाड़ किसे कहते हैं? वो मुस्कुराकर बोला, साहब आपके घर में जो जगह घेरता है वही हमारे घर का चूल्हा जलाता है। वो तराजू तौलने लगा, पर मैं उसके इस एक वाक्य में उलझ गया। लगा कबाड़ की परिभाषा तो किसी शब्दकोश में नहीं, मनुष्य की दृष्टि में लिखी जाती है। कबाड़ वस्तु की अवस्था नहीं, मनुष्य की स्वार्थी घोषणा है। जिस दिन किसी वस्तु से हमारा मोह या जरूरत समाप्त हो जाती है, उसी दिन से हम उसे कबाड़ की उपाधि से विभूषित कर देते हैं। वस्तु वही रहती है, बदलती हमारी केवल दृष्टि है। कल तक जो मोबाइल हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का थर्मामीटर था, आज गराज की धूल में है। जो सोफा कभी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, आज स्टोर का असह्य बोझ है। उपभोक्तावाद का पहला नियम यही है, जो वस्तु पहले भली भांति चल रही हो, विज्ञापन के दम पर उसे उपभोक्ता की नजरों में पुराना और आउटडेटेड साबित कर दो। पर तभी विज्ञान का वह सिद्धांत याद आया, पदार्थ का न तो सृजन होता है न विनाश, केवल वह रूप बदलता है। विज्ञान और कबाड़ी का दर्शन एक ही तो है। पदार्थ की सत्ता शाश्वत है, नश्वर केवल उसका रूप और हमारा उपयोग है। जिस लोहे को हम कबाड़ कह रहे हैं, वही कल किसी नई मशीन का पुर्जा बनेगा। प्रकृति में कोई कूड़ा घर नहीं होता। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता वृक्ष के लिए त्याज्य हो सकता है, पर मिट्टी के लिए भोजन बन जाता है। प्रकृति ने कबाड़ जैसा कोई शब्द बनाया ही नहीं। ये शब्द मनुष्य की देन है, क्योंकि मनुष्य तात्कालिक उपयोगिता को ही शाश्वत सत्य समझ बैठा है। भारतीय घरों का अगर कबाड़ शास्त्र देखें, तो कबाड़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय किसी प्रबंध संस्थान में नहीं है, बल्कि भारतीय घरों के स्टोर रूम में है। वहां रखी हर वस्तु के पास अपना बायोडेटा और भविष्य का एक नया नियुक्त पत्र पहले से तैयार रहता है। यहाँ रिटायरमेंट का अर्थ समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का प्रारंभ होता है। जिस कुर्सी पर वर्षों तक मेहमान बैठे, उसके एक पैर में दरार क्या आ गई, उसके नीचे एक ईंट लगा दी गई। अब वह विशिष्ट अतिथि की नहीं, बल्कि घर के सदस्य की कुर्सी बन गई। जिस बाल्टी के तले में छेद हुआ, वो तुलसी का गमला बन गई। जिस स्टील के डब्बे का ढक्कन खो गया, वह रसोई में छुट्टे पैसों और चाबियों का एक नया कस्टोडियन बन बैठा। भारतीय घरों में वस्तुओं का अवसान नहीं होता, केवल उनका पद स्थापन बदल जाता है। यहाँ वस्तुओं का भी मोक्ष कबाड़ खाने में नहीं, उपयोग के अगले पुनर्जन्म में होता है। बचपन की वह आवाज आज भी याद है, पुराने कपड़े दे दो, स्टील के बर्तन ले लो, ये केवल एक फेरी वाले की पुकार नहीं थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चलता फिरता व्यवहारिक पाठ था। माँ की अलमारी से पुराने कपड़ों का गट्ठर निकलता, थोड़ा मोल भाव की रस्म अदा होती और कुछ ही देर में
घर में एक चमचमाता स्टील

का कटोरा या प्रेशर कुकर आ जाता है। आज विश्वविद्यालयों में सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी के भारी भरकम सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, जिन पर शोध पत्र लिखे जाते हैं, पर सच तो यह है कि भारतीय गृहणियां इन सिद्धांतों का पेटेंट कराए बिना सदियों से इनका सफल प्रयोग कर रही हैं। पुरानी साड़ी पहले बड़ी बहन से वो छोटी बहन के हिस्से में आती थी, फिर रसोई का पर्दा और फिर उसे तकिए के गिलाफ बनते थे और अंत में पोछा बनकर पूरे घर की सफाई करती थी, और जब वह धागा धागा होकर घिस जाती थी तब चूल्हे की आग में अपना अंतिम योगदान देकर विदा होती थी। दादी की पुरानी संदूकची, पिता का ट्रांजिस्टर, माँ की सिलाई मशीन, बच्चों की पतंग की लटाई, गिटार, इनमें से बहुत सी वस्तुएं वर्षों से मौन हैं, फिर भी उन्हें कबाड़ में बेचने की हिम्मत नहीं करता। कुछ वस्तुएं लोहे या लकड़ी की नहीं होती, वे स्मृतियों के धागे से बनी होती हैं। वस्तुएं धीरे धीरे सामान से स्मृति, स्मृति से विरासत और विरासत से पहचान बन जाती हैं, जिसे आधुनिक कॉरपोरेट बाजार वेस्ट कहता है। भारतीय जीवन दृष्टि उसे नेक्स्ट यूज कहती है। इसी व्यवहारिक दर्शन ने जुगाड़ को जन्म दिया। वास्तव में कबाड़ से जुगाड़ एक प्राचीन काल से चली आ रही हमारी अनूठी कला दर्शन है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय के चक्र में अनुपयोगी घोषित हो चुके लोगों, वस्तुओं या जीवित अजीवित तत्वों को नवाचार के माध्यम से पुनर्जीवन और सार्थकता प्रदान करना है। जुगाड़ का मूल अर्थ शॉर्टकट या छल नहीं था, उसका अर्थ था सीमित संसाधनों में सृजनात्मकता, अभाव को अवसर में बदलने की मानवीय मेघा। दुर्भाग्य यह है कि समय के साथ साथ हमने जुगाड़ का डीएनए ही बदल दिया है। आज ये नियमों को मोड़ने, व्यवस्था को चकमा देने और अयोग्यता को छिपाने का राष्ट्रीय शॉर्टकट बन गया है। स्टोर खाली करके जब मैं बाहर निकला तो लगा कि असली कबाड़ तो घर के बाहर बिखरा पड़ा है। घर के भीतर तो केवल टूटी कुर्सियां, रद्दी अखबार थे। बाहर निकला तो देखा पूरा समाज ही एक विराट कबाड़ खाना है। फर्क इतना है कि यहाँ कबाड़ लोहे का नहीं, सड़े गले विचारों का है। वस्तुओं का कबाड़ दिखाई देता है, इसलिए समय पर साफ हो जाता है, लेकिन विचारों का कबाड़ अदृश्य होता है, इसलिए पीढ़ियों तक सिर पर ढोया जाता है। मनुष्य की सबसे भारी गठरी लोहे की नहीं, उसके अपने पूर्वाग्रहों की होती है। हमारे समाज में सबसे अधिक रिसाइकिल या पुनर्चक्रित होने वाली वस्तु प्लास्टिक नहीं बल्कि नफरत और पूर्वाग्रह। राजनीति की ओर देखिए, वहां तो कबाड़ और जुगाड़ अनंत संभावनाएं वाला प्लेटफॉर्म विकसित हो चुका है। चुनाव समाप्त होते ही वादे और घोषणाएं कबाड़ के डिब्बे में डाल दी जाती हैं। नए चुनाव में उन्हीं घोषणाओं पर नया रंग रोगन किया जाता है और फिर एक नए नारे के साथ उसे जनता के बाजार में उतार दिया जाता है। शिक्षक कहते हैं ज्ञान अमूल्य है। विद्यार्थी पूछता है, सर इसका शॉर्टकट या पीडीएफ मिल जाएगा? जहां जिज्ञासा ही कबाड़ घोषित हो जाए, वहां शिक्षा केवल डिग्रियों का गोदाम बनकर रह जाती है। तकनीक और उपभोक्तावाद ने पुरानेपन को एक उद्योग बना दिया है। वस्तु को ऐसा मत बनाओ कि वह टिके, उसे ऐसा बनाओ कि 6 महीने में उसका नया मॉडल आते ही अपनी पुरानी चीज से शर्म आने लगे। उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा आविष्कार कोई उपयोगी वस्तु नहीं बल्कि इंसानी मन में पैदा किए जाने वाला परमानेंट असंतोष है, और असंतोष की फसल पर फलता फूलता है हमारा आधुनिक जुगाड़। नियमों का पालन करने वाला कतार में खड़े होकर फॉर्म भर रहा है और जुगाड़ू सीधे उद्घाटन मंच पर मुख्य अतिथि के साथ सेल्फी ले रहा है। योग्यता जहां प्रमाण पत्र ढूंढती रह जाती है, जुगाड़ वहां सीधे सफलता का ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आता है। तो अभी तक कबाड़ी अपनी साइकिल पर पुराना लोहा, रद्दी और बंद मोबाइल लादकर घंटी बजाता हुआ अगली गली में मुड़ चुका था। मैं दरवाजे पे खड़ा उसे दूर तक जाता देखता रहा।

0: लगा मेरे घर का कबाड़ लेकर वो गया नहीं है, मेरे भीतर एक बहुत भारी प्रश्न छोड़ गया है। घर थोड़ा खाली हुआ था लेकिन मन पहली बार विचारों से भारी हो गया था। मैंने खाली स्टोर की ओर देखा, अब वहां पर्याप्त जगह थी। फिर अपने मन के भीतर झांका, वहां अब भी भयंकर जाम लगा था। पुरानी सड़ी गली धारणाएं, खोखले अहंकार, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धाएं, वर्षों पुराने मान अपमान के हिसाब किताब और सामाजिक दिखावे के फटे हुए बक्से सब एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि स्टोर का सामान तो बिक जाता है, मन का ये कबाड़ खानदानी संस्कार और अभिमान कहकर सहेज लिया जाता है। घर के कबाड़ की सफाई तो साल में एक बार दिवाली पर हो ही जाती है, पर मन के कबाड़ खाने की सफाई कई लोग पूरे जीवन काल में नहीं करते। टूटा हुआ कप हम तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन अपनी टूटी और संकीर्ण सोच को छाती से लगाए रहते हैं। मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट करते हैं, पर अपने विचारों का पुराना वर्जन बदलने को तैयार नहीं होते। सभ्यताएं संसाधनों की कमी से कभी नहीं मरती, वे हमेशा जड़ विचारों की अधिकता और नए प्रश्नों के अभाव में बूढ़ी होकर कबाड़ बनती हैं। स्टोर में रखे दादाजी के उस बंद पड़े रेडियो ने जैसे चुपके से मेरे कान में कहा, बेटा मैं खराब नहीं हुआ हूं, केवल मेरे समय का फ्रीक्वेंसी प्रसारण बंद हुआ है। वस्तुएं बूढ़ी नहीं होती, उनका संदर्भ बूढ़ा होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य भी उम्र से नहीं, अपने विचारों की जड़ता से बूढ़ा और कबाड़ होता है। जो नया और खुद को बदलना छोड़ देता है वही समाज का सबसे पहला स्क्रैप या कबाड़ है। सूरज अब पश्चिम की ओर पूरी तरह झुक चुका था, कबाड़ी की आवाज हवा में कहीं विलीन हो चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर का अंतर्मन मुझसे मुखातिब था। बाहर का सामान तो तौल लिया, अब थोड़ा भीतर का अहंकार भी बाहर निकालो। थोड़ी नफरत, थोड़ा दिखावा, कुछ उधार के पूर्वाग्रह और कुछ विरासत में मिले भ्रम। मैं धीरे से मुस्कुराया, पहली बार एहसास हुआ कि मेरे भीतर का स्टोर रूम बाहर वाले कबाड़ खाने से कहीं अधिक विशाल और उलझा हुआ है, और उसका कबाड़ी बाहर की सड़कों पर नहीं मेरे अपने विवेक के भीतर बैठा है। जीवन का सबसे बड़ा जुगाड़ यही है कि मनुष्य समय रहते अपने भीतर के इस कबाड़ को पहचान ले और उसे बाहर का रास्ता दिखाए। जिस दिन ये मन का स्टोर रूम साफ हो जाएगा, उस दिन जुगाड़ की जगह मौलिक सृजन ले लेगा, दिखावे की जगह सत्य और संग्रह की जगह सार्थकता आएगी। तब कबाड़ी की आवाज सुनकर हम सिर्फ स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलेंगे, अपने मस्तिष्क की बंद खिड़कियां भी खोलेंगे, और तब अंततः एक कठिन प्रश्न हमारे सामने फिर खड़ा हो जाएगा, हम वाकई कबाड़ से जुगाड़ बना रहे हैं या महज जुगाड़ के सहारे अपने भीतर के महाकबाड़ को बचाए हुए।
1: कबाड़ से जुगाड़, हास्य व्यंग्य की चुटीली अभिव्यक्ति। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनोद गुप्त की हास्य व्यंग्य वार्ता कबाड़ से जुगाड़। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अंचल के वरिष्ठ कवि श्री मकर ध्वज श्रीवास्तव से काव्य पाठ।
2: आज मैं अपनी कुछ रचनाएं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। इसी पर मैं अपनी एक पहली रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, स्वाभिमान का भारत। यह स्वाभिमान का भारत है, यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बताता है। इसकी मिट्टी में खुशबू है, इसकी मिट्टी में खुशबू है, यह ज्ञान सिंधु कहलाता है। यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बताता है। भारत का गौरव कण कण है, भारत का गौरव कण कण है, नैतिकता का पालन करता आदर्श सिखाता रहता है, मानो भी आज नमन करता।

संस्कृतियों का संदेश लिए यह सौर्य सूर्य बन जाता है, यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बताता है। विश्वास अटल अभिमान लिए हिमगिर भारत की ईशान बना, मन में उत्साह उमड़ता है, यह भारत का सम्मान बना, तो कल कल नदियां बहती रहती, कल कल नदियां बहती रहती, धरती को स्वर्ग बनाता है, यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बिता रहा है। हुंकार भरा गर्जन करता, हुंकार भरा गर्जन करता, भय मुक्त राष्ट्र कहलाता है, और मानव का पाठ पढ़ाता है, जीवन का मूल्य बताता है, मानव का पाठ पढ़ाता है, जीवन का मूल्य बताता है, तो साहस सत्कार सिखाता है, साहस सत्कार सिखाता है, यह विश्व गुरु कहलाता है, यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बताता है। मर्यादा में रहना सीखा, मर्यादा में रहना सीखा, आत्मा का बोध कराता है, दुनिया के युद्ध विलापों में यह अमृत रस बरसाता है, तो अवसान अंधेरे का करता, अवसान अंधेरे का करता, युग का सूरज बन जाता है, यह स्वाभिमान का भारत है, अपना अस्तित्व बताता है, यह स्वाभिमान का भारत है। मेरी दूसरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, शीर्षक है युद्ध और शांति। युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, जग के इस ब्रह्मांड लोक में जीने का अभिमान चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए। युद्ध प्रलय का ही द्योतक है, युद्ध प्रलय का ही द्योतक है, दुनिया हथियारों के वश है, हार जीत का नाम नहीं है, युद्ध काल तो दमन चक्र है। युद्ध प्रलय का ही द्योतक है, दुनिया हथियारों के वश है, युद्ध काल तो दमन चक्र है, तो रिश्तों में मिठास आ जाए, जीने का वरदान चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए। दिन दिन दुर्लभ होता जाता, दिन दिन दुर्लभ होता जाता, जीवन का संगीत नहीं है, तम का बादल छाया रहता, शहनाई की गूंज नहीं है, क्षमताएं निर्बल हो जाती, सत्कर्मों का ज्ञान चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए। आत्मशुद्ध संयम धारण कर, आत्मशुद्ध संयम धारण कर, जीवन सफल बनाना होगा, अत्याचार सदा मिट जाए, यही सोच अपनाना होगा, तो युद्ध क्षेत्र जग से मिट जाए, युद्ध क्षेत्र जग से मिट जाए, और सुख का ही साम्राज्य चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए। हिंसा का अब बीज न पनपे, हिंसा का अब बीज न पनपे, क्रोध अग्नि का भाव न आए, वैर भाव का भेद मिटाकर विश्व शांति की अलग जगाए, तो मन में यह विश्वास जगाएं, मन में यह विश्वास जगाएं, जग का ही उत्थान चाहिए, मन में यह विश्वास जगाएं, जग का ही उत्थान चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए, युद्ध नहीं अब शांति चाहिए, मानव का कल्याण चाहिए। अगली रचना है अमृत पल, स्वतंत्रता के अमृत पल पर राष्ट्रभक्ति के गीत लिखेंगे, स्वतंत्रता के अमृत पल पर राष्ट्रभक्ति के गीत लिखेंगे, देश हमारा रहे सुरक्षित यह संदेश सुना जाएंगे, देश हमारा रहे सुरक्षित यह संदेश सुना जाएंगे। नील गगन का सूरज बनकर प्यारा ध्वज तिरंग फहरेगा, अमृत रस की वर्षा करके आशा की किरणें बिखरेगा, तो जाति धर्म से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत भूमि में हम विचरेंगे, एक राष्ट्र ही एक धर्म है, सब में यही भाव लाएंगे, तो वीर शहीदी की गाथा कर, वीर शहीदी गाथा गाकर जीवन अर्पण कर जाएंगे।

0: देश हमारा रहे सुरक्षित, यह संदेश सुना जाएगा। तो सीमा से अरि को खदेड़ना सबका प्यारा नारा होगा और चेतनता का भाव जगाकर जन उत्साह बढ़ाना होगा। चेतनता का भाव जगाकर जन उत्साह बढ़ाना होगा तो हाथों में ले ध्वज तिरंग को, हाथों में ले ध्वज तिरंग को, आगे बढ़ते जाना होगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा गान मधुर यह गाना होगा। तो भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो नारा यही लगाना होगा और देश हमारा रहे सुरक्षित यह संदेश सुनाना होगा। तो वीर भगत सिंह मंगल पांडे, वीर भगत सिंह मंगल पांडे, जय सिंह जैसे बनना होगा। वीर भगत सिंह मंगल पांडे, जय सिंह जैसे बनना होगा और पौरुष की संतान बनेंगे जन्मे अलख जगाना होगा। कर्तव्यों का पालन करते रण बाकुर बन जाना होगा और दुश्मन के हर मंसूबों को रणे धूल चटाना होगा। अमर ज्योति पर नतमस्तक हो श्रद्धा सुमन चढ़ा जाएंगे, देश हमारा रहे सुरक्षित यह संदेश सुना जाएंगे, देश हमारा रहे सुरक्षित यह संदेश सुना जाएंगे। बंधुओं, कुछ राष्ट्रपरक ये गीत हमने आपको सुनाए हैं। अब माँ की ममता सुनिए, माँ की ममता अजब निराली। माँ की ममता अजब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती। माँ तो दुख दर्दों को सहती है, बालक का पालन पोषण करती है। माँ की ममता अजब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती और अपने आंचल में ढक करके बालक पर है प्यार लुटाती। माँ की ममता अजब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती, अपने आंचल में ढक करके बालक पर है प्यार लुटाती। कभी पलंग पर उसे सुलाती, कभी पलंग पर उसे सुलाती, कभी कल्पना में खो जाती। और जीवन का क्रम चलता रहता, प्रेम भाव से उसे जगाती। ललना को छाती से लेकर समय समय पर दूध पिलाती और माँ की ममता जब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती। तो नई शक्ति का भाव जगाती, नई शक्ति का भाव जगाती, हरदम हृदय टटोला करती। नई शक्ति का भाव जगाती, हरदम हृदय टटोला करती, आशंका को दूर भगाकर अजूरी भर भर प्यार लुटाती। नई शक्ति का भाव जगाती, हरदम हृदय टटोला करती, आशंका को दूर भगाकर अजूरी भर भर प्यार लुटाती। मन में भय का नाम न आए यही कामना करती रहती और माँ की ममता अजब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती। माँ संवेदन की प्रतिमा है, सब में प्यार दिखाती रहती। मानवता का यह दर्पण है, सत्य राह दिखलाती रहे। ईश्वर की उत्तम कृति माँ है, जन जन को यह राह दिखाती। माँ की ममता जब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती। माँ की ममता जब निराली, दुख दर्दों को सहती जाती। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता बंधु।
1: प्रकृति, देशभक्ति, ममता, जीवन से जुड़ी इन भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति अभी हम सुन रहे थे कविताओं के माध्यम से। कविता पाठ कर रहे थे अंचल के वरिष्ठ कवि श्री मकर ध्वज श्रीवास्तव। इसी के साथ साहित्यिकी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इसी तरह की अन्य प्रस्तुतियों के साथ साहित्यिक अभिव्यक्ति का आनंद अगले कार्यक्रम में फिर से लेंगे। फिलहाल सुप्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम साहित्यिकी के अंतर्गत सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त की हास्य वार्ता और डॉक्टर मकरध्वज श्रीवास्तव का काव्य पाठ।

प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। ये समय है कार्यक्रम महिला सभा का, तो आइए चलते हैं कार्यक्रम महिला सभा की ओर।

0: सखियों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम महिला सभा में, और मैं हूं आपकी दोस्त लिंटा। सखियों, जरा सोचिए, अगर हमारी घर की रसोई का चूल्हा ही ठीक से काम नहीं करे तो पूरे घर की दिनचर्या बिगड़ जाती है, सब काम अधूरे रह जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी एक ऐसा अंग है जो बिना रुके दिन रात हमारे लिए काम करता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसे पचाने में मदद करता है, शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है, और वो अंग है हमारा लीवर। लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि हम सभी अपने इस अनमोल साथी का ध्यान तब तक नहीं रखते जब तक कि कोई परेशानी हमारे सामने नहीं आती। लीवर से जुड़ी ऐसी ही एक बीमारी है हेपेटाइटिस, जो धीरे धीरे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। कई बार तो शुरुआत में इसके लक्षण भी साफ तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। सखियों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर बुखार, सर्दी या खांसी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने लीवर की सेहत के बारे में सोचा है, या कभी डॉक्टर से जानने की कोशिश की है कि हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं? प्यारी सखियों, हमें यहीं पर जागरूक होने की जरूरत है। हेपेटाइटिस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लीवर में होने वाला सूजन है। इसके कई प्रकार भी हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से कुछ दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि कुछ संक्रमित खून या असुरक्षित इंजेक्शन के कारण फैलते हैं। इसलिए सखियों, बीमारी होने के बाद इलाज कराने से बेहतर है कि हम इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक हों। हर साल आज ही के दिन यानी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में इस बार की थीम है, आइए हेपेटाइटिस को तोड़े, इसे समाप्त करें। इसलिए यदि हम साफ पानी पिए, हाथों की स्वच्छता रखें, अपने आसपास को साफ रखें, बाहर का दूषित भोजन खाने से बचें और समय पर टीकाकरण करवाएं, तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे बहनों कि हेपेटाइटिस बी का टीका भी उपलब्ध है, जो इस गंभीर बीमारी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए बच्चों के साथ साथ आप बड़े भी डॉक्टर की सलाह लेकर टीकाकरण जरूर कराएं। तो सखियों, आज की चर्चा से हमने सीखा, लीवर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन भी हमारा स्वस्थ रहेगा। स्वच्छता अपनाइए, सुरक्षित आदतें अपनाइए, समय पर जांच कराइए और टीकाकरण को भी अपनाइए, क्योंकि हम जागरूक बनेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को हम हरा सकेंगे। इस छोटी सी बातचीत के बाद आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, आम और नीम की डालियों पर झूलते झूले, हाथों में रची मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक और कानों में गूंजते सावन के मधुर लोकगीत। जी हाँ, यही तो है हमारा प्यारा सावन। सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और अपनों से जुड़ने का एक सुंदर अवसर है। और आज की चर्चा में हम जानेंगे कि हमारी सखियों के लिए सावन का क्या महत्व है, क्या आज भी

0: गांव और मोहल्लों में झूले पड़ते हैं और बचपन की कौन सी यादें आज भी उनके मन में बसी हैं। ऐसे सुहावने मौसम में भला हम सखियां आपस में गपशप ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उठाइए अपना फोन, मिलाइए हमारा नंबर और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए लेते हैं हमारी आज की पहली कॉलर सखी को। हेलो, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं श्रीमती रंजू सरपे हूँ और मैं बिलासपुर मोपका में रहती हूँ।
0: अच्छा, रंजू जी क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेंटल हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग है दीदी।
0: वाह, किस प्रकार की दिनचर्या रहती है वहाँ पर आपकी?
1: दीदी, मेंटल हॉस्पिटल में अभी फिलहाल तो ओपीडी इंचार्ज हूँ और यहाँ का समय 8 से 2 बजे के बीच में रहता है, तो अच्छा। मैं यहाँ मरीजों की देखभाल पूरा मैनेजमेंट सब करती हूँ।
0: क्या बात है रंजू जी, जैसा कि हमारा विषय है आज का सावन के झूले, और हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम भी बड़ा सुहावना है, और बारिश का नाम आते ही हम सभी के मन में एक और बात आती है, वो है सावन का पावन महीना।
1: जी दीदी, सावन बड़ा प्यारा महीना है।
0: रंजू जी, ये बताएं कि सावन के आते ही आपके मन में सबसे पहली बात क्या आती है?
1: मेरा सबसे पहले सावन आता तो गमला नजर आता दीदी कि मुझे पौधा लगाना है।
0: बहुत अच्छी बात।
1: मैं हमेशा अपने बर्थडे में या मेरी बेटियों के बर्थडे में या कुछ स्पेशल वोकेशन होता है, सबसे पहले नर्सरी जाती हूँ, पौधा लेती हूँ, एक साथ में गमला लेती हूँ, सबसे पहले उसी को पहले लगाती हूँ।
0: इस मौसम की यही खास बात होती है रंजू जी।
1: सबसे अच्छा मेरे को पौधे में ना दीदी मनी प्लांट लगता है, रोज लगता है।
0: जी जी,
1: बस खिलता हुआ चेहरा देखते रहो। और सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे लिली फूल पसंद है। अपने बच्चों को भी प्रेरित करती दीदी कि गमले में जाओ ना, पानी डालो, ऐसे बोल बोल के लोगों उत्साहवर्धन करती हूँ कि
0: जी। और मुझे लगता है कि ये मौसम हमें प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पानी देकर, खाद देकर उनकी देखरेख करेंगे, तो ऐसे ही आगे भी जो हमारा सावन है वो हरा भरा रहेगा और हम सभी उसका आनंद उठा पाएंगे।
1: प्रकृति में ये है कि दीदी हरा भरा देखकर अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सोच भी अच्छा लगता है, और ये है कि हमारा वातावरण अच्छा रहे, अच्छा शुद्ध वायु मिले दीदी।
0: जी जी जी जी,
1: गांव में हम लोग जैसे जाते थे तो खाद डाल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, वहां पर बैठ के सभी लोग मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ के बस पेड़ के छाव में कुछ कुछ समय ऐसे निकाल देते। जब मैं छोटी थी तो खिलौने बहुत खेलती थी, तो पेड़ के छाया में जा जाकर खेलते थे हम लोग।
0: जी, गांव के माहौल में और शहर में आप क्या अंतर महसूस करती हैं?
1: गांव के माहौल में जहाँ देखो वहाँ सब जगह पेड़ ही पेड़ है दीदी,
0: हरियाली है।
1: जी जी, और यहाँ शहर में गिने चिने बस पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी लेकर जा रहे हैं तो छाया नहीं मिलता, जैसे गाड़ी धूप में पड़ा रहता है, तो गांव का माहौल ज्यादा अच्छा लगता है, हरा भरा, हरियाली।
0: जी रंजू जी, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और ये बताइए कि कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, मुझे आया सावन झूम के गाना सुना दीजिए ना, अब मैं बात भी करी तो बारिश शुरू हो गई।
0: बिल्कुल, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे आपके पसंद का ये गीत।
1: जी जी। हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में, और आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं कोरबा आईटीआई से बोल रही हूँ। अच्छा। देवी खरसन।
0: जी, और कोरबा आईटीआई में आप काम करती हैं?
1: जी जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में हूँ।
0: और वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलती होंगी महिलाओं को?
1: हाँ हाँ, मिलती है।
0: तो रोजगार से संबंधित क्या क्या चीजें सीख रही हैं महिलाएं अभी वहाँ आईटीआई में?
1: यहाँ बहुत सारे मतलब ट्रेड है बच्चियों के लिए, जैसे कोपा है, कोपा में कंप्यूटर से संबंधित है ट्रेनिंग करते हैं, हिंदो स्टोनो है, अंग्रेजी स्टोनो है, उसमें स्टोनो से संबंधित बच्चे का मतलब लेते प्रशिक्षण।
0: जी,
1: इलेक्ट्रिशियन है उसमें भी बच्चियाँ लेती हैं, टेलर ट्रेड है
0: जी जी
1: उसमें भी लेती हैं, मैं बच्चियाँ मतलब ना प्रशिक्षण लेती है और यहाँ से जाके अपनी जॉब करती हैं, कोई गवर्नमेंट में कोई प्राइवेट
0: और अपना भविष्य बनाती हैं।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर बात बताई मैम आपने। और अभी हाँ। मौसम वहाँ पे कैसा है कोरबा में?
1: अभी मौसम तो सुहाना है मैडम, अभी थोड़ी धूप, हल्की सी बादली।
0: जी,
1: कभी बारिश।
0: और बस अब सावन का महीना भी शुरू हो रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ, सब तो हरियाली हरियाली ही है।
0: जानकी जी, सावन और मायके का रिश्ता भी बहुत गहरा होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: मायके तो ऐसा है मैम कि कितने बुढ़े हो जा रहेंगे तो भी मायके जाना नहीं छोड़ती है लड़कियाँ,
0: बड़ी ही बेसब्री से अपने भाई और पिता का इंतजार करती हैं।
1: सबसे मिलने का, हाँ सबसे मिलने का बहुत हो रहा है, उत्साह रहता है
0: जी,
1: कब मिले कब मिले करके।
0: जी, मायके पहुँचती है तो क्या करती है?

0: आप?
1: मैम मैं के जाती हूँ तो अपने भाई बहन से मिलती हूँ,
0: जी
1: माँ से मिलती हूँ, माँ का हाथ से खाना खाती हूँ, अपनी सहेलियों लोग से मिलती हूँ,
0: जी
1: और मिल के बहुत खुशी होती है। और मैके में जाती हूँ आंगन में झूला बनाते हैं, सुबह झूलते हैं और सावन का गीत गाते हैं हरियाली की,
0: जी
1: और उस बीच में इतनी आनंद आती है सहेलियों के बीच में, मतलब झूला झूलते हुए बहुत खुशी होती है।
0: जी बहुत ही भावपूर्ण बात कही जानकी जी आपने। मायके की यादें, माँ का स्नेह, भाई का प्यार, बचपन की हंसी, यही तो हमारे सावन को और खास बना देती है।
1: जी जी जी
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जानकी जी। और कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: मैं पुराने गीतों की शौकीन हूँ मैं, तो आप एक मेरी मन पसंद की गाना सुनाने का
0: जी जरूर
1: करेंगे, सावन झूम के, ये मुझे बहुत पसंद है। बदेरा छाए के झूमे पड़े गए आया सावन झूमे के

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैडम, मैं जागृति चलकर बोल रही हूँ, सेवार ठीक सही से।
0: अच्छा, और ये बताएं आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: और इस वक्त क्या कर रही हैं घर पर?
1: जी मैडम, मैं अभी खाना वाना बना के नहा के अभी मतलब सिलाई करूँगी मैडम, कपड़ा सिलाई करती हूँ।
0: वाह, सिलाई का आपको शौक है?
1: जी मैडम।
0: अच्छा, और ये बताएं कि वहाँ बारिश कैसी हो रही है?
1: बारिश कल हुआ था मैडम, आज
0: अच्छा,
1: मौसम थोड़ा धूप निकला है।
0: यानी कि हम बोल सकते हैं कि मौसम जो है वो सुहावना है।
1: जी मैडम।
0: जागृति जी, सावन का महीना अभी शुरू होने वाला है, तो आपके मन में सबसे पहली बात क्या आती है?
1: जी मैडम, मतलब प्रकृति की सुंदरता को देख के मैडम कहीं घूमे जाए
0: जी।
1: ऐसा लगता है, और झूला झूले ऐसा लगता है। हम लोग गए थे भी मैडम, कानन पिंडारी गए थे और खूब झूला झूले हम लोग।
0: अच्छा, गांव में झूले झूलते हैं?
1: जी मैडम, यहाँ बरगद का पेड़ है, उसमें बच्चे लोग अभी से बांध लिए हैं मैडम, और स्कूल जाने से पहले उसमें झूलने के बाद स्कूल जाते हैं।
0: अरे वाह, और आप लोगों की क्या तैयारी है जागृति जी?
1: सावन को लेकर मैडम भगवान के मतलब उपवास रखते हैं मैडम।
0: अच्छा।

0: पूजा करने के लिए जाते हैं शिवलिंग में और झूला झूलते हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनते हैं और मेहंदी लगाते हैं। मैडम
1: मेहंदी कौन सी वाली लगाते हैं, पत्तियों से पीस कर लगाते हैं या पाउडर वाली लगाते हैं?
0: नहीं मैडम, आजकल जो चलता है वही लगाते हैं, तो पत्ते वाले लगाना सब भूल गए।
1: जी जी, कुछ व्यंजन वगैरह भी बनाती हैं जागृति जी?
0: हाँ मैडम, मतलब सावन में हम लोग खीर बनाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बताई जागृति जी आपने।
0: और मैडम गांव में झूला झूलने के टाइम लोग गीत भी गाते हैं मैडम, और खूब प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम लोग होते हैं ना मैडम, महिलाएं होते हैं 2, 4, 5, 10 ऐसे होते हैं, और अपने मायके अच्छा। जाते हैं, उस तरफ बहुत लोग हो जाते हैं।
1: और सहेलियों के नाम भी बता दीजिए हमें जिनके साथ आप ये त्योहार मनाती हैं।
0: पायल है और रीना है, सरला है, पल्लवी है।
1: इन सभी सखियों को आप कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगी?
0: मेरी सभी सखी सहेलियों को और आकाश परिवार के सभी श्रोता

0: त्योहार मनाती हैं?
1: पायल है और रीना है, सरला है, पल्लवी है।
0: इन सभी सखियों को आप कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगी?
1: मेरी सभी सखी सहेलियों को और आकाश परिवार के सभी श्रोता भाई बहनों को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी बहने अवश्य सावन मास में झूला झूले।
0: जी जरूर जागृति जी, और हम सभी की ओर से भी आपको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैडम, सावन आने वाले इसके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ।
0: सुनाइए।
1: रिमझिम रिमझिम सावन आया, तन मन में अजब तरंग लाया, हर तरफ दिखती हरियाली है, हर उपवन का तू माली है अति पावन मास ये सावन, करे इंद्र भी झुक कर अभिवादन, शिव मन को सावन अति भाया, रिमझिम रिमझिम सावन आया, प्यारो झूमे विपत करे अठखेली, मिल के झूला झूले सखी सहेली, अब कृषकों का मन भी लाया, रिमझिम रिमझिम सावन आया।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से आपने हमारी सखियों तक इतना प्यारा संदेश पहुंचाया है सावन महीने को लेकर, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी जागृति जी?
1: जी मैडम, मैं सावन को आने दो का सुना दीजिएगा मैडम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: धन्यवाद जी, नमस्कार। मैं विभा गौरा बोल रही हूँ, बिलासपुर सर्वी विहार कॉलोनी से।
0: विभा जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और इस बार सावन को लेकर आपके घर में क्या खास तैयारियाँ चल रही हैं?
1: देखिए, सावन के आते ही तो मन में उत्साह उमंग भर आता है सावन में, सावन उत्सव मनाने का।
0: जी,
1: उसके लिए सब तैयारी में जुट जाए रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है।
0: जी,
1: अब तो फोन का जमाना है।
0: जी जी जी,
1: तो कैसे रील बनाएंगे, कैसे फोटो खिंचाएंगे, ये सब हम लोग के आपस में बात होती रहती है।
0: जी, तो ये जो आपकी सखियां हैं वो सब आपके घर के आसपास ही रहती होंगी?
1: हाँ, घर के आसपास भी रहती हैं।
0: जी,
1: और हमारे पुराने जो फ्रेंड्स हैं
0: जी,
1: वो भी हैं, यही लोकल बिलासपुर में ही रहते हैं।
0: अच्छा,
1: सब मिल के करते हैं, कॉलोनी में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं।
0: जी,
1: हम लोग मिल के सब थीम रखे रहते हैं, ग्रीन साड़ी, चश्मा, छतरी सब करके।
0: अच्छा,
1: रील बनाना रहता है।
0: जी जी जी,
1: डांस करते हैं, फोटो एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं।
0: जी,
1: सखी है उसके घर जाते हैं।
0: अच्छा,
1: आम का पेड़ है, लगा हुआ है
0: जी,
1: उसमें हम लोग झूला लगाते हैं, झूला को अच्छा सा सजाते हैं, फिर उसमें सब सखी मिलकर बारी बारी हम लोग झूला झूलते हैं।
0: जी,
1: बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है, झूला झूलते हैं तो गाना भी गुनगुनाते रहते हैं।
0: जी, और कोई खास व्यंजन जो आपके यहाँ हमेशा बनता हो?
1: मेरे यहाँ खास व्यंजन तो बरसात में पकौड़ा ही ज्यादा बनता है।
0: जी,
1: क्योंकि हस्बैंड को पकौड़ा बहुत पसंद है।
0: जी,
1: और मेरे बच्चे लोग को छोले पूरी पसंद है, तो मैं वो भी बनाती हूँ।
0: अच्छा, बहुत ही सुंदर बातें बताई आपने विभाजी। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: जी धन्यवाद, मैं पुरानी फिल्म है सनम बेवफा
0: जी,
1: उस पे गाना है चूड़ी।

0: चैन देगी वो सुनना पसंद करूंगी, वो मेरा फेवरेट गाना है।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
2: हेलो दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में, और कौन बोल रही हैं?
2: धन्यवाद, मैं श्रीमती पूनम साहू बोल रही हूँ। वैसे तो मैं बिलासपुर से हूँ।
1: अच्छा,
2: लेकिन अभी मैं अपने स्कूल आई हूँ बलौदा के पास सनीचरा।
1: अच्छा अच्छा, और स्कूल में अभी क्या माहौल है, बच्चे सारे आ रहे हैं स्कूल?
2: हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ के बच्चे तो कितना भी बारिश हो चाहे तूफान आए, लेकिन हमारे यहाँ सारे बच्चे स्कूल आते हैं रोज।
1: बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अभी सावन का खूबसूरत महीना चल रहा है, तो किस प्रकार की तैयारी रहती है आपकी सावन को लेकर?
2: जी, सावन में तो हम लोग स्पेशली पूजा पाठ करते हैं
1: जी,
2: और सावन के अवसर पर मैं अपने मायके भी जाती हूँ।
1: अच्छा।
2: मुझे लेने आता है वहाँ, हम लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं।
1: अच्छा।
2: और सावन को एंजॉय करते हैं, हमारी पुरानी सहेलियों से मिलते हैं
1: जी। और आपने कहा कि अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं, कोई स्पेशल चीज जो आपके घर वालों को आपके हाथों द्वारा बनाया बहुत पसंद हो?
2: मीठे में मैं गेहूं आटे का गुलगुला बनाती हूँ।
1: अच्छा।
2: उसके लिए गुड़ लेती हूँ और आटे में गुड़ को पिघला कर पानी में,
1: अच्छा अच्छा,
2: रूसी से उसका अच्छा सा घोल बनाती हूँ, उसी कल का छोटा छोटा गुलगुला बनाती हूँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं।
1: क्या बात है। कौन सा गीत पूनम जी आप सुनना चाहेंगे आज?
2: जी, अब सावन में तो मैं अपने मायके जाती हूँ, तो मैं अपने साजन को बहुत मिस करती हूँ।
1: वाह।
2: तो उनके लिए मैं वो लगाना गाना चाहूंगी। चूड़ी मजन देगी, कंगन मजन देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजन देगा।
1: बहुत सुंदर, हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके पति देव तक पहुंचा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जी मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
0: मैं श्रीमती अंजू किरण, मैं झांसी जिला से बलौदा लाती हूँ।
1: अंजू जी, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में।
0: धन्यवाद दीदी।
1: कैसा मौसम हमारे वहाँ बलौदा में?
0: यहाँ मौसम ठीक है दीदी, आज तो ठीक है। पहले तो लेकिन लगातार एक सप्ताह से बारिश हो रहा था, तो बहुत दिक्कत जा रहा था।

0: क्योंकि मैं टीचर हूँ
1: जी जी
0: और स्कूल आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है आने जाने के टाइम में।
1: जी बारिश का मौसम यानी कि सावन का महीना, क्या क्या तैयारी है आपके घर में सावन के महीने को लेकर?
0: जी दीदी अभी सावन के शुभ अवसर पर सारी महिलाएं क्या करती है घर पर एकत्रित होने का भी सोची है अभी।
1: अच्छा।
0: और अभी वहाँ झूला लगा है और सावन में सभी कोई हम लोग अभी हरे कलर की साड़ी लिए हैं हरे रंग की चूड़िया ले हैं और सोच रहे हैं कि उल्टे हम लोग सावन के दिन झूला लगाकर हरे रंग के ही पकवान बनाए।
1: क्या बात है, मतलब हरे पकवान?
0: मैं सोचती हूँ हरा भरा कबाब भी बनाऊ करके हरे रंग का नदा तो है ही साथ में।
1: जी
0: मीठा व्यंजन में दीदी हम लोग ना जैसे सूजी बनाते हैं मीठा तो उसमें हरा कलर का रंग आता है।
1: अच्छा।
0: उसको डालकर हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे बारिश का सूजी का हलवा बनाते हैं ना उसमें हरा कलर का डालकर सूजी का हलवा बना ले,
1: क्या
0: कुछ नया यूनिक लगे
1: जी
0: और मीठा भी हो जाएगा साथ में।
1: जी अंजू जी, शादी से पहले मायके में सखियों के साथ सावन का कोई ऐसा पल है जो आज भी आपके चेहरे पे जब आप सोचती हैं तो मुस्कान ले आता है?
0: जी दीदी है ना हम लोग सावन जैसे ही आता था ना दीदी
1: जी
0: तो हम लोग सारे वहाँ पर से जितने भी हम लोग अपने हमूम बच्चे थे
1: जी
0: तो वहाँ पेड़ पर ना टायर का झूला बनाते थे।
1: अच्छा,
0: और झूले पर हरे कलर के फूलों से पत्ती से उसको सजाते थे।
1: अच्छा।
0: और वहाँ एक दूसरे को झूला झुलाते थे और गाना गाते थे सावन का महीना पावन करे सो
1: जी,
0: बहुत मस्ती करते थे दीदी। और हम लोग एक दूसरे के में मेहंदी लगाते थे।
1: अच्छा।
0: और मेहंदी में अक्सर हम लोग पेड़ पौधे का ही ज्यादा लगाते थे कि सावन चल रहा है
1: जी
0: ऐसा दीदी करते थे
1: और...
0: लेकिन ये भी कहा कि वो मेहंदी बहुत दिन तक टिकती थी।
1: सही बात है। और किसी प्रकार का केमिकल भी उसमें मिला नहीं होता था तो हाथों को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचता था। बहुत अच्छी बात बताई अंजू जी आपने। और अपनी सुनने वाली सखियों को आप कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ दीदी, मैं संदेश देना चाहूंगी पहले क्या था ना सभी सावन पर एकत्रित होते थे, अभी क्या है ना ऐसा दिन समय आ गया है कि इतना बिजी है सभी की ना तो घर को समय दे पा रहे हैं ना तो ऑफिस को दे पा रहे हैं ना बच्चों को समय दे पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सावन में सभी को अपने अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और सावन के बारे में कुछ बताए।
1: सही बात है।
0: ताकि बच्चों के सावन को समझ सके, सावन के महत्व को भी जान सके
1: जी
0: कि सावन में हमें क्या करना है ऐसे करके। तो मैं चाहती हूँ दीदी कि सावन में का महीना चल रहा है तो एक दिन अपने परिवार के लिए भी अपने बच्चों के लिए भी समय निकाले।
1: बहुत अच्छी बात और प्रेरणादायक बात आपने हमें और हमारे सखियों तक पहुँचाई अंजू जी। और कौन से फिल्म का गीत आज आप सुनना चाहेंगी?
0: दीदी मैं अपने पसंद पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए
1: जी
0: और अपने सखियों के लिए खासकर मेरी दीदी है उसके लिए भी मैं ये गाना सुनना चाहती हूँ दीदी, मोहब्बत बरसा देना तू।
1: गुनगुना सकती है?
0: मोहब्बत बरसाया ना तू सावन आया है।
1: क्या बात है, आपके और आपके परिवार के लिए हम प्रेक्षित कर रहे हैं ये सुंदर सा गीत।

0: वाह, आज हमारी सभी सखियों से बात करके हमारा दिल खुश हो गया। किसी की बातें मीठी थी तो किसी की यादें बेहद खूबसूरत। सावन का यह रंग हम सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के फोन इन कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुति एवं संयोजन मोनाली ठाकरे की।
1: और अब अनुमति दीजिए सखियों, आपकी दोस्त लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ईमेल करें गीत सुने। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। रात 8:00 संसद समीक्षा का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा प्रथम सुख निरोगी काया। 7:30 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात में जानकारी दी जाएगी श्री अन्न की खेती से खेत लाभ के बारे में। इसके बाद स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में आप सुनेंगे ग्राम कछार विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वनियांकन किया गया कार्यक्रम। संयोजन एवं प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी और संपादन एवं रिकॉर्डिंग राजू भैया की। तो श्रोताओं, ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें गेंदा फूल की खेती के विषय में जानकारी दी जाएगी। वाचन स्वर होगा रूपेश कंवर का। आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। 6:45 पर नवविहन कार्यक्रम में जल जीवन मिशन विषय पर केंद्रित कार्यक्रम आप सुनेंगे। कल सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से और सुबह 10:00 कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का प्रसारण होगा। कल सुबह 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में आप सुनेंगे लक्ष्मण मस्तूरिया, अनुराग ठाकुर और साथियों के गीत और साथ ही छाया शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कल सुबह 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण। कल शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात में भारत के खनिज संसाधन एवं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस विषय पर चर्चा की जाएगी। कल शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोठ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।

इसके पश्चात सफल कृषक से भेंट वार्ता क्रम में ग्राम आंकडीह कोनी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के कृषक श्री सुख सागर कैवर्त से राम स्नेही से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। कल रात 8 बजे संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से, और कल रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर में पहली घाव होवत स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के करीन शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में प्रदेश के जीते खिलाड़ी मन लदीन इनाम। देश भर में पीएम ई बस सेवा करेगे है शुरू। बिलासपुर जिला भर 50 एसी बस के देगे है मंजूरी। और कॉमनवेल्थ गेम्स के 53 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजनांदगांव के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव जीते है रजत पदक। अब समाचार विस्तार ले। उप मुख्यमंत्री खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में पहली घाव होवत स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के शुभारंभ करीन। विजन टू विक्ट्री थीम में रखे गए ये कॉन्क्लेव में देश भर के खेल प्रशासक विशेषज्ञ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जाने माने खिलाड़ी और खेल संघ के पदाधिकारी भाग लीन। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुईन। श्री साय इसो मार्च अप्रैल में रखे गए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतैया छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मल्ला इनाम दीन। कॉन्क्लेव में आने आने सत्र में राज्य में खेल और खिलाड़ी मन भर बने माहौल तैयार करे खेल प्रतिभा लतरासे और ओमल्ला बने सुविधा देवाए के संग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भर तैयार करे खातिर गोट बात हुई से। कॉन्क्लेव के पहली सत्र में बोलत उप मुख्यमंत्री श्री साव कहिन कि समर्थ विकसित छत्तीसगढ़ बनाए बर खेल जरूरी है। उमन कहिन की खिलाड़ी प्रशिक्षण देवैया और खेल संघ ला हर संभव मदद दे जाही। श्री साव सबो जिला में खेल संघ के गठन उखर बने व्यवस्था और मजबूत ढांचा के संग साबगोई कामकाज में जोर दीन। ये मौका में खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार कहिन कि कॉन्क्लेव में हुआ गोटबात के नतीजा ला राज्य के नवा खेल नीति में शामिल करे जाही। कॉन्क्लेव ला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतैया छत्तीसगढ़ के महिला फुटबॉल टीम के कप्तान किरण पिस्दा घलो एमा गोट बात करीन। केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय कोती ले देश भर में ई बस चलाए बर पीएम ई बस सेवा शुरू करे गए है। एमा बिलासपुर जिला भर 50 एसी बस के मंजूरी दे गए है। एकर बर बिलासपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी कोती ले आम लोगन पढ़ैया लयिका और कर्मचारी मल्ले सुझाव मांगे गए है। सुझाव ईमेल आईडी bdus@gmail.com मा या फिर नगर निगम कार्यालय विकास भवन के अर्बन सोसाइटी मा जाके दे जा सकत है। बस्तर ले 164 मनखे मन के प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली पर रवाना हुई। ये प्रतिनिधि मंडल 30 जुलाई के राष्ट्रपति भवन में रखे गए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले भेंट कर ही। ये दौरान राष्ट्रपति ला बस्तर के सुघर सांस्कृतिक विरासत लोक परंपरा और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में बताही। ये प्रतिनिधि मंडल में बस्तर के परगना मांझी चालकी समाज प्रमुख बस्तर के पंडुम के प्रसिद्ध जनजाति युवा कलाकार और बस्तर के पद्मश्री सम्मान ले सम्मान लोगन शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली जावत बस्तर के प्रतिनिधि मंडल ला शुभकामना दीन। उमन कहिन के ये प्रतिनिधि मंडल सिर्फ बस्तर के नहीं भलु पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा और गौरवशाली विरासत

की अगुवाई करी। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में जल जीवन मिशन 2.0 ला बने ढंग ले चलाए ला लेके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के अगुवाई में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साह और राज्य के लोकसभा राज्यसभा सांसद शामिल हुई। बैठक में गांव गवई में हर एक घर तक पीए के पानी पहुंचाना योजना में तेजी लाए और गुणवत्ता सुनिश्चित करे खातिर गोट बात करेगी। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ला नवा गति दे और बैंकिंग सेवा ला ज्यादा प्रभावी बनाए खातिर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज नवा रायपुर में समीक्षा बैठक लीन। ये बैठक में छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष और बड़का अधिकारी संगरीन। ये दौरान सहकारी बैंक के कामकाज में सुधार लाए के संगे संग डिजिटल बैंकिंग सेवा के संबंध में गोट बात हुई से। बैठक में प्रदेश के किसान मन ला बने आधुनिक बैंकिंग सुविधा देवाए के संबंध में विशेष रूप ले जोर देगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो माचे समाचार को थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 53 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजनांदगांव के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव रजत पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उमल्ला रजत पदक जीते में बधाई दीन है। मुख्यमंत्री है किहिन की ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ के प्रतिभा मेहनत और दृढ़ संकल्प के सम्मान हवे। उमन किहिन की उखर सफलता ले प्रदेश के युवा विशेष रूप ले बेटी मल्ला खेल में आगू बढ़े के प्रेरणा मिली। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में चलत नक्सल विरोधी अभियान के समीक्षा खातिर आज नारायणपुर में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्य के पुलिस और सुरक्षा बल के बीच नक्सल विरोधी अभियान और जरूरी जानकारी ला एक दूसर तक पहुंचाए में सहमति बनी। उन्हें सीमावर्ती क्षेत्र में सरलग निगरानी रखे जुड़ मिल के काम करे और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान ला तेज करे ऊपर गोट बात हुई से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा के ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर जाके भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करत प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि के मानता मानी। ये बेरमा मुख्यमंत्री यकीन की भोरम देव छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना के गौरवशाली चिन्हारी है। बस्तर वन मंडल में जंगल और वन्य जीव के सुरक्षा खातिर थर्मल इमेजिंग ड्रोन ले हाईटेक निगरानी शुरू करेगे है। एकर ले वन के अवैध कटाई और जंगली जिनावर मन के शिकार ऊपर नजर रखे जाते। बस्तर वन मंडल के DFO उत्तम गुप्ता है बताइन कि थर्मल इमेजिंग तकनीक ले ड्रोन अंधियार में घलो जिनावर या संदिग्ध लोगन ला खोज ले थे। अभी हाल ही में माचकोट और बिलोरी के जंगल में वन विभाग सुरक्षा और तलाशी खातिर ये ड्रोन ला तैनात करे है। अभी कांकेर वन मंडल के मदद ले थर्मल ड्रोन बोरे जाते और जल्दी बस्तर वन मंडल में अपन थर्मल ड्रोन मिल जही। दुर्ग के भिलाई इस्पात संयंत्र में कथित लौह स्क्रैप चोरी के मामला में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 7 जिन जवान मल्ला निलंबित कर दिए गए हैं। उखर मन ऊपर ड्यूटी के बेरा कोताही बरते के आरोप है। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये मामला में 16 जिन ला गिरफ्तार करे गए है। एमा भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ एक अधिकारी और कर्मचारी घलो शामिल है। जांच में करीबन 250 टन लौह स्क्रैप और ऑस्ट्रेलियन कोक के चोरी के बाद आगू आए है। कांकेर जिला में गट्टाकाल दरवी कोड़ो गांव के जंगल में सुरक्षा बल है माओवादी मन कोती ले लुका के रखे गए हथियार गोला बारूद BGL सेल डेटोनेटर समेत आने आने जिनिस बरामद करे है। बम निरोधक दस्ता के टीम विस्फोटक जिनिस ला मौकच मन नष्ट कर दीस। उन्हें नारायणपुर जिला के ओरछा थाना क्षेत्र के कसोड़ कुमेरा आदि के जंगल में सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान के दौरान 297 ठिन जिंदा कारतूस बरामद करीन है। सुकमा जिला के कोंटा पुलिस आज गांजा तस्करी के मामला में 3 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करके उखर तीर ले 223 किलो गांजा बरामद करीन है। जब्त गांजा की कीमत करीबन 1,11,00,000 रुपया बताए गए है। खबर के मुताबिक आरोपी गांजा ला ओडिशा के मलकानगिरी ले छत्तीसगढ़ हुआ राजस्थान के भीलवाड़ा ले जात रही। तीनों आरोपी भीलवाड़ा के रहवैया बताए जाते हैं। पुलिस इखर तीर ले मोबाइल नकदी रकम और आने दस्तावेज घलो बरामद करीन है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिला के खटगावा ब्लॉक के शिवपुर में आज धान रोपाई के बेरा गाज गिरे ले 2 जन के मौत हो गई। उन्हें ग्राम पंचायत मंगोरा में घलो गाज गिरे ले 1 चरवाहा के मौत हो गए है और 5 जन झुलस गए हैं। जौन मल्ला इलाज पर खटगा

0: गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई गई है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर में पहली घाव होवत स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के करें शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में प्रदेश के जीते खिलाड़ी मल्ला दिन इनाम। देश भर में पीएम ई बस सेवा करेगे है शुरू। बिलासपुर जिला भर 50 एसी बस के देगे है मंजूरी। और कॉमनवेल्थ गेम्स के 53 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजनांदगांव के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव है जीते है रजत पदक। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ये सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में पहला गीत हमारे जिन श्रोताओं ने पसंद किया है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पहला गीत फिल्म बाबू से है। आवाज लता मंगेशकर की और इसे संगीत दिया है राजेश रोशन ने। और सुनने के लिए हमें ईमेल किया है गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, पूजा खटक, लगहान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी साहिल, भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति, गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया, बुल्ढाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा जावेद और शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रही मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना शर्मा, मेंडी शर्मा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, धनौरी तेलीवारा से निशार सलमानी, नौशाद और साथी आलिया और आयान। आप सभी के ईमेल पर सुनिए पहला गीत। ईमेल करें गीत सुने का फिल्म बाबू से।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। अगला गीत इस कार्यक्रम का सुनने वाले हमारे श्रोता है जिन्होंने ईमेल किया है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान और उत्तम जमदाड़े, भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और मेहराज जहां, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मेनपाट से अजीत पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, पांडा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखन लाल और सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति और सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और

यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, टोरूवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका और वाणी थांदी। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए फिल्म ताज महल का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत है राजेश रोशन का।

और अगला गीत है ईमेल करे गीत सुने का फिल्म दिल दोस्ताना से। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसे सुनने के लिए हमें ईमेल किया है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। गंडई पंडैया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वास्तु, डॉली, पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खड़चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन। पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु,

वाणी आरबी खेड़ा, पांढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली कबीर और देवशंकर, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, पोड़ीभाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चौवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन, जलंधर से संदीप फक्कर, ज्योति मन्नत भरत और कमल साहनी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरास, नरगिस खातून और यहीं से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली, बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, पुरानी भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुद्दीन जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, झज्जर हरियाणा से भिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए ये गीत।

0: इस गीत के बाद कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं समाप्त होता है। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:45 हो चुके हैं। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है

आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति भवन में 30 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्तर से 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। और बस्तर वनमंडल में घने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई। अब समाचार विस्तार से।

0: वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। विजन टू विक्ट्री थीम पर रायपुर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव के अंतिम सत्र में आज शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। उन्होंने इस वर्ष मार्च अप्रैल में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉन्क्लेव खेल जगत में छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।
1: छत्तीसगढ़ में खेल के विकास के लिए ये कॉन्क्लेव एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे पहल है, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम लोग खिलाड़ियों का चयन भी करने वाले हैं, खेल अधोसंरचना को भी बढ़ाने वाले हैं और पिछले वर्षों से जो रुक गए थे अलंकरण समारोह उसको भी फिर शुरू किए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को सम्मानित भी किए हैं। इस तरह से प्रयास यहाँ पर चल रहा है।
0: इससे पहले कॉन्क्लेव के पहले सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी जिलों में खेल संघों के गठन, उनके व्यवस्थित और मजबूत ढांचे, नियमित गतिविधियों तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया। कॉन्क्लेव को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान किरण पिस्ता ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट बनाने की मांग से संबंधित पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव पर जरूरी प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बीते 26 जून को रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट बनाने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में बस्तर के आदिवासी युवाओं और जवानों की बहादुरी तथा नक्सल अभियान में उनके योगदान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बस्तर रेजिमेंट बनने से यहां के युवाओं को सेना में भर्ती होने के अधिक मौके मिलेंगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिए आज नारायणपुर में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच नक्सल विरोधी अभियानों, खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान तथा आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत निगरानी, समन्वित कार्रवाई और प्रभावी रणनीति के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अभियान को और तेज करने पर चर्चा हुई। कांकेर जिले में गट्टाकाल दरवीकोड़ो गांव के बीच स्थित घने जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार, गोला बारूद, बीजीएल सेल, डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। बम निरोधक दस्ते की टीम ने विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के कसोड़ कुमेरादी के जंगल क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान के दौरान कुल 297 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बस्तर से 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति को बस्तर की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था से अवगत कराया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बस्तर के परगना, मांझी, चालकी समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम के प्रसिद्ध जनजाति युवा कलाकार, जनजाति समाज प्रतिनिधि और बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव और राज्य के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसद शामिल हुए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने, योजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। वहीं मिशन की नियमित निगरानी और केंद्र राज्य समन्वय से योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर भी जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News।

0: तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स की महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में राजनांदगांव की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी की ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता से प्रदेश के युवाओं और विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बस्तर वनमंडल में घने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई है। इसके माध्यम से वनों की अवैध कटाई और जंगली जानवरों के शिकार पर नजर रखी जा रही है। बस्तर वनमंडल के डीएफओ उत्तम गुप्ता ने बताया कि थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी शरीर की ऊष्मा हीट सिग्नेचर के आधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेते हैं। हाल ही में माचकोट और बिलोरी के जंगलों में वन विभाग ने सुरक्षा और तलाश के लिए इन ड्रोनों को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए भी कर रहा है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के खड़गवां ब्लॉक के शिवपुर में आज धान रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं ग्राम पंचायत मंगोरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए खड़गवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है। इधर जशपुर जिले में कांसाबेल थाना क्षेत्र के घोघर गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं उसकी मां और पत्नी घायल हो गए हैं। सुकमा जिले की कोंटा पुलिस ने आज गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 223 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,11,00,000 रुपए बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गांजे को ओडिशा के मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ से होते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा ले जा रहे थे। तीनों आरोपी भीलवाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, नगद राशि और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का गौरवशाली प्रतीक है। दुर्ग स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह स्क्रैप की कथित चोरी के मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 7 जवानों को निलंबित कर दिया गया है। उन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच में करीब 250 टन लौह स्क्रैप और ऑस्ट्रेलियन कोक की कथित चोरी की बात सामने आई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदननगर गांव में बीते 24 जुलाई को कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 15 नामजद और करीब 100 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कारोबारी के घर से करीब 70 लाख रुपए की चोरी के मामले में रसोईया और उसके साथी को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। और दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्रालय द्वारा देशभर में ई बसों के संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिलासपुर जिले के लिए 50 एसी बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति भवन में 30 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्तर से 164 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में राजनांदगांव की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। और बस्तर वनमंडल में घने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक

0: समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवहाड़कर, सरिता प्रिंस एकांश, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, महेंद्र, विक्रांत और इफजाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित राय, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहांकर, निर्मला, विशाल, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, गांव नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सहोदर, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वद, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, नागर कोहरा राजनगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति साह, मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एसके, सहारनपुर से आशु, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद मंडलकर, वीणा और विविधा मंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरगलकर, रतनमाला, ओम कुमार। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

और इस खूबसूरत से गीत के बाद अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलो

राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी और डब्बू बब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अल्पा बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोण, मोहम्मद शादाब खत्री, लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श अतिका, लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मोहन, सहोदरी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, बुरगान से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है। नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद मिफ्रा और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, देगलूर जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गंवाड़कर, टुकटुक प्रिंस, एकांश, सुमित गंवाड़कर और ध्वनि, यवतमाल से राम पंजाब राम टेके, यशोधरा, श्राव्या राम टेके, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सिया राम, चौवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए, सुनिए ये गीत फिल्म बेताब से। आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे थे बेताब का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब यही समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

0: ग्राम सभा सुनैया जम्मो श्रोता मन के स्वागत है। राम राम झोको जित्तू के जय जोहार। तो भाई बतावा का हाल चाल है। देखो भाई देखत देखत अब अषाढ़ के महीना घलव निकल गे। आओ काली पुन्नी मनाबो तहा लग जही सावन। धान पान खेती किसानी के बात करी तो अभी भी कतको जी किसान मन के रोपा लगाई बाँचे है। आओ पानी जौन गिरे है तेखर से खेत मन तो लबालब है, लेकिन पानी रोके के व्यवस्था नहीं होए के सेतिर पूरा पानी है बुहा जाते। जौन क्षेत्र मन में पानी के लेवल जल्दी गिरते, जिसे हमर चखर तखतपुर क्षेत्र के बात करी, बोरवेल के पानी है नीचे जल्दी हटा जाते, गर्मी के समय में देखे जाते। ओ क्षेत्र मन में अभी लेवल नहीं चढ़े, भले कतको पानी गिर गए बरस गए, आजो पानी मस्त कोठ गिरे है एकदम झरझर ले। ऐसन में अपन खेत के आसपास ढलान या गड्ढा करवा के पानी ला बचाए जा सके के व्यवस्था करे जा सकत है, जेकर से भू जल जिन्हें भू जल के स्रोत जिन्हें रिचार्ज हो ही और हमन ला गर्मी के समय में लाभ ला दे। तो संगी हो अब बढ़िया बढ़िया गोट करवो आप मन सो पहली आवाज सुना था नीमन का कहत है कर संदेश ला सुन लिया जाए।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा?
2: जी?
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं

0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो देखा भाई, आपका सुघर संदेश ला सुने नहीं सन, डिजिटल अरेस्ट जैसे कोनो व्यवस्था नहीं हो, हमन ला सतर्क रहना है और जागरूक होना है। जागरूक होए के बाद भी कतको मनखे आज के समय में जब अतका जानकारी सब जगह ले मिलत है, तब होले कई पे धोखा धड़ी के शिकार हो जाते, ऐसन चेत करके रखना है। तो देखा भाई, हमन बात करत रहन खेती किसानी के, हम अपन काम बूता कोनो भी बूता में भिड़े हन तो कई पे का होते, अपन शरीर ऊपर ना ध्यान हमन नहीं देवन। सियान मन कहे है, प्रथम सुख निरोगी काया। हमर शरीर स्वस्थ है तो हम जीवन के हर चुनौती के सामना आत्मविश्वास और उत्साह के संग कर सकते हैं। लेकिन कहूँ स्वास्थ्य हमर ठीक नहीं है तो पैसा, पद, प्रतिष्ठा और दूसर सुख मन घलो फिक्का हो जाते। भाई कोखरो छोड़ कर देवे, जैसे माथे पिरात है या कुछ गोड़ में लाग दी है तो चेत हो ही में जाही। कोखर मूड पिरात है कोनो मनखे के और काम बूता करत है ऑफिस में तो दिन भर वही में चेत लगे रही थे, वही में मन लगे रही थे, पूरा दिमागी जिन व्यवस्था है वही में लग जा रही थी, काम लग छोड़ा। तो अभी के समय में विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन ला आसान तो करे है। हर काम बोता बर मशीन है, गाड़ी है, जिसे हम ट्रैक्टर में पहले गाय गरुआ में जोताई उताई करत रहन, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर आगे, JCB आगे, डोजर आगे, जल्दी हो जाते। लेकिन एकरे संग हमारे जीवन शैली घलो बदल गई हवा। आज शारीरिक श्रम के कमी हो गए, खाना पीना अनिश्चित हो गए, गांव का मिला तो देखी तो ठीक है, शहर मन में लेकिन ऐसा व्यवस्था में जुटे है कि भाई झन बुलाओ। वो मन फोन ला धरेन, बड़े बड़े लेकिन ला तो छोड़ देव, छोट छोट आजकल 2-3 साल वो मोबाइल धरे बिना वो मन खाना नहीं खावे, और दाई दादा घला वो मन ला फुसकारे पर मोबाइल ला पकड़ा देते तो बड़ा गड़बड़े, ये आगू चल के बड़े नुकसान करते। तो कुल मिला के शारीरिक श्रम करना बड़ जरूरी है। जेन अस्पताल मन में आजकल ये सब के चक्कर में भीड़ बढ़त है, हर कदम में दवाई दुकान और अस्पताल खुल गए, मधुमेह, BP, मोटापा, हृदय रोग जेन आनी बानी के जेन बीमारी है तेन कहूँ देखे नहीं रहन, तेन आजकल गांव-गांव पसर गए। मधुमेह के बात करी, मतलब शुगर के बात करी, तो हमारे देश है ओखर राजधानी आए, काबर सबके जेन पिटौरा है, पेट है, तेन फूल गए है, बाढ़ गए, मतलब काम हवा लेकिन उतका काम बूता नहीं हो पावा है जत का हम खाथन पीथन या करना चाहिए। ये मैं संतुलित आहार की बात करिए बड़ बढ़िया काम निभा दी, जैसन खेत पर संतुलित उर्वरक मन के बात हम करथन वैसन है, शरीर ला भी संतुलित भोजन के जरूरत होते, घर के खाना खाई जो उनमें हर जिनिस हो, हरियर साग रहे, रोटी हो, भात हो, और बाहरी आजकल जिन पैकेट बंद जिनिस हमन खाथन या बाहरी चाऊ माऊ खाथन तेन ला कम करिए। दूसर होते शारीरिक गतिविधि, कम से कम 20 से 30 मिनट हमन ला चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, योग प्राणायाम घलव हमर शरीर ला लचाली लचीला बनाते, मानसिक स्वास्थ्य ला बनाए रखते। अच्छा नींद की बात करी तो आजकल 8 घंटा छोड़ा 5 घंटा लोगन नहीं सोता थे, 1-2 बजे सोता थे और उठा थे, तो ऐसा जिन प्राकृतिक घड़ी है ओखर अनुसार हमन ला चलना चाहिए, तो नींद भी बढ़िया ढंग से लेना चाहिए। चलो गोठियाबो आओ, पहली आवाज संदेश मन लाओ सुन लेते हैं।
6: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा आदि सूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी

0: प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: तो देखा संगवारी हो, आज हमला संकल्प लेना है कि स्वास्थ्य लापन सर्वोच्च प्राथमिकता देबो, नियमित दिनचर्या अपनाबो और दूसर लभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाए बर प्रेरित करबो। तबे हमन अमूल्य कहावत जिन हमर सियान मन कह गए हैं कि जीवन में साकार कर पाबो प्रथम सुख निरोगी काया। तो एकरे संग चला आप मन के मयारू कार्यक्रम किसानवाड़ी।

जम्मो किसान भाई मन ला जित्तू भाई के राम राम फिर जय जोहार। तो भाई किसान भाई हो, बतावा का हाल चाल है, कैसन हा काम बूता कैसे चलत है? जैसे काम बूता चलते वैसन है पोठ दबा के हमन ला बढ़िया बढ़िया जिनिस खाना चाहिए। और जिनिस मन के बात करथन तो 2-3 साल ले जिला हम पहली ले भुला गए रहन श्री अन्न माने मोटा अनाज और माने कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा और सावा ये सब जिनिस ले हमन भुला गए रहन। जेन विदेश गईस विदेश ले फिर लौट के आई सो हमर भोजन माँ नया नया ढंग से नवा नवा जिनिस बन के फिर आते। तो एखर खेती हम करथन बहुत जी किसान मन करते और जैविक ढंग से अगर करते मतलब बहुत लाभ होते। श्री अन्न की बात करें जैसे कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा सावा ये सब पौष्टिक भोजन ही बल्कि हमर माटी के बढ़िया मित्र होते। सबले पहले लाभ होते कि श्री अन्न के फसल मन कम पानी के जरूरत होते। एखर बर कम पानी वाले क्षेत्र में भी एखर सफल खेती करे जा सकते है। जेखर से सिंचाई के जिन खर्चा होते तीन कम हो जाते। भाई बरसात के समय तो पानी ऊपर ले गिरा थे लेकिन बाद में सिंचित क्षेत्र है जेखर तीर बोरवेल के पानी के साधन है तेनो तो बढ़िया खेती कर सकत है। तो जौन किसान मन सु पानी के व्यवस्था साधन नहीं है तेनो मन 2-3 सिंचाई करके ए मन के खेती कर सकत है। दूसरा फायदा है श्री अन्न के जिन जरई मन है माटी ला मजबूत बनाते एखर से माटी के कटाव कम होते और संरचना बेहतर होते। फसल के अवशेषण माटी मा बढ़िया ढंग से होते जैविक पदार्थ बांटते जेखर से उर्वरकता मा सुधार होते। तीसर फायदा की बात करी श्री अन्न के खेती मन से रासायनिक खाद और कीटनाशक मन की जरूरत बड़ कम होते। हम जैसे धान पानी या साग सब्जी मा कभू कभू जरूरत से ज्यादा रासायनिक जिनिस के छिड़काव करथन ये सब जिन जिनिस से छोटे चीजें इमन कुल मिला के इमन घास तो आए जिन अतका फायदा देते। पहली कोदो कुटकी के भात खाया जाए अब तो भात हम खाथन गेहूं खाथन लेकिन जिन ला सुगर के बीमारी है तेखर बर बड़ फायदा वाले जिनिस है। तो सूक्ष्म जीव सूक्ष्म कीट होते ओला बढ़ाए के व्यवस्था करते। और चौथा फायदा की बात करी श्री अन्न के फसल ला फसल चक्र में शामिल करना बड़ लाभदायक होते जेखर से कीट और रोग मन के प्रकोप कम होते अगला फसल में सकारात्मक प्रभाव पड़ते। तो आज के समय में एखर मांग बहुत बढ़ गए है ये तो सही जगह में बेचे जाए लगाए जाए उत्पादन करे जाए तो किसान भाई मन बढ़िया ढंग से फायदा ले सकते है। मिलेट के फायदा बहुत बढ़िया ढंग से ले सकते। अब किसान भाई हो चला समय होगी आप मन ला ले चली कहाँ ले चली राजू भैया बतावा। तो आज सुनबो स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाड़े गाँव में राजू भैया पहुंचे रहे ग्राम कछार जो नाथे विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर में वहां के किसान मन के मध्य ध्वनांकन करे गए कार्य

0: किसानी हमर जिंदगानी और खेती माँ बस्ती प्राण दे पाए के हमर किसान भाई मन पूरा तन मन लगा के किसानी के बूता करते और पशुपालन के बूता करते जेकर ले उनकर जिंदगी खुशहाल हो जाते। किसान भाइयों आप जानत हो कि आज के दिन हम आप मन सुनवाथन किसान माड़ी गाँव में एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के संयोजन प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के एक क्रम में हम आप मला ले चलत हन मस्तूरी विकास खंड के गांव कछार जिन्हा लीलागढ़ नदी के खड़ा में बसे हैं। यहाँ के पशुपालन के बात करबो, यहाँ के बकरी मछली पालन के बात करबो, जहाँ तक दलहनी तिलहनी फसल के बात करबो, सब्जी फसल के बात करबो तो पूरा बिलासपुर अंचल में अलग चिन्हाव है। ये कछार गाँव है जिला मुख्यालय ले जिसे मस्तूरी आये तो मस्तूरी ले लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में लीलागर नदी के खड़ में बसे है। देखो गुठियाते गुठियात ग्राम पंचायत कछार पहुंचे हैं। जम्मो किसान भाई मुला राजू भैया के राम राम प्रगति। निश्चित रूप ले किसानी के बूता में मिलते ऐसन किसान जिन मन पूरा किसानी के अनुभव ला रखते आप हो खिलावन यादव जी आपके अनुभव पहले लेना चाहो। यादव जी सबले पहले बता देवा आप मन के कछार गाँव की विशेषता का है।
1: गाँव की विशेषता यहाँ बहुत पशुपालन होते, नदी किनारे है, साग भाजी उत्पादन होते, खेती होते, आस पास ले एक नंबर की खेती पानी के साधन होता है। आज तक हमार इतना बड़ हो गया हमारे गांव दुकान नहीं पड़े है।
0: वाह वाह बहुत बहुत बधाई देते आपके गांव के लोग। तो जैसे नदिया आपके गांव में हवे का उपयोग करता अपन
1: नदिया के पानी लाथन खेती भी करथन उमा मछली पालन भी करत है। नाना प्रकार के व्यवस्था पर अपन हिसाब से चलत है। वह
0: देखन बारी कुल आनी बानी के साग भाजी की खेती खलो करे एक बारे में बताओ का लगा है।
1: भिंडी लगा है, बरबट्टी लगा है, चुचुटिया लगा है, भुट्टा लगा है, चेत भाजी है, पालक भाजी है, धनिया मेथी है,
0: मतलब आने बाने के साग भाजी के
1: साग भाजी की व्यवस्था सब चल रही है।
0: अच्छा ये जिन आप मन साग भाजी की खेती करत हो यादव जी कतेक बजार होगी सोई
1: ये 5-7 साल हो गए मन लग करत।
0: हाँ
1: हाँ साग भाजी लगाना है, खेती बाड़ी करना है। खेती तो जिंदगी भर करा था पर साग भाजी 5-7 साल से लगा।
0: खेती और बाड़ी दोनों में अंतर है।
1: अंतर
0: यही पाए के वैज्ञानिक मन कहते हैं हमारे किसान भाई मन खेती तो करते लेकिन बाड़ी का ध्यान नहीं देवे तो बाड़ी है निश्चित रूप से हमारा रोजगार देते
1: हैं
0: ये कहना चाहता
1: बहुत रोजगार देते।
0: अच्छा हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मतलब ये बता दे वा जिन खेत में अपन आनी बानी के साग भाजी के खेती करे खिलावनी यादव जी उखर माटी की प्रकृति कृष्णा है।
1: माटी की प्रकृति है वह कन्हार माटी है वह डोरसहा कन्हारे उमा गोबर खाद के उपयोग करथन कंपोज खाद के उपयोग करथन बढ़िया बना के उमा खेती साग भाजी लगाए जाते।
0: तो जैसे रमकेरिया की बात करो तो खेत की तैयारी खर कैसे करना आप
1: हमारे जोत फान की बढ़िया करे हैं ओकर गोबर खाद डाले हैं गोबर खाद डाले के बाद केवारी बनवाए हैं केवारी बनवाए के बाद फिर मतलब लगाए गए हुए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो यूं आप मन जैविक ढंग लेकर खेती करत।
1: हाँ जैविक ढंग ले खेती करत हूं।
0: बाड़ी में देखा था बड़का बड़का ड्रम घलो है जेमा के गरुआ पालन के दिन घलो होते
1: पालन करत रहे हैं बहुत दिन करे इनके गरुआ पालन
0: से मतलब आप मन वर्मी वास बनाते
1: रहे इसके बता रहा बनात रहे हैं तो वही सरकार के ऊपर सब गुठान उठान बंद हो गए वही सरकार जरूरत है बना देते रहे
0: ना। वर्मी वास के चर्चा करना चाहबो आपका ये साग भाजी में वर्मी वास कर डालिया आप मन तो उत्पादन और पौधा के स्वास्थ्य में का प्रभाव पड़ते
1: वो बहुत प्रभाव पड़ते फूल फुलवारी में तो ज्यादा प्रभाव पड़ते जिन पेड़ हाथ नहीं फलत फूलत है कम फलत है ओकरो फल फूल के ओकर व्यवस्था तरीका से करते जैसे भुट्टा में डालबे तो छोट छोटा थे भुट्टा वर्मी पास में डालबे तो ओकर भुट्टा बड़े बड़े आते 3 से 4 एक पेड़ में होते।
0: अच्छा इतना बदलाव आया
1: इतना कम बदलाव आते
0: तो कतेक मात्रा में वर्मी पास डाल
1: ऐसे थोड़ा से जैसे के 1 लीटर डालबे ना वहाँ 5 लीटर पानी मिला दे जल्दीबाजी जैसे भी निपटाना है किसान के हिसाब से जैसे बाड़ी के हिसाब से छोटे बड़े बाड़ी है ओकर हिसाब से निपटा के चला दे।
0: तो ये भाजी फसल घलो में डाल सकते हैं
1: सब में डाल सकते हैं जे वह डाल ले कुछ और कोई फर्क नहीं पड़े।
0: तो वही जैसे पर्यावरण के बात करबो के हमर मानव जाति अंत तो खर खाए पे में अपन स्वास्थ्य के बात करबो का फर्क नजर आते हैं
1: फर्क इतना बहुत नजर आते जैसे के दूसर जगह साग भाजी लेबे ना वर्णी

0: दिन तो भूख कोई खराब नहीं हुआ। बाजी भी रख दो ना, चार तक कहीं लाभ नहीं करे।
1: मतलब संरक्षण बहुत अच्छा होता
0: है। हाँ, संरक्षण रहते।
1: आपके देख के आपके अगल बगल के किसान पारा पड़ोस के मन में प्रभावित होते कि नहीं?
0: नहीं हुआ थे, थे बाकी प्रभावित
1: जानबो नहीं करत
0: है। जानबो नहीं करवानी प्रकाश का है कैसे उमन खाद के बारे में बरोबर नहीं जाने। उमन तो हमारे गोबर खाद की फुर्सत नहीं है टाइप की।
1: देखा खेती मांगे मेहनत और मेहनत करते हैं हमारे किसान भाई मन। इसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहे कि हमारे गांव हाँ लीलागर नदी के खड़म है या पशुपालन के घरों बूता बढ़िया हो जैसे के तो ये बता देवा जल संरक्षण के जहाँ तक बात करना चाहबो हम पानी बचा के बात करबो या ताजी तो कुछ व्यवस्था आपके यहाँ होगा?
0: हवा हमारे यहाँ बढ़िया तालाब भी है, स्टाफ डैम भी है, बांध भी है, नाला भी है, स्टाफ डैम बना के पानी रोके की व्यवस्था करेंगे।
1: चलो बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम यादव जी, आप मन के नाव पशुपालन के क्षेत्र में कछार में अलग चिन्ह हुए। आपने जानना चाहबो का पशु रखे आपने?
2: गाय है वही से
1: कतिक कतिक नग हुए?
2: 10 गाय मन है और 10 भैंस मन है।
1: अच्छा हाँ। तो ये बतावा सावन के महीना आते तो आने बाने के रोग राई हमारा पशु मन मा जानवर मन मा संचर थे वो सावन आने वाला है नहीं तो एक पर जिन सरकारी टीका लगते पशु मन के राष्ट्रीय टीकाकरण थे एक उपाय आप मन अपना है कि नहीं?
2: हाँ डॉक्टर मतलब बोला था ना जैसे भी आते ना बीमारी रोग जैसे जैसे बीमारी आते हुए डॉक्टर बोला किसी इंजेक्शन सुई पानी लगवाते ना और दवाई गोली सब देते।
1: अच्छा तो घर घरों की शिकायत मिलते का?
2: घर की शिकायत मिलते ना।
1: हाँ, तो कैसे कम पाता आप मन?
2: तो पता चलते ना हल्का से जैसे बघारा है तो गलघोटू टाइप की मेरे रही।
1: आप मन एक अनुभवी पशुपालक का आपने जानना ये चाहतन भैंसी की जहाँ तक बात करबो तो जैसे गाभिन भैंसी है ओकर आहार विहार में का ध्यान देते हो आप मन यादव जी?
2: गाभिन भैंस के आहार विहार में ये है कि वह 6 महीना 7 महीना 8 महीने रही तो छोड़ा देते लागत रहते थे। हाँ। मतलब पेट में हुई
1: तो कहाँ का खबर था अभी?
2: तो अभी हम बोला कुटी देथन पैरा की और दाना मिल्काना और रफ्फी है।
1: अच्छा खिचरा चलो है किसान भाई मन इतना नहीं कर का आप मन?
2: खिचरा तो पहले देते रहे खिचरा का है एक ठा दू ठा ऐसे रहते तो खिचरा के
1: व्यवस्था हो जाती
2: व्यवस्था हो जाती। अब 10 खिला ले तो कत्ता कर लोग चुरोबे और बछेना लकड़ी जिस्टारा चाहिए ओका ले सूखा वाला खवा देते कुटी में पानी डाल के।
1: तो जिन कुटी आप मन खवा था इसे के बता था यादव जी बोला कुछ उपचारित करते हो कि नहीं आप मन दवाई पानी से या टॉनिक से?
2: इतना समय तबियत खराब जब बुखार आ गई तो फिर टानी को नहीं सूजी पानी लगवा के फिर
1: जानवर बनला।
2: जानवर बनला।
1: अच्छा अच्छा गाभिन भैंस का कितने मात्रा में आहार देता आप उनका?
2: गाभिन भैंस का जैसे कभी 1 किलो है रफ्फी 1.5 किलो दाना
1: जी। अब दुधारू भैंस के बारे में बताओ ना आप।
2: दुधारू भैंस के बारे में ये है अब लागत है वह दूध दे तो कम से कम 2 किलो खवाना है वाला 1 किलो दाना 2 किलो रफ्फी।
1: अच्छा हरा चारा का खेती नहीं करा अपन का?
2: हरा चारा खेती तो हम अभी नहीं करे हैं ड्यूटी रहते धान के उस समय।
1: अच्छा
2: वही लोग कटवा के रखे रहते हैं।
1: कोठा साफ सफाई कैसे करता?
2: कोठा साफ सफाई अब गोबर हटा दे घुरवा में डाल दे और जो उनके खरार बाहर के साफ सफाई एकदम वैसे टाइप के रखते हैं वाला।
1: मतलब ये गाय भैंसी पालन है निश्चित रूप से आप घर बैठे रोजगार दे?
2: हाँ रोजगार दे घर बैठे।
1: गाय घलो रखे?
2: गाय घलो है।
1: अच्छा गाय के जतन की बात करबो भैंसी के जतन की बात करबो सबसे ज्यादा सेवा लगते है?
2: सेवा तो ऐसे दोनों में लगते है लेकिन गाय है आजकल जो गाय है ना जर्सी गाय है हरियाणा गाय है कानपुरी गाय है इवन वो ज्यादा सेवा लगते है।
1: अच्छा अच्छा
2: गाय मन बीच वाला बच्चा है हर हमेशा में ध्यान देना दे पड़ते हैं।
1: एक पशुपालन विभाग के माध्यम ले जाना हो आप मन हमारे किसान भाई मन ला पशु शेड बनाए पर अनुदान राशि घरों मिलते कुछ योजना का फायदा ले का आप मन?
2: फायदा नहीं ले हमें है
1: जानकारी हमारे लिए
2: नहीं है।
1: हाँ पशुपालन के बिना हमारे किसानी के बूता नहीं हो सके। गाय के गोमूत्र की बात करबो के गाय के गोबर की बात करबो एक का उपयोग करता आप मन?
2: गाय के गोबर है भैंस के गोबर है मतलब खेत में डालबे ना तो वजह से धान के उत्पादन होते। बेचतन भी होला गाय के पेशाब है तो वाला जैसे रख ले ड्राम वराम कुछ भी में और रख के कीड़ा मकोड़ा जैसे धान में आगे वाला डाल दे तो कीड़ा खत्म हो जाते।
1: वाह वाह वाह ये तो गाय के मूत्र हमारे किसानी के बुद्धा बहुत कारगर है इसे
2: वैज्ञानिक
1: तो कैसे सकेल था?
2: क्या बोला सकेलना है तो 16 गड्ढा खोद दे पेशाब है बुहात है सब एक जगह सकेल को गड्ढा खोद में भरत जाए।

0: ओकर बाद निकाल निकाल के बाल्टी में ड्राम में जो भी डालत जाओ इकट्ठा हो गए ना एक महीना में 10-20-15-100 एक क्विंटल
1: पशुपालन के क्षेत्र में अलग चिन्ह माटी मांगे मेहनत और मेहनत करते हमर किसान लेकिन छत्तीसगढ़ ला हम बात करबो धान के कटोरा के नाम लेके पूरा जगत में ख्यात है जगमोहन यादव जी मन घलो आज हमर बीच में हवे एक खेती किसानी के अनुभव लेना चाहता हूँ यादव जी हमारे कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है जय जोहार राम
0: जय जोहार राम राम
1: कते कन भूया है आपका
0: 10-12 एकड़
1: कौन कौन किस्म के माटी है आपके
0: कन्हार है मटासी है
1: तो जिसे अभी चर्चा के दौरान आपके गांव के किसान भाई बहन बताते कि आपके गांव वाले लागन नदी के खड़ में है तो कचरी माटी ज्यादा हुई है
0: हाँ कचरी माटी नंजिया खड़ में हवा है हमन के खेत तरफ तो कन्हार माटी है
1: बात करना चाहबो अपन धान के देख रेख किसे करता
0: धान के देख रेख बहुत जरूरी है खेत जैसे रोपाई हो 10-15 रोज के अंदर कम से कम एक स्प्रेयर कर देना चाहिए कीटनाशक
1: अच्छा
0: नाना प्रकार के जो रोग आते रहते ना वो रोग से कम बचाव हो जाते हैं
1: अरे बहुत संरक्षण के उपाय करता
0: है हाँ।
1: अभी दयारामन बताते थे कि गोमूत्र को उपयोग करते ना अपन धान के फसल में के क्या अपन नहीं करा का
0: नहीं वो करवे तो बहुत कारगर है भाई उपयोग बहुत किसान करते हैं और गौमूत्र बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध है और वैसे तो पशु से हम खेती में बहुत ही लाभ हवे है
1: ये बता देवा जिसे धान हमन लगाया नहीं यादव जी और जिसे वर्षा के पानी है पड़ते तो अंकुरण तो बढ़िया हमारे धान के हो गए संगे संग मा सावा हेतु भी है दुनिया भर के भदैला बन मन जाम जाते हैं तो निंदाई गुड़ा की का किसे व्यवस्था करता आपने
0: पहले जब छोटे रहते धान है और जिस समय मतलब 20-25 रोज के अंदर अगर हम डायरेक्ट बुआई करें सीधी बुआई 20-25 रोज के अंदर जो बननाशक है तो बननाशक के हम उपयोग करे पड़ते
1: जी जी
0: तो जितना बन है मर जाते धान बसते मान लो फिर अगर बन उत्पन्न होते या कुछ बन रुक जाते जब तक धान बड़ा हो जाते निंदाई गुड़ाई द्वारा साफ करा
1: ये बता दे यादव जी आप मन 10-12 एकड़ में खेती करते हैं ऐसे की बता था आपके किसानी करे की पद्धति का है
0: रोपाई के पद्धति से ज्यादा खेती करता हूँ कुछ खेती ऐसे हो जाते है की जहाँ रोपाई में कुछ दिक्कत जाए जैसे पानी के व्यवस्था के लिए कुछ जमीन ऐसे होता है जिसमें पानी के निकास कुछ व्यवस्था नहीं जम पाए समय में तो बो के रख देते डायरेक्ट बोई कर देते
1: अच्छा पशुपालन के बात करबो तो आपके गांव तो पूरा मस्तूरी क्षेत्र में अलग चिन्ह है बहुत कम मात्रा में आप अपन पशुपालन के उद्यम करे अपन कन गोबर खाद बहुत हुए एक का उपयोग करते हैं आप
0: गोबर खाद के उपयोग हम खेत में करते हैं और बहुत से किसान आवे जो खेत में गोबर खाद डाले पर खरीद के ले जाते हैं पशुपालक मंसूरे
1: वाह वाह वाह
0: और बढ़िया कीमत दे के ले जाते और पता है कि जो जमीन है उपजाऊ बनाना है तो गोबर खाद ला अपनाना है
1: वो कहते कि गोबर खाद एक भी डाल देता है 3 साल नहीं लगा के
0: हाँ 3 साल के लिए फूला दे जो आजकल जो ऑर्गेनिक खाद है ना वो डालबे तो जो जमीन की उपजाऊपन है और तो इसलिए खाद के अधिकता के नाम से किसान का है फसल अधिक ले के नाम से खाद जैसे पांच उसे डाला थे
1: अच्छा
0: जो डोज से बेडोज डाल देवत है
1: अच्छा ये बता जब हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मल्ला जेर माँ आप मन गोबर खाद डाले हैं जन खेत माँ और जेर मन नहीं डाले हैं दोनों खेत के धान के पौधा में का फर्क नजर आते
0: ऐसे जैसे पानी वर्षा के पानी 15 रोज छोड़ दी पानी नहीं खेत सूख गए तो जो खेत में गोबर खाद डाले है वो मन नमी रही
1: अच्छा
0: और जो खेत में गोबर खाद नहीं डाले वो जल्दी सूख जाते
1: फट जाते
0: फट जाते कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो गोबर खाद डाले वो खेत में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते वो बीमारी कम आते
1: हैं कीड़ा मकोड़ा घरों नहीं आवे
0: कीड़ा मकोड़ा घरों नहीं रहे बीमारी के रोकथाम कर लेते
1: तो इमा आपके जिन दवाई लगना चाहिए रासायनिक दवाई आप पर खर्चा आते किसान मन के
0: बचत हो जाते किसान मन के बचत होते गोबर खाद डाले से मान लो खेत में कहना चाहिए कि 3-4 छिड़काव साधारण किसान मन करते फसल के अंदर मान लो आपके 2 छिड़काव में काम बन गए 2 छिड़काव का आपके बजट बच गए
1: ये बता देवा जहाँ तक बात करे है अपन गोबर खाद के बारे में लगातार हमारे किसान भाई मन आधा धूम दवाई है
0: उत्पादन लेके चक्कर में
1: खातु है इला डालते
0: हाँ।
1: भुइया के स्वास्थ्य में का कैसे प्रभाव पड़ते
0: भुइया के स्वास्थ्य में बहुत प्रभाव पड़ते है जो उपजाऊपन है ना वो कम हो जाते हैं खेती में जिसे कहना जो भी बताया हूँ की गोबर खाद और ऑर्गेनिक खाद दोनों में अंतर है अगर जिन खेत में गोबर खाद डाले हैं उमा की धान अलग ही रही जो चावल भी रही दाना में भी जो भरा वही तो जो गोबर खाद डाले उमा के जो धान के जो बाली है वो लंबा तगड़ा और दाना भी मस्त मोटा निकले
1: सुगर सुगर बात बता था हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन के मन में आत हुए कि कौन किस्म के धान

0: है जगमोहन यादव मन से कहके बताओ हमार श्रोता संगवारी मन ला।
1: मैं तो वैसे देसी किस्म लगाता हूँ, इसे ज्यादा हाइब्रिड के प्रयास नहीं करो
0: जी।
1: जैसे सरना है, बौरा सफेद और है ना, जैसे 1001 है, महामाया है
0: जी,
1: और कल्याणी, ऐसे कुछ धान है जो खेत के हिसाब से चयन करता हूँ कि कौन खेत में पानी के निकास ज्यादा है, कौन मक्का में, कौन हिसाब से मैं खेती करना चाहिए।
0: पानी की बात ला अपन घे पे कहा था यादव जी, तो ये बता दे वो पल्लो वासी का व्यवस्था है आपका?
1: पल्लो के व्यवस्था नहर है भाई, हमन के गाँव में 2-3 जगह पानी की इससे बढ़िया व्यवस्था है, जो हमन के गाँव में ज्यादा पानी की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कुछ खेत ऐसे है की नीचे में नाला है, ऊपर में खेत है, तो वहाँ तो व्यवस्था कर बना देते, तो बखार हो जाते, तो वहाँ सरना धान नहीं लगा, महामाया डाल दो।
0: अच्छा, अर्ली वैरायटी के, जल्दी आ जाओ,
1: जल्दी आ जाओ,
0: पानी कम।
1: हाँ, नीचे में पानी जाते, एक दो खेत के ऊपर खेत रहा है, तो कोई मतलब की नहीं हुआ
0: जी जी। मतलब आपके खेत एक ही जगह है?
1: 2-3 जगह है, छिट्टा छिट्टा।
0: अच्छा,
1: तो वही खेत के हिसाब से डालने पड़ते हैं कि कहाँ मेरे खेत में पानी की व्यवस्था कैसे, कहाँ मेरे कैसे, धान ला चयन करना पड़ता।
0: तो दिन भर तो

0: ऊपर खेत रहा तो कोई मतलब की नहीं हुआ
1: जी जी। मतलब आपके खेत एक ही जगह है?
0: दो तीन जगह है छिट्टा छिट्टा।
1: अच्छा,
0: तो वही खेत के हिसाब से डाले पड़ते हैं कहाँ मेरे खेत में पानी की व्यवस्था कैसे कहाँ मेरे कैसे के नाम से ना धान ला चयन कर पड़ता।
1: तो दिन भर तो किसानी के पुता लग जाते हुई।
0: हाँ
1: भाई,
0: दिन भर
1: अलावा का काम करता आपने?
0: बस ओकर अलावा गाय हवे रखे हो, गाय है दो चाटी भाई से
1: गोबर गोमूत्र
0: उपयोग हो जाते खेती में सहयोग मिल जाता।
1: हमारे कार्यक्रम के शुरुआत में खिलावन यादव जी मन गौरवी वास के बारे में चर्चा चलाएंगे।
0: हाँ,
1: तो ओकर आप मन ना कर निकल जी?
0: नहीं ओकर नहीं करे हैं, सुने हैं जरूर। एक दो बार जो खाद है बनाए रही से वो खाद ले के उपयोग भी करे हम।
1: अच्छा,
0: तो रिजल्ट अच्छा रही से भाई। नहर ले कुछ जमीन गाँव के जो बताए हैं जो मटासी है तो कुछ मटासी खा रहा है गाँव के बच्चत है।
1: अच्छा, तो एक बार आप मन नहर विभाग ला सिंचाई विभाग ला टैक्स खोल देते हो?
0: हाँ, नहर विभाग सिंचाई के अपन लेबे करते
1: थे
0: लगान अब एक हिसाब से लेते
1: का बोले थे बताओ ना।
0: जानकारी तो नहीं है अब का किस्त करे थे दो साल तीन साल चार साल में तक एक बार किस्त देना है तो किस्त देते थे पहले ही से करके।
1: अच्छा, नहर पटवारी आते?
0: नहर पटवारी आते हैं, किस्त जमा करते हैं तो कई साल के नहीं है तो तीन साल के चार साल के तो हिसाब से जितना है तो देते।
1: मतलब कुल मिला के आपके धान के फसल लगा के बाद आपकी जिंदगी में खुशहाल है कि देवा?
0: हाँ
1: भाई। और आपके गाँव पशुपालन के क्षेत्र में आपको बढ़ा जाते सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आपको बढ़ा जाते हमारे कार्यक्रम के सुने किसान भाई मुल्ला का कहना चाहता
0: हूँ? मैं अतके कहा था कि हर किसान जो पशुपालक है कृषि कार्य करते है उमन सब ध्यान से अपन अपन कार्य में अग्रसर रहे और अधिक आमदनी उठावे।
1: मतलब खेती हा जबर रोजगार उपलब्ध करा?
0: हाँ, बढ़िया रोजगार है।
1: हाँ,
0: दो चाटी जानवर रखे तो बहुत बढ़िया रह जाते।
1: चलो जगमोहन यादव जी बहुत शुक्र आपने किसानी के अनुभव बताया और पशुपालन के संग संग बात करबो किसानी के बूता के बात करबो तो सबले बड़का रोजगार हमला देते बकरी पालन है। तो बकरी पालन करिए किसान भाई के अनुभव ला आज के कार्यक्रम के माध्यम ले आप तक पहुँचा थन भैया। राम राम।
2: राम राम।
1: का नाम है आपके?
2: पुनीराम यादव।
1: पुनीराम यादव जी सुने हन के आपन बकरी पालन के उद्यम रखा था?
2: हाँ रखे हैं।
1: कतेक बछर हो गए भैया आप ला बकरी पालन?
2: पाँच छह बछर।
1: का उतार चढ़ाव देखे बकरी पालन में?
2: बकरी पालन में तो ठीक है, पहले मैं गैया रखा था।
1: हाँ,
2: दो चाटा गैया था, उसके बाद देखा आसपास में बकरी दो चाटा है, मैं कहे गैया के साथ साथ दो चाटा बकरी रख लेना चाहिए तो
1: हाँ।
2: मैं कहे कोनो डर के प्रेशर बचत होगा।
1: हाँ,
2: मैं कहे जरा जैसे कुछ काम में आ गई तो एक आठ बकरा निकाल ले बकरी निकाल ले काम में खपत हो जाएगा।
1: जब पौधा में उपयोग कर सकते
2: उपयोग कर सकते हैं इसी टाइप की रखा हूँ तो मस्त रिजल्ट दे रहा है।
1: अच्छा अच्छा। हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मल्ला ये बताते हुआ कौन नस्ल के आप मन बकरी रखे?
2: अभी तो मेरे पास छोटा छोटा है, बड़ा बकरी नहीं रखा, देसी रखा हूँ।
1: अच्छा,
2: देसी ठीक लगा थे काबर की बारिश में भी निकल सकते धूप में निकल सकते। अब वो मतलब निकलेगा तो पानी की जरूरत में निकलेगा ही पानी की जरूरत
1: जमुना पारी मारवारे किसम घड़ो पशुपालन विभाग के माध्यम बांटे जाते
2: होता है कहीं से देखे भी है
1: तो डॉक्टर आते हैं ना?
2: डॉक्टर आते हैं एकदम से पास ले आते।
1: अच्छा, कबू कबू देखते छेरी मन मा खोड़ा चपका आया थे मन में घाव हो जाते तो का कैसे करता आप?
2: मैं तो इसने आयुर्वेदिक लगाता हूँ उससे कहीं कुछ जैसे हल्दी मिर्च है उसको उपयोग करता हूँ उसका तो मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आता है जैसे मुंह हो गया कि बीमार पड़ गया ऐसे टाइप के नहीं आता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो कतिक कमा लेते हो एक साल में बकरी पालन ले आपने?
2: हो जाता है बकरी थोड़ा ऊंचा है तो इधर 12,000 रहती होती मतलब एडजस्ट हो जाता है मतलब 20 कर की।
1: और बकरी के संगे संग गाय रखे की बताते आपने?
2: हाँ हवा यार 10 ठन हवा
1: गई। तो ये बताते हो गाय पालन के अनुभव ला कतिक बचर हो गया आप तो रखे?
2: गाय ला तो ऐसे किया था दादा पर दादा जमाना से रखते आते हैं।
1: हाँ,
2: उसके बाद हमारा पारी आए थे हम भी रखे।
1: हाँ, जैसे आपके दादा पर दादा मन रखे से
2: बाहर जाते हैं तो दिन भर में कमा के आते हैं फिर सुबह खाते हैं उठते फिर जाते हैं अपना घर का काम है इसी टाइप के मतलब रखे हैं हम लोग।
1: एक थी बात हमला बता दे हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मतलब जैन गाय मन काफी है उन लोग का आप मन आहार की व्यवस्था करते
2: हैं? रखते ऐसे करके थोड़ा बहुत कुटी उटी करके दे देते हैं उसके बाद जैसे जैसे उसका टाइम आता है कितने दिन में बच्चा देगा
1: जी
2: उसके बाद फिर उसका डोरी पढ़ाई चालू करते हैं।
1: मतलब चलाए के साधन आपके गाँव होगा?
2: हमें थोड़ा बहुत एती उती करके घर के ज्यादा करते हैं क्योंकि घुमा टहला के लाते हैं तो घर से ज्यादा पालन करते हैं।
1: चला बहुत शुगर शुगर बात बताया निश्चित रूप ले आप मन के देह जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई बहनी मन फायदा उठाई। एक संग आज के किसान वाली गाँव क्रम सी रात है संगवारी हो आज हम आ रहे हैं कछार जिन्हा जिला बिलासपुर विकास खंड मस्तूरी में बसे हैं। एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के संयोजन प्रस्तुति डॉक्टर

0: बढ़िया भारतीय के जम्मू किसान भाई मुल्ला जय जोहार राम राम।
1: तो भाई अभी सुने हन ग्राम पंचायत कछार विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग संपादन रही से राजू भैया मन के, संयोजन प्रस्तुति से डॉक्टर सुप्रिया भारतीय ने। आवा सुनत हन ये सुघर सुघर संदेश मनला।
2: अरे सुन तो।
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
2: किसको?
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
2: अच्छा ये बात है।
3: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
2: अब तो झट से बात हो जाती है।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
3: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियां खत्म।
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
4: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
5: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहा
5: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
6: परम तो सब यही डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
8: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो लेवा भाई, आज के मौसम के जानकारी आप मन ले दे दी। आज अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गई, न्यूनतम रही से 23.4। अभी देखिए पानी मस्त बरसी से, तो आगू 2-3 दिन पानी बरसे के संभावना है। आप मन ला एक ठीक जानकारी दे दी। ये गुरुवार परम दिन के 30 जुलाई 2026 के हमारे स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के त्वचा रोग चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी उपस्थित रही। इमन से 10:30 बजे से 11 बजे तक सवाल पूछे बर विषय हुई बरसात में केंदुआ चरे और त्वचा रोग संबंधित रोग और उनका निदान। 11 से 11:30 बजे तक के विषय रही शरीर में होए वाले तिल और मस्सा मन के कैंसर में परिवर्तित होए वाले लक्षण के पहचान और निदान के उपाय। ये विषय संबंधित जौन भी समस्या जिज्ञासा समाधान हो उखर पाए बर आप मन फोन लगा सका था 2665092 31006 ओकर पहली 07752 लगा ले है। और एक बात आओ, नेटवर्क क्षेत्र में जाके फोन लगा हा, ताकि बढ़िया ढंग से रिकॉर्डिंग हुई। अब ये सूचना हुई समाप्त और हमार समय भी हो गए, तो देवा कार्यक्रम ले विदा। जित्तू भाईला राम राम, जय जोहार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे थे किसानवाणी, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम संसद समीक्षा का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक पहले ही गठित

रहा था अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था और इस बार वैसा ही रहा।

लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्ष ही दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं।

विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

0: उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा और मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्वेता पांडे। बरसती बूंदों ने धरती से फिर प्यार जताया है, सूखी डालियों ने भी हरियाली का गीत गाया है। मेघों की ये रिमझिम केवल मौसम नहीं बदलती, ये तो हर थके हुए मन में उम्मीदों का दीप जलाती है। सचमुच बारिश केवल प्रकृति का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नए विश्वास और नई ऊर्जा का संदेश भी लेकर आता है। भीगी मिट्टी की सौंधी महक, पेड़ों की हरियाली और रिमझिम फुहारे मन को सुकून देती है। लेकिन इस मौसम का आनंद लेते हुए हमें अपनी और अपनों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तेज बारिश में अनावश्यक यात्रा से हमें बचना है, जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहना है और सावधानी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखनी है। और इसी सुहाने और भीगे भीगे मौसम के नाम आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, बारिश की ताजगी भरे इस छोटे से गीत के बाद बढ़ते हैं अब रजनीगंधा कार्यक्रम में आगे। और आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अद्भुत अभिनेत्री को, जिनकी खूबसूरती जितनी चर्चित रही उतना ही प्रभावशाली रहा उनका सादगी से भरा अभिनय। अभिनेत्री लीला नायडू की पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपने सहज, गरिमामय और प्रभावशाली अभिनय से उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी स्मृति को नमन करते हुए प्रस्तुत है उनकी फिल्मों के कुछ मधुर और यादगार गीतों से सजा

ये कार्यक्रम रजनीगंधा। वर्ष 1954 में फेमिना मिस इंडिया बनने वाली लीला नायडू को कभी विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में भी गिना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि अपने संवेदनशील अभिनय से बनाई। उनकी पहली ही फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद ये रास्ते हैं प्यार के, द हाउस होल्डर, उम्मीद और वर्षों बाद श्याम बेनेगल की त्रिकाल जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। उन्होंने अपने अभिनय की एक अलग छाप छोड़ी। आइए आज की रजनीगंधा में सुनते हैं लीला नायडू की यादगार फिल्मों के मधुर गीत। लीला नायडू की पहली फिल्म अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी। इस फिल्म में उनके साथ थे बलराज साहनी, संगीत दिया था पंडित रविशंकर ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। इस फिल्म का संगीत आज भी हिंदी सिनेमा की अमूल्य धरोहर माना जाता है।

लीला नायडू हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने फिल्मों की संख्या से अधिक अपने व्यक्तित्व, अभिनय की गरिमा और सहज अभिव्यक्ति से पहचान बनाई। वर्ष 1940 में मुंबई में जन्मी लीला नायडू के पिता डॉक्टर पट्टीपाटी रामैया नायडू प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, जबकि उनकी माता स्विस फ्रांसीसी मूल की थी। जब वर्ष 1954 में

उन्हें फेमिना मिस इंडिया चुना गया और उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फैशन जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका वोग ने उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में स्थान दिया। अपनी सादगी, बौद्धिक व्यक्तित्व और स्वाभाविक अभिनय शैली के कारण वे भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाने में सफल रही। और अब बढ़ते हैं वर्ष 1963 की चर्चित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के की ओर। आर के नैयर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लीला नायडू के साथ सुनील दत्त और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म अपने समय में काफी साहसिक विषय मानी गई। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, संगीतकार थे रवि और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण।

लीला नायडू ने कभी फिल्मों की अधिक संख्या को महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने कई बड़े बैनरों के प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वे अपनी पसंद और संवेदनशील विषयों वाले फिल्मों को प्राथमिकता देती थी। कहा जाता है कि राज कपूर ने उन्हें कई फिल्मों के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सत्यजीत राय भी उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो अंततः बन नहीं सकी। यही कारण है कि उनका फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन उनका स्थान हिंदी सिनेमा के इतिहास में बना रहा। हमने आपको जो गीत अभी सुनवाया था, वो अपने मधुर संगीत और अर्थपूर्ण बोलों के कारण याद किया जाता है। लीला नायडू ने इस फिल्म में नीना का किरदार निभाया था, जिसे आज भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में गिना जाता है। चलिए अब सुनते हैं फिल्म उम्मीद का एक लोकप्रिय गीत। इस फिल्म का निर्माण पहले हो चुका था, लेकिन वितरण संबंधी कारणों से ये बाद में प्रदर्शित हुई। फिल्म में अशोक कुमार, जॉय मुखर्जी, नंदा और लीला नायडू प्रमुख भूमिकाओं में थे। मोहम्मद रफी की आवाज, संगीतकार रवि और गीतकार शकील पदायुनी।

28 जुलाई सन 2009 को लीला नायडू का निधन हो गया, लेकिन उनकी सौम्य मुस्कान, गरिमामय व्यक्तित्व और संवेदनशील अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा प्रेमियों के बीच सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, और इसलिए हम आज की रजनीगंधा में उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके कुछ गीत आपको सुनवाए। लीला नायडू किसी कलाकार की पहचान केवल उनका मानना था कि संख्या पर आधारित नहीं थी, फिल्मों की संख्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, अभिनय की गुणवत्ता और दर्शकों के मन में छाप छोड़ने की उनकी चाहत बनी रही, और यही कारण है कि आज भी अनुराधा और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों का उल्लेख होते ही लीला नायडू का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं, बहुत कम फिल्में हैं जिसमें लीला नायडू ने काम किया है, और इसलिए गीत भी बहुत ही कम उपलब्ध है। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए रजनीगंधा कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और बरसात का मौसम है, ये मौसम हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी तपिश क्यों ना हो, एक ना एक दिन राहत की फुहारें अवश्य आती है। प्रकृति का अनुपम उपहार हमें धैर्य, संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देता है। सुहाने मौसम की मधुर अनुभूति को संगीत के साथ ये और भी खूबसूरत बनाता है। फिल्म बरसात की एक रात में एक ऐसा ही खूबसूरत सा गीत है जिसे हम और आप मिलकर सुनते हैं।

बरसात की भीनी भीनी फुहारों और मधुर संगीत से सजे आज के रजनीगंधा कार्यक्रम में, जिसमें हमने लीला नायडू की फिल्मों के गीत आपको सुनवाए, कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है गीतों की ये सुगंध और यादों की ये यात्रा आपके मन को भी छू गई होगी। बरखा की बूंदें तो थम जाती हैं, लेकिन उनकी ताजगी मन में लंबे समय तक बनी रहती है। तो अब विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम से, यानी कि रजनीगंधा से। मैं आपकी रेडियो साथी श्वेता पांडे, नमस्कार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता

0: की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में

0: आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया।

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे

0: Flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से रात 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अलीबाबा 40 चोर में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा। कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: दिल।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार

के निर्माण में लगे थे, तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया, गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

फिल्म जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़इबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया।

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

भी अजीब है, जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं, बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

आता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियां, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियां भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि

नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।